0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तदनुसार 11 जुलाई 2026 आज दिन शनिवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: हम सभी को कभी कभी ये सुनने में आता है कि जीवन व्यर्थ गंवा दिया। तो जीवन को गंवाया जा सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि कमाया भी जा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन वो जगह है जहां हम अपनी मृत्यु भी कमाते हैं। तो मृत्यु को कमाया कैसे जाता है? उसका नाम है स्वास्थ्य और होश। हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है दीर्घायु हो। इसका मतलब है कि हमारा मानव काल बढ़ा रहे, यानी हमारा जीवन दीर्घ हो, हमारी मृत्यु जल्दी न हो। अब जीवन को देखें, अधिक जीकर करेंगे क्या? बिस्तर पर पड़े रहे, कोई सेवा करे, शरीर निष्क्रिय हो जाए? तो जीवन कमाना हो, मृत्यु कमानी हो, तो वो भी हमें सीखना आवश्यक है। हनुमान चालीसा में लिखा है, अंतकाल रघुवर पर जाएं। और एक और लाइन में लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा। इसका सीधा अर्थ है कि जीवन को कमाना या गंवाना हमारे ही हाथों में है।
1: जीवन सौरभ।
0: मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप रेडियो आजाद हिंद की प्रातःकालीन सभा का प्रसारण सुन रहे हैं। और अब जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक सूक्तों पर आधारित अक्षय निधि कार्यक्रम। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज इस कार्यक्रम में हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित किशोरी लाल जी के जीवन के बारे में जानेंगे। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा गौड़ राज्य चंद्रपुर का इतिहास। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। सुबह 9 योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा योग वशिष्ठ और सत्पुरुषों की दुर्लभता। इस विषय पर डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से सुनीता सिंह की चर्चा आप सुन सकते हैं। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम पत्रकार माधव सप्रे के जीवन के बारे में जानेंगे। सुबह 10 विगत दिवस भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी होगी। इसके साथ ही आप सुनेंगे स्वाधीनता के गान। 8:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा आज की कड़ी क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर केंद्रित है। सुबह 11 सुर सागर कार्यक्रम में आज हम प्रदक्षिणा भट्ट द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय गायन सुनेंगे। सुबह 11:30 पर सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वे देवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: अपश्यम गोपा मणिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् स सद्रीचीः स विशूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः। समीपस्थ तथा दूरस्थ मार्गों में गतिमान सूर्यदेव निरंतर गतिशील रहकर भी कभी नहीं गिरते, वे संपूर्ण विश्व का संरक्षण करते हैं। चारों ओर फैलने वाली तेजस्विता को धारण करते हुए समस्त लोकों में विराजमान सूर्य देव को हम देखते हैं। य ईं चकार न सो अस्य वेदय ईं ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात् स मातुर्योना परिवीतो अंतर बहु प्रजा निर्रितिमा विवेश। जिसने इसे बनाया वह भी इसे नहीं जानता, जिसने इसे देखा है उससे भी यह लुप्त रहता।

0: हमारे पिता और बंधु स्वरूप हैं, वही संसार के नाभि रूप भी हैं। यह विशाल पृथ्वी हमारी माता है। दो पात्रों आकाश के दो गोलार्धों के मध्य स्थित सूर्य देव अपने द्वारा उत्पन्न पृथ्वी में गर्भ जीवन स्थापित करते हैं। पृच्छामि त्वा परमंतं पृथिव्याः, पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः, पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः, पृच्छामि वाचः परमं व्योम। इस धरती का अंतिम छोर कौन सा है? सभी भुवनों का केंद्र कहाँ है? अश्व की शक्ति कहाँ है? और वाणी का उद्गम कहाँ है? यह हम आपसे पूछते हैं। इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः, अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो, ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम। यज्ञ की यह वेदिका पृथ्वी का अंतिम छोर है। यह यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी है। यह सोम ही अश्व की शक्ति है। यह ब्रह्मा वाणी का उत्पत्ति स्थान है। सप्तार्ध गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि, ते धीतिभिर् मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः। संपूर्ण विश्व का निर्माण अपरा प्रकृति के मन, प्राण और पंचभूत रूपी सात पुत्रों से होता है। यह सभी तत्व सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार ही कर्तव्य निर्वाह करते हैं। वे अपनी ज्ञानशीलता, व्यापकता से तथा अपनी संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। न वि जानामि यदि वेदमस्मि निर्ण्यः, सन्नद्धो मनसा चरामि, यदा मागन प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः। मैं नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ। मैं मूर्ख की भांति मन से बंधकर चलता रहता हूँ। जब पहले ही प्रकट हुआ सत्य मेरे पास आया, तभी मुझे यह वाणी प्राप्त हुई।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे वैदिक ऋचाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। प्रतिक्रिया देने की जल्दी नहीं करें। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर चुप रहकर दिए जाते हैं। याद रखें, जो स्वयं शांत है उन्हें दुनिया की कोई भी चीज हिला नहीं सकती। आइए शुरू करते हैं भक्ति संगीत का क्रम।

प्रेम, करुणा, त्याग, संयम, अनुराग और भक्ति जैसे गुण महापुरुषों के स्वभाव में रहते हैं। ये सभी सद्गुण हम सभी में हैं। इन गुणों को जगाना पड़ता है। अपने भीतर प्रेम, माधुर्य और संयम को जगाए, अपने भीतर की सरलता को जगाए। जब हम ऐसा ठान लेंगे कि हमारे सद्गुण चैतन्य हो, हमारी दिव्यताएं उजागर हो, हमारी श्रेष्ठताएं एक साथ जीवंत हो, तब निःसंदेह हम बड़े कार्य कर पाएंगे।

हम अपने काम के लिए कितने गंभीर हैं, कितने अच्छे संकल्प और श्रम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इन बातों से हमारी सफलता तय होती है। अगर हम स्वयं के प्रति गंभीर हैं, निष्ठावान हैं, हमारे विचार सही हैं, हम कोरी कल्पनाओं से काम नहीं चलाते, तब हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं।

शुभ कर्म ही मूल पूंजी है। शुभ कर्म का अर्थ है दूसरों के प्रति सेवा की भावना, दूसरों के दुर्गुणों और दोष पर ध्यान नहीं देना। जहाँ सद्गुण है, शुभता है और प्रियता है, वहाँ पर हमें रहना चाहिए। भाषा में सकारात्मक भाव लाना चाहिए। हम किसी के उस पक्ष को ना देखें जहाँ दुर्गुण हैं, हमेशा कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें।

नवाचार करना हमारा एक स्वाभाविक गुण है। हम कभी भी नया सृजन, नई खोज और नए काम कर सकते हैं। मनुष्यों ने संचार, सूचना, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, आधुनिक उपकरण जैसे हर क्षेत्र में अब तक कई आविष्कार किए हैं, कई बड़ी बड़ी खोजें की हैं। ये सब मनुष्यों के सामर्थ्य की वजह से ही हो रहा है। हमें अपनी रचनाओं को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए।

हमारी वर्तमान स्थिति हमारी पुरानी कामनाओं और कर्मों का ही प्रतिफल है। हम आज जो कुछ भी है अपने संकल्प, कर्म और विचारों की वजह से ही है। हम जो कुछ अच्छा बुरा प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। जब हम वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं, तब हमारा भविष्य सुखद बनता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: ये
0: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वदन का राग। आज के कार्यक्रम में हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित किशोरीलाल जी के जीवन के बारे में जानेंगे।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नौजवान साथियों, क्या हमें ये महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आजाद होना चाहिए, किसी दैवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई दैवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए कि हम आजाद हो जाएं? क्या हम आजादी के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? जिन्हें आजाद होना है उन्हें स्वयं चोट करनी पड़ेगी। नौजवानों, जागो, उठो, हम काफी देर सो चुके। हमने केवल नौजवानों से ही अपील की है, क्योंकि मानव प्रगति का संपूर्ण इतिहास नौजवान आदमियों और औरतों के खून से लिखा है। ये अंश है नौजवान भारत सभा लाहौर के घोषणा पत्र का, जिसे सरदार भगत सिंह ने युवाओं को संगठित करने के उद्देश्य से तैयार किया था। भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर भगत सिंह ने भारत की युवा शक्ति को जागृत और संगठित करने का प्रयास किया था, और उनके आह्वान पर अनगिनत युवाओं ने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह के संपर्क में आकर आजीवन क्रांति पथ पर चलने वाले ऐसे ही एक युवा थे, पंडित किशोरी लाल। किशोरी लाल का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के धर्मपुर गांव में हुआ था। उनके पिता रघुवीर दत्त शास्त्री एक अध्यापक थे तथा भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में सक्रिय थे। उनके बड़े भाई भी आर्य समाज के प्रचारक थे, जिनका अनेक क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। किशोरी लाल की आरंभिक शिक्षा धर्मपुर के ही प्राथमिक स्कूल में हुई। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए वो क्वेटा गए, जो कि अब पाकिस्तान में है। क्वेटा में उनके पिता संस्कृत अध्यापक के पद पर नियुक्त थे। यहां से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद किशोरी लाल ने उच्च अध्ययन के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़ते समय ही किशोरी लाल भारत नौजवान सभा के संपर्क में आए। उनके पिता और तीन बड़े भाई पहले ही राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। परिवार में राष्ट्र चेतना के स्वर सदा से ही गूंज रहे थे, इसलिए किशोरी लाल का भारत नौजवान सभा से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था, जिसकी स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। इस सभा से जुड़ते ही किशोरी लाल भगत सिंह के सीधे और करीब संपर्क में आ गए। यही वो बिंदु था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। नौजवान भारत सभा का गठन एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ था। लाला हरदयाल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काकोरी कांड के बाद छिन्न भिन्न हो गया था, उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही नौजवान भारत सभा देश के युवाओं को संगठित कर रही थी, और आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रयासों से ये संगठन पुनर्जीवित हुआ, जिसका नया नाम हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस तरह किशोरी लाल भगत सिंह के अंतरंग साथी के रूप में इस संगठन से जुड़ गए। भगत सिंह के साथ बैठकों में शामिल होकर वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और देश के लिए ही जीने मरने की कसम खा ली।

हमारा देश रातों रात गुलामी की जंजीरों से नहीं जकड़ गया था, बल्कि अंग्रेजों की साजिश, कूटनीति और विश्वासघात ने इसे धीरे धीरे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा। बरसों का इतिहास रहा ये, और भारत को नींद से जगाने में भी बरसों लगे। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वाधीनता के लिए सशस्त्र क्रांति का सूत्रपात सन 1857 से ही हो गया था, और ये सिलसिला विभिन्न चरणों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व सन 1946 तक जारी रहा। इसी कड़ी में सन 1924 से 1931 तक लगभग 8 वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का दबदबा पूरे भारतवर्ष में रहा, जिसके लिए किशोरीलाल ने कितनी ही खतरनाक जिम्मेदारियों को पूरा किया। साइमन कमीशन की खिलाफत करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हुए तो इस एसोसिएशन में खलबली मच गई, और पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या का प्रण लिया गया, जिसे दल के सदस्यों के सहयोग से सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने अंजाम दिया। गुलामी के इस दौर में ब्रिटिश राज के कानून बेहद सख्त थे। किशोरीलाल जानते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों के आसपास खड़े होने की भी कैसी कठिन सजा हो सकती है, लेकिन वो सरदार भगत सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। छोटी बड़ी, खतरनाक या आसान, जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलती, वो जान हथेली पर लेकर उसे पूरा करते। अपने क्रांतिकारी जीवन की अनिश्चितताओं को देखते हुए ही उन्होंने ठान लिया था कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, और वो आजीवन अविवाहित रहे। भारत के मुक्ति संघर्ष के इतिहास में तीसरे दशक के अंतिम कुछ वर्षों में सर्वहारा वर्ग की हड़तालों ने देश

कार्यालय भी खोला। यहीं उन्होंने दिल्ली, आगरा और कानपुर केंद्रों के लिए बम बनाने हेतु जतींद्रनाथ दास को सहमत कर लिया। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के साथियों की मदद से आगरा में बम बनाने की फैक्ट्री बनाई, जहां ट्रेनिंग के बाद क्रांतिकारी अलग अलग राज्यों में इस काम को अंजाम देने लगे। किशोरीलाल भी 69 कश्मीरी बिल्डिंग लाहौर में बम बनाने वाली इकाई में सुखदेव के साथ शामिल थे। पकड़े जाने पर क्या अंजाम होगा ये जानते हुए भी वो निर्भीकता से अपने मिशन में जुटे रहे। 8 अप्रैल सन 1929 को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी। बहरे कानों को खोलने की मंशा पूरी कर ली गई थी। अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। अन्य साथी क्रांतिकारियों की तलाश तेज हुई। 15 अप्रैल सन 1929 को किशोरीलाल सुखदेव के साथ गिरफ्तार हुए। वो बम बनाने, असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स को मारने की साजिश में शामिल पाए गए और उन्हें आजीवन देश निकाला यानी काला पानी की सजा सुनाई गई।

किशोरीलाल जब जेल में एक कैदी के रूप में बंदी बनाए जा रहे थे, तब 77 दिन लंबी ऐतिहासिक भूख हड़ताल में वो शामिल हुए। उन्होंने मुल्तान, लाहौर और मॉन्टगोमरी की जेलों में अपनी लंबी सजा काटी। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण लगभग 5 साल उन्होंने एकांत कारावास में बिताए। जेल में रहते हुए वो कई कम्युनिस्ट कैदियों के संपर्क में आए और मार्क्सवादी साहित्य पढ़ना शुरू किया। इसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। उनके विश्व दृष्टिकोण में बदलाव आया और सन 1936 में जेल में रहते हुए ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया और सन 1942 में वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए। किशोरीलाल को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा हुई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें वहां भेजने के लिए कोई संवाद नहीं किया था, इसलिए पंजाब के गृह सचिव ने उन्हें अंडमान द्वीप भेजने के लिए अनुपयुक्त पाया और वो लाहौर तथा मुल्तान आदि की जेलों में रहे। सदाचरण के कारण 1 जुलाई सन 1943 को किशोरीलाल की सजा में छूट स्वीकृत हुई और तब तक उन्होंने 14 वर्ष से अधिक समय कारागृह में बिता लिया था। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अपने रिहा होने का दावा भी प्रस्तुत किया, किंतु ब्रिटिश काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा कि किशोरीलाल को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा दी गई है, जबकि साधारण आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष मानी गई है। भले ही वो अंडमान के जेल में न हो, किंतु उनके मामले में ये अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने लंबा कठिन समय कारागृह में बिताया और सन 1946 में वे रिहा हुए। अपनी रिहाई के बाद ट्रेड यूनियन के मोर्चों पर उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ काम किया। इसके साथ ही कृषि और कृषकों के हित में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जमीनी स्तर पर लोगों की मदद के लिए उन्होंने कई प्रकल्प चलाए। हम जानते ही हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगाली शासन जमाए बैठे थे। गोवा मुक्ति आंदोलन में भी पंडित किशोरीलाल की भूमिका महत्वपूर्ण रही और सन 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त होकर भारत में शामिल हुआ। किशोरीलाल ने जालंधर में पंजाब बुक सेंटर के प्रभारी के रूप में भी काम किया तथा वे जालंधर में देशभगत यादगार समिति में भी बहुत सक्रिय रहे। पंजाब के निकट फगवाड़ा में एक सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु 11 दिन संघर्ष करने के बाद 11 जुलाई सन 1990 को वे उस अनंत ज्योति में लीन हो गए। नमन ऐसे महान क्रांतिवीर देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित किशोरीलाल के जीवन पर केंद्रित थी।
0: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है गौड़ राज्य चंद्रपुर का इतिहास। इस विषय पर जानकारी देंगी इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा।

0: इतिहास के पन्नों से की 16वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित देवगढ़ किले के बारे में। हमने बताया कि किस तरह वो किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जहां पर पानी के सप्लाई के लिए उस जमाने में टेराकोटा की पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया गया था। किले में स्थित राजा की कचहरी, बादल महल, खजाना, हाथी खाना, बारूद खाना और अनेक इमारतों के बारे में हमने जाना। इसके साथ ही किले की सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा दीवार और उसमें स्थित बुर्जों की महत्वपूर्ण लोकेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। किले के आसपास स्थित बावड़ियों, किस्बन महल और जाटवा की समाधि के साथ अनेक शिव मढ़ियाओं के बारे में हमने आपको बताया। हमने बताया कि किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक सुरक्षा चक्र, जैसे आसपास छोटे किले या गढ़ी और उसके बाद घना वन, नदियां और अनेक किलों से कैसे सुरक्षा जाल बिछाया जाता था, जो कि सूचना तंत्र की तरह भी काम आता था। ये सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई अपनी विषय विशेषज्ञ मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना के जरिए। स्वागत है पूजा जी आपका आज भी हमारे इस एपिसोड में।
1: नमस्कार
0: पूजा जी। देवगढ़ के बारे में तो आपने हमें विस्तार से पिछले एपिसोड में बता दिया था, आज हम गोंड शासन के किस किले के बारे में, किस शहर के, किस नगर के बारे में चर्चा करेंगे?
1: पिछली कड़ियों में बात करते हुए हमने गढ़ा मंडला के गोंड राज्य के बारे में जाना
0: जी,
1: जो कि जबलपुर और उसके आसपास मध्य प्रदेश में स्थित था, और उसके बाद हमने छिंदवाड़ा और उसके आसपास स्थित देवगढ़ के किले के बारे में जाना
0: जी,
1: और अब बारी है अगले गोंड राजवंश की, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था।
0: अच्छा,
1: तो ये जो चंद्रपुर है ये बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है
0: जी,
1: और वर्तमान में इसे चांदा के नाम से जाना जाता है, हालांकि फिर से इसका नाम बदल कर चंद्रपुर कर दिया गया है और अब ये महाराष्ट्र का एक जिला भी है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो गोंड इतिहास में अगर हम देखें तो कथा आती है कि कोल नाम का एक पराक्रमी गोंड था, जो कि जुन गांव मोवाड़ के आसपास किसी क्षेत्र में रहता था
0: जी।
1: तो उसने अपने पराक्रम से मानिकगढ़ के किले को जीत लिया और यहीं से गोंड राज्य की स्थापना हुई, ऐसे तथ्य हमको लोक कथाओं में मिलते हैं। उसने अपने पराक्रम से माणिकगढ़ के किले को जीत लिया और यहां से चंद्रपुर के गोंड राज्य की स्थापना हुई, ऐसा हमें कथाओं से पता चलता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन ऐतिहासिक तथ्य जो है उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है भीम बल्लाल सिंह का, जिनको राजा भीका भी कहते हैं
0: जी।
1: और इनका जो शासनकाल है वो है 13वीं शताब्दी में, यानी 1247 से लेकर 1272 ईस्वी तक
0: जी।
1: तो जो भीम बल्लाल सिंह है इनको ऐतिहासिक रूप से चांदा राजवंश का संस्थापक माना जाता है, और कहीं कहीं ये भी आता है कि जो कोल था उन्होंने सिरपुर की जागीर भीम बल्लाल सिंह को सौंप दी थी, इसलिए उनको राज्य करने का अवसर मिला और उन्होंने चंद्रपुर के गोंड राज्य की शासन व्यवस्था संभाली।
0: अच्छा,
1: इसी राजवंश में एक राजा हुए खंडाक्य बल्लाला राजा। तो जब उन्होंने चंद्रपुर की शासन व्यवस्था संभाली तो कहा जाता है कि उन्हें सिरपुर राजधानी के रूप में जच नहीं रहा था।
0: अच्छा,
1: और उन्हें लगता था कि ये भौगोलिक, आर्थिक और वित्तीय कारणों से ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया
0: जी,
1: और सिरपुर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा नदी के किनारे पर उन्होंने एक नया शहर बसाया
0: जी।
1: सबसे पहले यहाँ पर एक किला बनाया
0: जी,
1: और इस जगह को सुरक्षित कर दिया, तो इस शहर का नाम पड़ा बल्लार शाह।
0: तो क्या ये वही बल्लार शाह है जो कि नागपुर और हैदराबाद के बीच पड़ता है और चंद्रपुर के बिल्कुल नजदीक?
1: जी हाँ, ये वही बल्लार शाह स्टेशन है।
0: अच्छा,
1: आप कभी दक्षिण की तरफ जा रहे हो
0: जी, जी,
1: तो ट्रेन यहाँ बड़े लंबे समय तक हॉल्ट करती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: वो आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अगर आप सिकंदराबाद जाना चाहते हैं
0: जी, जी,
1: तो उसके लिए एक रूट है, अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो दूसरा रूट है, और केरल और कर्नाटक के लिए भी रूट है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो आज भी यहाँ पर एक जंक्शन जैसा है
0: जी।
1: तो बल्लार शाह इस जगह के महत्व को 600-700 साल पहले भी समझ पाए थे
0: जी,
1: और उन्होंने यहाँ राजधानी स्थानांतरित कर ली। तो उस जमाने में भी जो पैदल मार्ग था वो यहीं से होकर गुजरता था, और बल्लार शाह उस समय भी एक जंक्शन की तरह था
0: जी।
1: जब यहाँ राजधानी स्थानांतरित हो गई तो धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी
0: जी।
1: और दूर दूर से आकर लोग यहाँ पर व्यापारी बसने भी लगे
0: जी।
1: तो ये घनी आबादी वाला एक शहर हो गया जहाँ पर विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग बस गए थे।
0: तो श्रोताओं देखिए, पूजा जी हमें इतनी अच्छी जानकारियां देती कि हमें हमारे सोचने का जो नजरिया है वो भी कितना विस्तृत होता चला जा रहा है कि हमारे पूर्वज इतने पहले भी उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि वो जानते थे कि यदि किसी जगह से, आज तो हम ये निश्चित रूप से जानते हैं कि वो एक जंक्शन है, वहां से ट्रेनें विभिन्न मार्गों की होकर के गुजरती हैं, लेकिन तब उन्हें ये मालूम था कि दक्षिण जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। तो उत्तर और दक्षिण के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु था और व्यापारिक स्थल बनाया, तो क्या खूब है ये बात जी। पूजा जी आगे चलते हैं।
1: इसके बाद उनका पोता हुआ हीर सिंह।
0: अच्छा।
1: और हीर सिंह ने जब शासन व्यवस्था संभाली तो उसने अपने अच्छे राजनीतिज्ञ होने का और युद्ध कौशल में पारंगत होने के बहुत से प्रमाण दिए। उसका शासनकाल भी बहुत अच्छी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: खास बात जो हीर सिंह की थी वो ये थी कि उन्होंने कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सब जानते हैं कि जो गोंड जनजाति है
0: जी,
1: उसका कृषि का अपना एक परंपरागत तरीका है
0: जी, जी,
1: वह जंगल में ही कृषि करते हैं और एक स्थान पर करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर करते हैं, तब तक वहां जंगल उगता है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये वो समय था जब वास्तव में समय बदल रहा था और कृषि के आधुनिक तरीकों को भी अपनाना आवश्यक था
0: जी।
1: क्योंकि बहुत से लोग अब वनों को छोड़कर नगर में बस गए थे या नगरों के पास जो ग्राम थे उनमें बस गए थे, तो अब खेती की तकनीकों में अंतर लाना समय की मांग थी। तो हीर सिंह ने समय की इस मांग को समझा और उन्होंने कृषि में क्या आधुनिकता लाई जा सकती है, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, इस पर बहुत काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय का जो गोंड समाज था उसकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ, जो अब नगरों में आकर रहने लगा था या ग्रामों में आकर रहने लगा था।
0: तो पूजा जी, किस तरह के सुधार किए, किस तरह की आधुनिकता की आप बात कर रही हैं?
1: जी हाँ, गोंड काल में जो कृषि में सुधार हुए उसमें बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
0: जी।
1: जैसे कि हम देखते हैं कि गोंड राजवंश में ही एक और राजा हुए हैं, राजा धुंडिया राम शाह।
0: अच्छा।
1: जिनका समय है 16वीं सदी में, 1597 से लेकर 1622 तक। तो इनके समय में हमें दिखता है कि बहुत से जो शैव लिंगायत थे वो आकर चंद्रपुर राज्य में बस गए थे
0: जी।
1: तो वे लोग खेती के अच्छे जानकार थे
0: जी।
1: राम शाह धुंडिया ने इनको भी खेती के कार्यों में कैसे और अधिक आधुनिकता लाई जा सके इस काम पर लगाया
0: जी।
1: और लगातार जो चंद्रपुर राज्य था वो फिर कृषि के आधार पर बहुत प्रगति करता चला गया। इसके साथ ही एक और जो हमको इनका कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है वो ये कि बहुत से तालाबों का निर्माण हुआ। कृषि के लिए जल आपूर्ति की तो आवश्यकता होगी ही,
0: और साथ ही वो जो क्षेत्र है वहाँ जल की कमी भी हमेशा बनी रहती, काफी गर्म जगह
1: जी हाँ। और हमने देखा था ना कि जब गढ़ा मंडला की बात हुई थी तब भी रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया था, और उस समय भी हमने बात की थी कि जो गोंड है उनको जल प्रबंधन का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है। और यहाँ पर क्योंकि आपने जैसे कहा कि पानी की बहुत कमी है, तो कुछ नई तकनीक भी हमको देखने को मिलती हैं कि कम से कम निर्माण में अधिक से अधिक पानी कैसे संग्रहित किया जा सकता है प्राकृतिक रूप से तालाबों में। उसके भी कई सारे उदाहरण हमको यहाँ दिखाई देते हैं। तो जैसे कि चंद्रपुर है, चंद्रपुर के आसपास जो है एक हमको रामाला तालाब दिखाई देता है और इसका निर्माण भी खांडक्या बल्लाल शाह ने कराया था।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा उनके जो वंशज हैं राम शाह, उन्होंने भी तालाब को आगे और सुदृढ़ किया, तो फिर नाम कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर रामाला पड़ गया था।
0: अच्छा।
1: जी हाँ। और हीर शाह जो हुए उन्होंने भी कोमटी नाम का एक तालाब बनाया, और उन्होंने ही नहीं उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी एक घुटकला नाम का एक तालाब बनाया। इस तरीके से हमको चंद्रपुर में ही 6 तालाब मिल जाते हैं। तो अनेक तालाब बनाए गए और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी जगह हैं उन पर भी हमको बहुत से तालाब चंद्रपुर राज्य में मिलते हैं जो राजाओं ने ही नहीं बल्कि आम जनता ने भी बनवाए हैं। ऐसे तालाबों में जैसे एक नाम आता है गढ़चिरौली का कुनघाड़ा तालाब है, इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं जो इस जगह में हमको मिलते हैं तालाबों के।
0: जहाँ भी पानी उपलब्ध होता है वहाँ जाकर लोग बसते आए हैं, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन जो हमारे पूर्ववर्ती राजा थे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें सुदीर्घ शासन करना है तो उस जगह पर जल व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर समुचित पानी होना चाहिए। और इसलिए देखिए हमारे राजाओं ने सबसे ज्यादा जो काम किया है वो पानी की उपलब्धता को लेकर किया है, तालाब खुदवाए।
1: चंद्रपुर के गोंड राजा थे हीरशाह
0: जी,
1: और उनका तो एक उदाहरण बड़ा सुनने लायक है
0: जी।
1: और कैसे उन्होंने समृद्ध किया देखिए, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक आदेश दिया कि जो किसान तालाब खोदेंगे और उसके जल का उपयोग कृषि के लिए करेंगे तो जितनी वो भूमि सिंचित करेंगे वो भूमि उसी किसान की हो जाएगी।
0: अरे वाह।
1: तो इससे कृषि को बड़ा प्रोत्साहन मिला।
0: भी भी।
1: कुछ लोग मिलकर अपना तालाब खोदते और फिर उस पानी से कृषि करते थे। तो इसके साथ ये भी डर था कि अगर लोग इस तरीके से कृषि भूमि ले लेंगे और मान लीजिए फिर उस पर कृषि नहीं की तो फिर स्वामित्व तो उनका हो गया, अब क्या होगा। तो राजा ने एक और आदेश पारित किया और उसमें ये सुनिश्चित किया कि यदि किसी किसान ने उस कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया, उसे यूं ही छोड़ दिया साल भर के लिए, तो फिर वो कृषि भूमि राजा वापस भी ले लेगा। तो इस तरीके से कृषि को बहुत प्रोत्साहन दिया, तालाबों के निर्माण के लिए भी बहुत प्रोत्साहन मिला
0: जी। पूजा जी, जब भी चंद्रपुर के गोंड शासन की बात आती है तो वहाँ के की एक रानी के भी शासन की चर्चा होती है, तो कौन थी वो रानी, किस तरह का था उनका राज्य?
1: जो अभी हमने हीरशाह की बात की
0: जी,
1: जिन्होंने अनेक तालाबों का निर्माण कराया, कृषि भूमि तैयार कराई, तो ये जो हीरशाह थे ये निसंतान थे।
0: अच्छा।
1: और इनकी पत्नी थी रानी हीराई। राजा की मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई तो रानी ने उनकी मृत्यु के उपरांत एक बालक को गोद लिया
0: जी।
1: लेकिन वो भी वयस्क हो पाता उससे पहले उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर रानी ने एक और गोंड बालक गोद लिया जिसका नाम अकवा था, वो बाद में फिर राजा भी बना
0: जी।
1: लेकिन अगर हम चंद्रपुर के गोंड इतिहास में देखें तो हम देखते हैं कि जो रानी हीराई है उनका स्थान तो राजमाता का है और लोग तो उन्हें सनातन की प्रतिमूर्ति भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, मेले लगवाए
0: जी।
1: बहुत कुछ काम किया, तो इसलिए हीराई जो है वो राजमाता चंद्रपुर के नाम से जानी जाती है।
0: तो पूजा जी, क्या जो रानी हीराई ने उस वक्त जो वहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया चंद्रपुर में, क्या वो आज भी देखे जा सकते हैं?
1: जी हाँ, बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे।
0: अच्छा।
1: और बड़े सुप्रसिद्ध हैं, जैसे एक महाकाली का मंदिर है
0: जी,
1: बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। एक और मंदिर है जिसका नाम एक वीरा मंदिर है, और अचलेश्वर का मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है
0: जी।
1: ये सारे मंदिर राजमाता हीराई के द्वारा बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक जुनोना नाम की जगह है, वहां पर एक किला है, उसकी भी नींव जो है वो राजमाता हीराई ने रखी।
0: अच्छा।
1: और उसकी जो परकोटे की दीवार है उसका भी काफी हद तक निर्माण जो है रानी हीराई के शासनकाल में ही हो चुका था।
0: अच्छा।
1: इसी तरह चंदनखेड़ा का किला भी रानी हीराई ने ही बनवाया। और रानी हीराई का जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम माना जाता है वो ये है, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि महाकाली का मंदिर रानी हीराई ने बनवाया था, तो वहां उन्होंने एक और परंपरा डाली, एक मेले का आरंभ करवाया
0: जी।
1: ये मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है।
0: अच्छा।
1: और आज भी लगता है, इतने 100 साल के बाद भी वहां लगता है
0: जी।
1: और इस मेले ने उस समय भी और आज भी बहुत सा परिवर्तन लाया
0: जी जी।
1: जैसे कि धर्म, व्यापार, सांस्कृतिक विनिमय को बहुत प्रोत्साहन मिला, और आज भी ये बड़े धूमधाम से ये मेला लगता है, हजारों लाखों लोग वहां पर जाते हैं
0: जी, जी।
1: चैत्र की पूर्णिमा पर। फिर यहाँ जब ये मेला लगता है इससे पहले कुछ यात्राएं भी होती हैं, परिक्रमाएं भी होती हैं, उससे भी बहुत सारे जन समुदाय आज तक इस क्षेत्र में जुड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक और योगदान है जो राजमाता हीराई का है, वो ये है कि जब उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया तो उन्होंने विद्वानों को, लोक गीतकारों को कवियों को बहुत प्रश्रय दिया।
0: अच्छा।
1: और आप मराठी के जो कई भजन सुनते हैं, कई गीत सुनते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, यहाँ तक कि बहुत सी मराठी की आरतियां भी जो हैं,
0: जी जी,
1: वो भी राजमाता हिरई के समय की हैं।
0: अरे वाह।
1: जो उन्होंने उस समय विद्वानों को प्रश्रय देकर लिखवाई
0: जी।
1: और उनका प्रचलन आज भी हमको जगह जगह सुनाई देता है।
0: तो देखिए कितनी अच्छी परंपरा जो चैत्र पूर्णिमा का मेला रानी हिरई ने वहां पर शुरू कराया, वो न सिर्फ परंपरा के रूप में, आस्था के रूप में या धर्म का प्रतीक है, बल्कि आज तक वो पूरे क्षेत्र के लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का भी केंद्र हो गया, क्योंकि पहले यात्राएं निकलती हैं, फिर इतने वक्त तक तो व्यापार का भी हो गया और साथ ही साथ मनोरंजन का तो है ही। तो पूजा जी, राजमाता हिरई के बाद चंद्रपुर में किसने शासन किया?
1: चंद्रपुर में अनेक राजा हुए, पर जो उल्लेखनीय राजा हैं वो हैं कर्ण शाह।
0: अच्छा।
1: और उनका समय है 1547 से लेकर 1572 तक।
0: जी।
1: ये अकवा के पुत्र थे जिनकी अभी हमने बात की।
0: जी जी जी।
1: और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत न्यायप्रिय थे और इन्होंने गोंड राज्य का बहुत विस्तार भी किया।
0: जी।
1: और इनके समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना ये है कि जैसे हमने गढ़ामंडला में भी देखा था कि ये वो समय था जब तेलंगाना में बहमनियों का शासन था।
0: अच्छा।
1: और उस समय जो तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे उनका बड़ा उत्पीड़न हो रहा था।
0: जी।
1: और हमने जैसा पहले सुना भी था कि गढ़ामंडला में रानी दुर्गावती ने भी उनको प्रश्रय दिया था तेलुगु ब्राह्मणों को, तो उसी प्रकार से कर्ण शाह ने भी उनको प्रश्रय दिया। और केवल प्रश्रय ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने बहुत सारी जमीनें भी उनको
0: अच्छा,
1: दान में दी, जिससे कि वे वहां पर अध्ययन अध्यापन कर सकें और राज्य के प्रगति में काम आ सकें।
0: जी जी।
1: तो आपने एक जगह सुनी होगी शायद बाबूपेठ के नाम से।
0: जी जी।
1: महाराष्ट्र में है
0: जी।
1: यही चंद्रपुर के पास में। तो कहते हैं कि जब कर्ण शाह ने तेलुगु ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाया तो सबसे पहले उन्होंने उनको अपने चंद्रपुर किले के अंदर ही बसाया।
0: अच्छा।
1: किले की जो बाहरी दीवार होती है उसके अंदर का जो परिसर होता है वहां पर उनको बसाया।
0: जी।
1: तो इतनी बड़ी संख्या में तेलुगु ब्राह्मण वहां से उत्पीड़ित होकर आए थे कि वह जगह छोटी पड़ गई।
0: अच्छा।
1: और जो परकोटा था किले का उसके बाहर बबूल के पेड़ों का जंगल था।
0: जी।
1: तो इतनी बड़ी संख्या में ये ब्राह्मण आए थे कि उन्हें परकोटे के बाहर बबूल के पेड़ों को की सफाई करके भी रहना पड़ा।
0: अच्छा।
1: तो ये जगह का नाम पड़ा परकोटे के बाहर की जो जगह थी बबूलपेठ।
0: अच्छा, अच्छा।
1: आजकल ये जगह बाबूपेठ के नाम से जानी जाती है।
0: तो बबूलपेठ से बाबूपेठ हो गया।
1: हाँ जी।
0: बोलते बोलते अपभ्रंश हुआ। तो जो कर्ण शाह थे पूजा जी, इनका क्या क्या योगदान था, इन्होंने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया?
1: इन्होंने अपने पहले तो राज्य का विस्तार किया, इनका राज्य अब उमरेड, पटपवनी, चीचगढ़ यहाँ तक फैल चुका था।
0: अच्छा।
1: और फिर अनेक निर्माण कार्य भी कराए। तो चांदा में एक पुराना शिव मंदिर है
0: जी,
1: वो भी इनका बनाया हुआ है। इसके अलावा एक गुफा है।
0: अच्छा।
1: उसको भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो कर्ण शाह ने काफी काम कराए और जो उमरेड का दुर्ग है वो भी कर्ण शाह के काल का ही है। कर्ण शाह के बाद फिर बाबा जी बल्लाल शाह का राजत्व काल आरंभ हुआ 1572 से लेकर 1597 तक
0: जी।
1: तो इस समय जो है वो बहमनियों ने चंद्रपुर पर आक्रमण किया और बाबा जी बल्लाल शाह को उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। लेकिन एक यहाँ एक कहानी भी है, वो कहानी ये है कि जो चंद्रपुर के गोंड राजा थे
0: जी,
1: उन्होंने भी संगीत को बड़ा अपनाया, बड़े अच्छे संगीतकार हुए इनके भी
0: जी जी।
1: और कहते हैं कि जब इनको जेल में डाल दिया गया बहमनियों द्वारा
0: जी,
1: तो एक सुबह बाबा जी ने एक गीत गाया।
0: अच्छा।
1: जो बहमनी शासक थे उनकी जो रानी थी उन्होंने सुना
0: जी,
1: और वो इससे इतनी प्रभावित हुई कि फिर उन्होंने उन्हें उसी दिन कैद से छोड़ दिया और इतना ही नहीं उनका राज्य भी वापस कर दिया।
0: अरे वाह।
1: हाँ। और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि चंद्रपुर के गोंड राज्य से अनेक राजा लखनऊ जाते थे शास्त्रीय संगीत सीखने।
0: वाह।
1: तो इतनी संगीत
0: इतना
1: की परंपरा,
0: लगाव था और परंपरा जी थी जी।
1: आदिया बल्लाल शाह ने बर्दा नदी के पूर्वी किनारे पर ये किला बनवाया और इस किले के निर्माण में काले पत्थर का उपयोग किया गया। ये किला लगभग 6 एकड़ में फैला है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व की तरफ है। तो सबसे पहले जब हम इस किले में प्रवेश करते हैं तो केशवनाथ का मंदिर आता है, और कहते हैं कि पहले जो केशवनाथ के मंदिर में प्रतिमा रखी थी उस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, यानी
0: जी
1: सोने की परत चढ़ी
0: जी
1: हुई
0: जी
1: थी। बाद में फिर कभी 1818 ईस्वी में के आसपास ये मूर्ति चोरी हो गई।
0: अच्छा
1: तो अब फिर जो भोसले आए, जब मराठा शासन काल आया,
0: जी
1: तो एक पुजारी थे पाटिल मोरे, उन्होंने फिर एक नई शिला की एक नई मूर्ति वहां पर रखवा दी,
0: अच्छा
1: जिसके दर्शन आज भी होते हैं। इसके अलावा दुर्ग में अगर हम अंदर जाएं तो वहां पर जो राजा का महल है
0: जी
1: वो भी हमें दिखाई देता है, उसमें कई सारे अंडरग्राउंड कमरे भी हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, अंडरग्राउंड कमरों का भी बहुत सा उपयोग है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया
0: सुरक्षा
1: था।
0: व्यवस्था के लिए
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: बहुत महत्वपूर्ण है।
1: हाँ ये एक और बात है कि जो ये अंडरग्राउंड कमरे हुआ करते हैं,
0: जी
1: इसमें कई बार तो जैसे दुश्मनों को कैद किया जाता ना,
0: जी
1: तो उसके भी उपयोग आ जाते हैं कि नीचे के कमरों में उनको कैद करके रख लिया
0: जी
1: और ऊपर आप रह रहे हो।
0: जी
1: इस
0: बिल्कुल
1: तरीके के भी प्रमाण मिलते हैं इतिहास में।
0: जी
1: तो इस दुर्ग का जो परकोटा है लगभग 12 मीटर चौड़ा है और काफी दूर तक ये इसकी परिधि है। इस दुर्ग में अस्तबल भी है, अस्तबल के साथ में कुछ और कमरे भी हैं जो वहां के जो कर्मचारी हुआ करते
0: जी
1: होंगे उनके वो रहने के लिए। इसके साथ ही किले के चारों तरफ खाई भी है
0: अच्छा
1: जो कि सुरक्षा व्यवस्था के काम आती थी। किले के अंदर कचहरी है, बहुत सारे निर्माण कार्य हैं, एक बावड़ी भी है। तो ये जो किला है ये आज एक पर्यटन स्थल के रूप में
0: बिल्कुल
1: जाना जाता है।
0: जी
1: और किले की एक बड़ी और खास बात भी है कि ये जो पहाड़ी है जिस पर किले का निर्माण हुआ है, एक और हीरे की खदान भी है। बल्लालपुर की तरह ही एक और किला है चंद्रपुर राज्य का,
0: जी
1: जो कि गढ़चिरौली जिले में है।
0: अच्छा
1: और ये किला तो चांदा से उत्तर पूर्व दिशा में है और 150 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग।
0: अच्छा
1: ये भी एक पर्यटन स्थल है। एक मरुम गांव नाम का स्थान आता है,
0: अच्छा
1: वहां से फिर आप मुड़ेंगे तो फिर ये किला आ जाता है। ये जो किला है ये भी पहाड़ी पर है और जो इसकी योजना है वो वर्गाकार है,
0: अच्छा
1: और ये लगभग 960 मीटर लंबा, 960 मीटर चौड़ा, इस तरीके से लगभग 2 मील क्षेत्रफल
0: ओहो
1: में फैला हुआ है।
0: जी
1: और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि दुर्ग में तो तालाब की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा गहरा तालाब है पहाड़ी के ऊपर।
0: जी
1: इसके साथ ही इसी पहाड़ी से एक नाला भी निकलता है
0: अच्छा
1: जिसको वेलोचना कहते हैं, और ये जाके आगे एक नदी बहती है खोबरागढ़ी नदी,
0: जी
1: उसमें मिल जाता है। और तो यहाँ से कई सारे इससे जुड़े हुए कई सारे अनुष्ठान भी हैं,
0: जी
1: मेले भी हैं, जो आज भी यहाँ पर लगातार कई 100 सालों से चलते आ रहे हैं।
0: जी
1: टीपागढ़ के इस किले के अवशेषों में कुछ भूमिगत कमरे भी हमको देखने को मिलते हैं।
0: जी और उनका जिक्र अभी कुछ देर पहले ही किया था हमने, चर्चा की थी कि वो किस काम में आते थे। पूजा जी ने हमें बताया कि दुश्मनों को कैद करने के लिए भी रखा जाता था ताकि राजा खुद ऊपर रहें और दुश्मन जो जो उनके कैदी हैं वो नीचे रहें और किसी भी तरह से गुंजाइश ना हो कि वो भाग सकें। तो देखिए बहुत अच्छी अच्छी इनकी योजनाएं थीं और हम हर जगह देख रहे हैं कि गोंड अपने किलों के अंदर पहाड़ियों में जल की बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे। वहां तालाब होते थे, तालाब खुदवाए जाते थे और बल्कि पाइपलाइंस तक की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। पिछले एपिसोड में तो पूजा जी ने हमें बताया कि वहां पर बाकायदा टॉयलेट्स का निर्माण किया गया था और मैला ढोने की परंपरा भी नहीं थी, जो मैला था उसे भी पाइप्स के जरिए किले के बाहर किया जाता था। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही। और जहां तक बात की, जहां पर पूजा जी ने बात समाप्त की कि अवशेष, तो निश्चित रूप से ये जो अवशेष हैं वो हमारे सुनहरे इतिहास की थाती हैं और हमें इन्हें सहेज कर रखना होगा, इन पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसी से हमें हमारा समृद्ध इतिहास पता चलता है। फिलहाल इतिहास के पन्नों से मैं आज इतना ही। अपने अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में भी बने रहने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज का विषय था गोंड राज्य चंद्रपुर का इतिहास। इस विषय पर जानकारी दी डॉक्टर पूजा सक्सेना ने, जो कि इतिहासविद है, और इनसे बातचीत कर रहे थे संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल।

0: थोम कोरिया की मौत। फरवरी 1623 की एक उमस भरी शाम को अम्बोइना के सुदूर द्वीप पर थोम कोरिया नामक एक 50 वर्षीय सैनिक का जीवन अपने हिंसक अंत की ओर बढ़ रहा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे आधिकारिक तौर पर एक जापानी सैनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उसका नाम एक भूले हुए वतन और आधुनिक एशिया की अशांत समुद्री धाराओं से परिभाषित जीवन की गूंज समेटे हुए था। थोम का जन्म 1573 में जापान में नहीं बल्कि कोरिया में हुआ था। उसका जीवन संभवतः 1590 के दशक में तब तहस नहस हो गया जब जापानी सेनापति टोयोटोमी हिदेयोशी ने कोरियाई प्रायद्वीप पर क्रूर आक्रमण किया। जापानी सामंतों द्वारा हिराडो बंदरगाह पर लाए गए सैकड़ों कैदियों में युवा थोम भी शामिल था। क्यूशू की महानगरीय दुनिया में कैदी अक्सर निवासी बन जाते थे और पूर्व दुश्मन निहोनमाजी जापानी बस्तियों में नया जीवन तलाशते थे। अधेड़ उम्र तक पहुंचते पहुंचते थोम ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था और एक यूरोपीय कंपनी राज्य की सेवा में मर्सनरी के रूप में एक स्थिर वेतन की तलाश करने लगा। थोम को अवसर तब मिला जब डच कंपनी, जो हमेशा सैनिकों की कमी से जूझती थी, उसने सीधे जापान से सैनिकों की भर्ती का एक महत्वाकांक्षी प्रयोग शुरू किया। डच अधिकारियों का मानना था कि जापानी एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति थे। कंपनी की नज़र में थोम की वास्तविक जातीयता अप्रासंगिक थी। चूंकि उसे एक जापानी बंदरगाह में भर्ती किया गया था, इसलिए उसे एक पेशेवर जापानी सैनिक के रूप में ही भेजा गया। भर्ती के ये अनुबंध अत्यंत कठोर थे। थोम ने संभवतः जापानी लिपि में अनुवादित 3 साल के एक कठोर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मौत की सजा के डर से डच अधिकारियों की हर बात मानने का संकल्प लिया गया था। इन समझौतों की एक खास बात सामूहिक दंड थी। यदि कोई सैनिक भागता या विद्रोह करता तो वीओसी जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी और बच्चों को सजा देने का अधिकार रखती थी। ये प्रयोग अम्बोइना साजिश ट्रायल के रूप में एक दुखद और डरावने मोड़ पर समाप्त हुआ। संदेह तब शुरू हुआ जब शिचिजो नामक एक साथी सैनिक ने डच संतरी से निकले के पहरे स्टेशन के बारे में कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लिए। यातना के असहनीय दबाव में शिचिजो और अन्य लोगों ने अंग्रेजों के लिए किला हथियाने की एक बड़ी साजिश का कबूलनामा दे दिया। थोम कोरिया भी इस उन्माद की चपेट में आ गया। उसे 1623 में 9 अन्य जापानी सैनिकों और 10 अंग्रेज व्यापारियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। उसका जीवन संवादात्मक प्रभुत्व यानी इंटरेक्टिव डोमिनेंस के उस वैश्विक युग का एक ज्वलंत प्रमाण है जहां एक कोरियाई लड़का जापानियों द्वारा बंदी बनाया जा सकता था और एक डच सैनिक के रूप में मर सकता था।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय है योग वशिष्ठ, क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता। इस विषय पर जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से बातचीत करेंगी सुनीता सिंह।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, समय की हथेली पर ठहरा कोई भी क्षण कभी स्थायी नहीं होता। भोर की पहली किरण संध्या में ढल जाती है, फूलों की मुस्कान भी एक दिन मुरझा जाती है, उपवन की रंगत नीरवता बन जाती है और जीवन देखते ही देखते स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन जाता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो दिखाई देता है वो भी एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएगा। किंतु इस नश्वरता के बीच एक सत्य ऐसा भी है जो कभी क्षीण नहीं होता, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश। भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। इसमें बताया गया है कि संसार की क्षणभंगुरता भय का विषय नहीं बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो मोह के बंधनों से ऊपर उठकर शांति, विवेक और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद में आज इसी क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता विषय पर चर्चा करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में
3: जी,
2: और हम उस पृष्ठ पर हैं जहाँ क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर चर्चा है
3: जी।
2: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इस संसार के प्रति आकर्षित चित्त को कहीं भी विश्राम क्यों नहीं मिलता है?
3: इसलिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु से कि तात इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी दृष्टि में चित्त को विश्राम प्रदान करे। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल क्रीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, युवा अवस्था में मन विषयों की तरफ भागता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है उस समय सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। राम जी कह रहे हैं कि ये प्राण भी छोड़ करके शरीर को दूर चला जाता है और मनुष्य इस संसार सरोवर में सिर्फ शुष्कता को प्राप्त होता है
2: जी।
3: उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो ये जो चित्त है, चित्त को ठहरने की स्थिति संसार में कहीं नहीं है
2: जी,
3: क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, क्षण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम विषयों से आसक्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक हमारे चित्त को शांति देगा। हम अपने अनुभव में भी अगर ध्यान दें, थोड़ी सावधानी से देखें
2: जी,
3: उसे
2: जी।
3: तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जिन विषयों में बहुत सुख और शांति की कल्पना करते थे, उनकी प्राप्ति के बाद हम सुखी और शांत नहीं हुए।
2: बिल्कुल।
3: तो ये राम जी चूंकि उस समय उत्कट वैराग्य उनको हुआ है विवेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्षणिक मिलता है विश्राम, लेकिन आत्यंतिक विश्राम नहीं मिलता जहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति हो सके।
2: जी जी
3: जी।
2: अच्छा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो संतोष है वो परम सुख है, उसे ही सबसे बड़ा धन भी कहा गया है
3: जी।
2: तो मनुष्य इससे वंचित क्यों होता? कौन है जो मनुष्य को संतोष से वंचित कर देता है?
3: बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी कहते हैं कि इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तृष्णा जो है आपको किसी भी पदार्थ के साथ सुखी नहीं होने देगी। जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति होगी फिर तृष्णा किसी और की होगी
2: जी।
3: तो ऐसे में तृष्णा रूपी नदी संसार में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए जो संतोष को परम सुख माना ऋषियों ने, वो इसलिए कहा, जबकि आज के समय में आप देखें तो संतोष की अवहेलना करने की बात की जाती है कि संतोष करने का मतलब हुआ कि आप तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे, विकास करना है तो आपको लगातार तृष्णा की नदी में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी अवधारणा ही बड़ी अलग है, क्योंकि ये वैराग्य प्रकरण है। वैराग्य प्रकरण से हम कह सकते हैं कि संसार के सत्य का अन्वेषण करते हैं या संसार के सत्य को देख पाते हैं। और जब संसार में कभी असफलता लोगों को प्राप्त होती है तो भी लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग्य एक प्रकार का पलायन उत्पन्न करता है, वो रोग का रूप ले लेता है। लेकिन ये विवेक से जो उत्पन्न जो वैराग्य है, वो संसार में चित्त में जो राग और द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति है उसको शांत करता है। तो विवेक का जो वैराग्य है वो स्वीकार्य है, लेकिन अज्ञानता में उत्पन्न वैराग्य मानसिक रोग का कारण बन सकता है।
2: अच्छा, एक बड़ी रोचक सी बात आपने कही कि एक उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है कि अब छलांग लगाइए तृष्णा की नदी में है।
3: जी।
2: ये बात सही है कि खूब सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, ये बात बहुत होती है इन दिनों।
3: जी जी।
2: तो जो मनुष्य है वो जीवन में सपने देखना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
3: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया।
2: दृष्टि कैसी हो?
3: दृष्टि ऐसी हो कि संतोष हो। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी नदी है, इसको हम समझें कि हम तृष्णा के वशीभूत ना हो जाएं। वो कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी नदी जो है, ये संतोष रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, यानी संतोष की जड़ को खोद देगी ये। और जब संतोष की जड़ खुद जाएगा तो फिर सुख से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सुख शास्त्रों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋषियों की दृष्टि में संतोष को परम सुख का कारण माना गया। संतोष में सुख होता है। योग में कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोष ही परम सुख है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। लेकिन यहाँ पर तृष्णा की नदी में तो संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि ये नदी उस संतोष के वृक्ष के जड़ को खोद डालेगी। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से हिलती डुलती रहती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि शरीर में क्षुधा पिपासा ही उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से जीव हिलता डुलता है। और कहते हैं पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह हैं, इसको इंद्रियों से जो हम सुख लेने की बात करते हैं, उस इंद्रियों को ग्राह की संज्ञा दी गई है, जिसने उस हाथी को या कह सकते हैं पकड़ रखा है। तो ग्राह है ये, लगातार इसे टक्कर मारकर डूबोने में लगा रहता है। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव ही बैठे रह सकते हैं, और वो विवेकी ही अपने आप को संभाल सकते हैं। जहां तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार के वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर वृक्षों की शाखाओं पर भटकते रहेंगे, मरकट की भांति कूदते रहेंगे इस डाल से उस डाल।
2: अच्छा, ये बताइए कि संसार में किस प्रकार के महात्मा दुर्लभ हैं?
3: इसके लिए श्री राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, ऐसे महात्मा इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जरा देखिए, कह रहे हैं राम जी की दुख और मोह से जो अपने आप को हमेशा दूर रखता है। जब भी आपत्तियां आती हैं तो आप देखें तो व्यक्ति आपत्तियों से दुखी होता है, और आपत्तियों के आने का मूल कारण होता है मोह। क्योंकि मोह अगर ग्रस्त आप नहीं हैं तो आप आपत्ति का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है संसार में। आमतौर पर आपत्ति आने पर लोग दुखी होते हैं, या फिर मोहग्रस्त होते हैं संसार के विषयों से, या फिर ना भी विषयों से तो अपने कार्य जो नित्य कर्म है उसके प्रति भी कई बार व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और संपत्ति पर जिसको अहंकार शून्यता ना हो। आमतौर पर स्वास्थ्य और संपत्ति को लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ कोई उपलब्धि है, और अहंकार में आदमी सोचता ही है कि ये तो हमने नियमित जीवनचर्या अपना रखी है, इस नाते मैं स्वस्थ हूँ। सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर यहाँ पर भी आप अहंकार शून्य हैं, यहाँ पर भी आपके अंदर उस कहते हैं परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है इस समय खोज पाना। तो क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि अहंकार से युक्त भी लोग दिखाई देते हैं, महात्मा लोग।
2: एक तरह से वो ये बता रहे हैं कि महात्मा को कैसा होना चाहिए।
3: हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं। महात्मा जो होगा वो अहंकार शून्य होगा, वो कभी भी किसी भी विषय से, चाहे अपने त्याग और तपस्या को लेकर के भी अहंकार से ग्रसित नहीं होगा।
2: अच्छा, श्री राम जो कुछ देख रहे हैं उसमें वो शूरवीर भी देख रहे हैं, तो किसे वो कह रहे हैं कि संसार में शूरवीर कौन है?
3: राम जी कहते हैं कि इस संसार में मैं शूरवीर उसे मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। यानी जो मन आपको विवेक वैराग्य से दूर ले जाएगा
2: जी,
3: यानी वो तृष्णा की नदी में आपको बहाना चाहेगा, संतोष रूपी वृक्ष की जड़ों को खोदना चाहेगा, फिर ऐसे में जो लोग विवेक और वैराग्य के द्वारा इसको लांघ जाते हैं यानी मन रूपी तरंगों के पार चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तरंगों के पार जाने का मतलब हुआ, ये संकेत समझें कि जहाँ जल शांत है वहाँ कोई उस लहर नहीं है, उसमें
2: कोई उथल पुथल,
3: उथल पुथल नहीं है, तो ऐसे लोग को मैं शूरवीर मानता हूँ जो उस शांति को अनुभव कर रहे हैं, इस संसार में अशांत चित्त नहीं है, क्योंकि जब तरंगे उठेंगी
2: तो उनके हिसाब से शूरवीर वो है जिसका चित्त शांत हो, चित्त हर परिस्थिति
3: शांत
2: में।
3: हो, बिल्कुल ठीक है,
2: वो
3: वीर है, अन्यथा तो संसार में कई बार आदमी अपने पुण्य को लेकर के बहुत आह्लादित होता है
2: जी,
3: कई बार अपने पाप को लेकर बहुत भयभीत होता है, तो ऐसे में इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, करणीय और अकरणीय के भेद में वो भेद बुद्धि से उलझा हुआ है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग शूरवीर नहीं है, शूरवीर वो हैं जहां तरंगे शांत हो गई हों और चित्त बिल्कुल शांत हो, यानी मन रूपी उत्ताल तरंगों को जो पार कर गए हों, और वो पार आप कर सकते हैं विवेक और वैराग्य से, राग और बुद्धि से पार नहीं किया जा सकता।
2: अच्छा, संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की कामना सभी को है
3: जी,
2: तो क्या कहते हैं श्री राम के लक्ष्मी की जो परिपूर्णता है वो किस तरह से होती है?
3: देखिए, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मी की परिपूर्णता क्षमा, विनय और उदारता आदि सात्विक बलों से होती है, ये सात्विक बल हैं
2: जी।
3: एक कथा भी आती है पुराणों में कि जब लक्ष्मी जी अपने वर का चयन कर रही हैं तो ऐसे में उनकी एक शर्त है कि जो मुझे नहीं चाहेगा वो हमारे चाह का विषय होगा, और लक्ष्मी को चाहने के लिए सारे देवता व्याकुल हैं, हर लोग चाहते हैं कि वरमाला उनके गले में डाल दें वो, लेकिन एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जो शांत बैठे हुए हैं, उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है, तो लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित होती हैं और जाकर के वरमाला उनके गले में डाल देती हैं। तो ऐसे में विष्णु जी का जो चरित्र है वो क्षमा, विनय, शांत, उदारता का है, तो लक्ष्मी इसी सात्विक बल से परिपूर्णता प्रदान करती हैं। अन्यथा लक्ष्मी को प्राप्त करके कभी कोई संतोष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, यानी लक्ष्मी जब अकेले होती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं वो, और वो जब विष्णु के साथ होती हैं तो गरुण की सवारी करती हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मी सेवा करती विष्णु की नजर आती हैं, बाकी सब लोग लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रतीक बताया गया है कि सात्विक बल ही है जो लक्ष्मी को प्राप्त करके परिपूर्णता की अनुभूति कराता है। अगर ये बल आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी असंतोष और बेचैनी का कारण बनेगी।
2: बहुत रोचक सी बात है कि लक्ष्मी की कामना हो लेकिन मन फिर कैसा हो।

0: शक्ति जो है वो प्रारब्ध कर्म से आती है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व का कर्म है जिसकी वजह से जीव देह धारण करता है, और जब देह धारण करता है तो देह के भोग भी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों उसे मिलते हैं। प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर है जो निकल पड़ा है और उसे भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। कोई चाहे कि प्रारब्ध से अपने आप को हम बचा लें, और बचाने के लिए अगर प्रयास करके बचा भी ले तो भी उसे फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोग उसका है। इसीलिए ये मानव जो तन है या मानव योनि है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ऐसी योनि है कि आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करके अपने क्रियामाण, जो कर्म आप कर रहे हैं और जो उस कर्म का फल संचित हो रहा है, इन दोनों को आप रोक सकते हैं और प्रारब्ध को भोग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़े हैं, और भगवान के अवतारों की कथा देखें तो वो प्रारब्ध बस पूर्व के कर्म का वो परिणाम ही तो भोगने आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए? प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध कर्म का वो हेतु बनता है।
1: जी अच्छा, असावधान मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो संसार को किस तरह से देखती, कैसा दिखता है उसको संसार?
0: असावधान मनुष्यों की बुद्धि में यह संसार चिरस्थायिता की प्रतीति कराता है। तो जब इस संसार में हम किसी चीज को स्थायी देखते हैं तो इससे ये समझ लें कि हमने सावधानी पूर्वक संसार को नहीं देखा
1: नहीं
0: है। अगर सावधानी पूर्वक देखें तो यहाँ पर सारी चीजें क्षण में नष्ट हो रही हैं। महात्मा बुद्ध ने जो क्षणभंगवाद उन्होंने बताया कि संसार में हर चीज क्षण में भंग हो रही है, उन्होंने सावधानी के साथ इस चीज को जाना। इसीलिए आप देखते होंगे कि बौद्धिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस उनकी एक मेडिटेशन टेक्निक है कि आप इतने सजग रहें कि जहां पर आपको संसार के सत्य से कभी भी वंचित ना होना पड़े। यानी सत्य संसार का क्या है? क्षणभंगुरता। तो वो क्षणभंगुरता आपको निरंतर दिखाई दे, लिहाजा आप संसार में कभी भी राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे, आपका चित्त शांत होगा। क्योंकि जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो भी क्षण में मिट जाएगा, और जिसके प्रति आपको राग है वो भी, उसकी भी अवधि क्षण भर की है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके चित्त में जो राग देशात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी शांति आनी चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। ये तब होगा जब आप सावधान होकर के इस संसार को देखेंगे। तो संसार को सावधानी से देखने के बाद यहाँ संसार में स्थायित्व तो नहीं दिखता, और असावधानी पूर्वक जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं या संसार में जो भोगों में संलग्न हैं, उनको संसार में चिरस्थायिता की प्रतीति हो रही है।
1: अच्छा, इसमें मनुष्य को अपराधी और उपकार शून्य प्राणी कहा,
0: जी
1: ऐसा क्यों कहा?
0: ऐसा इसलिए कहा कि अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेम की बात राम जी करते हैं
1: जी।
0: कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसा है, ये मतलब कहते हैं कि दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा वो मानता है अपने आप को। ऐसा विश्वास करने का कारण क्या है कि जब इस संसार में श्वास को देने वाला पेड़, कहते हैं कि श्वास जगत में सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जीवन का संबंध श्वासों से है, और उन श्वासों का प्रदाता वो वृक्ष है जो मनुष्य अपने भोग या अपनी आवश्यकता के लिए उसको भी काट देता है। तो कहते हैं ऐसा उपकार शून्य प्राणी इस संसार में सदा जीवित रहेगा, ये कैसे भरोसा करने की बात है जब वो पेड़ों के उपकार को भूल करके उसे भी काट दे रहा है।
1: जी,
0: दिन वो भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा।
1: तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात भी यहां आती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि चित्त को शांत स्थिर करने की बात थी, लगातार हम सुन रहे हैं लक्ष्मी के संदर्भ में आपने ये कहा कि जिसके चित्त में उद्वेलन न हो लक्ष्मी उस तरफ आकर्षित होती है। अशांत कौन रहता है?
0: अशांत रहता है विषयासक्त मनुष्य। आंतरिक अशांति के विघात के लिए ये जो विषय की आसक्ति है ये हमेशा तैयार रहती है। यानी आपके जीवन में अशांति का अनुभव तभी होता है जब किसी विषय के प्रति आपके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए। और विषय क्या करते हैं? राग द्वेष आपके जो अनुभव हुए हैं उस विषय के साथ, उस अनुभव के आधार पर राग द्वेषात्मक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। राम जी कहते हैं कि विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। विषय जो है विश्व वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, और दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक अशांति के विघात के लिए तैयार है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। विषयासक्त व्यक्ति तत्काल मूर्ता या मूर्छित हो जाएगा विषयों के प्रभाव में। तो जब मूर्छित होगा तो वो अपने चित्त की शांति को जान नहीं पाएगा
1: जी।
0: और राम जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिसमें दोष नहीं है, वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है, वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है, और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है, बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। सोचिए ब्रह्मलोक में जो मतलब निवासी हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है, वो कहते हैं कि रुद्र और विष्णु के दृष्टि में वो क्षण है, वो कल्प।
1: अच्छा, तो चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बात है वो यही है, तो इसकी अवधारणा को मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें
0: जी। इसको ऐसे देखें कि ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, जिसे चिरजीवन और क्षण जीवन की जो बुद्धि है ये दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य है, ये भी सत्य नहीं है राम जी कह रहे हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि चिरजीवी हैं ये, तो कहते हैं ये भी दृष्टा की बुद्धि में की कल्पना है, जो दृष्टा इस जगत को देख रहा है, जगत के दृश्यों को देख रहा है, इस कारण से वो दृष्टा है। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि की कल्पना के कारण ये चिरजीवन और क्षणजीवन की अवधारणा उत्पन्न हो रही है। जबकि ये कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है तो ये कल्पना असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उसमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, कास्ट के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेतों के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जो ये भी एक दृष्टा की कल्पना है, इस नाते ये असत्य है। इसका भी कोई जो अवधारणा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राम जी के वैराग्य का प्रकरण है। राम जी ये कह रहे हैं कि उनके समय में भी ये बात रही होगी चिरजीवन और क्षण जीवन की, तो उन्होंने कहा ये भी मेरी दृष्टि में असत्य है क्योंकि ये दृष्टा की कल्पना मात्र है।
1: अच्छा, श्रेष्ठ पुरुषों के पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य की गति पर भी उन्होंने चर्चा की है, तो क्या कहते हैं वो?
0: वो कहते हैं कि जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, पद का अर्थ स्थान, धन, वैभव आदि की जो कल्पना लोग करते हैं, को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है। क्योंकि वो चित्त के द्वारा मारा जा रहा है, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का पद चाहते हैं तो आपको उसमें राग हो गया है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ये आपके चित्त को गिरा देगा और गिरने के कारण निश्चित ही आप गर्त में गिरेंगे। जैसे पशु पक्षी हरी लताओं को खाने के लिए गिर पड़ते हैं पहाड़ों के खाई में, उसी प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के पद को पाने की चेष्टा में अपने चित्त को संसार के विषयों या उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद प्रतिष्ठा में अपने को गिरा देता है, बजाय अपने स्वरूप को जानने या अपने विवेक को जागृत करने के।
1: जी जी, तो क्षण भंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं
0: जी।
1: मैं चाहती हूँ कि चलते चलते बहुत संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा का जो सार है वो रख दें।
0: मैं इस चर्चा का सार यही कहूंगा कि इस संसार में सावधानी पूर्वक अगर हम व्यवहार करना सीखें और संसार को सावधानी पूर्वक देखें तो निश्चित ही इस संसार में जो तृष्णा की नदी बह रही है और जिसने संतोष रूपी धन को कह सकते हैं कि मतलब समाप्त कर रखा है और व्यक्ति ऐसे धन की प्राप्ति के पीछे लगातार भाग रहा है जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को बढ़ा रही है। क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करके चित्त की परिपूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपके पास सात्विक बल हो। सात्विक बल में क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके पास अगर शक्ति आती है तो इस शक्ति से आप अपने आसपास के वातावरण को पोषित करें, क्योंकि सात्विक बल पोषण का काम करता है और ये बल विष्णु जी के पास है, इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने के देवता हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं, तो ऐसे में पालन का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है। तो जब पालन वाला बल आपके अंदर आएगा तो उस बल से आप लक्ष्मी के साथ परिपूर्णता की अनुभूति करेंगे, अन्यथा लक्ष्मी के पीछे भागते हुए तो सारे लोग दिखाई देंगे और कभी भी वो यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, उसमें संतोष नहीं आना है, क्योंकि संतोष सुख की प्राप्ति सात्विक बल से ही हो सकती है।
1: बहुत अच्छी चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता के विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित थे इस बातचीत के लिए योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद, जिसमें आज का विषय था योग वशिष्ठ, क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता। इस विषय पर बातचीत कर रहे थे योग आध्यात्म एवं जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत कर रही थी सुनीता सिंह। इसके साथ ही हमारा आज का योग संवाद कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कॉक्स बाजार एक मानवीय त्रासदी और नौकरशाही का विश्वासघात। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट स्थलों में से एक कॉक्स बाजार एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसकी मृत्यु अत्यंत पेशेवर दुख और हताशा की स्थिति में हुई थी। वो किसी विदेशी सेना से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगियों की निरंतर टालमटोल की नीति से हार गया था। वो व्यक्ति था कैप्टन हीराम कॉक्स, और 1799 में उसका दुखद अंत शुरुआती ब्रिटिश राज की उस गलाकाट हकीकत को उजागर करता है जहां नौकरशाही की ईर्ष्या अक्सर किसी भी युद्ध के मैदान से अधिक घातक होती थी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक मानवीय आपदा का सामना कर रही थी। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी चटगांव के दक्षिणी जंगलों में भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए कलकत्ता की केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार करते हुए कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो पैदल सेना के केवल एक मामूली कैप्टन थे, फिर भी उन्हें प्रो कंसुलर शक्तियां दी गई थीं, जिससे वे भूखों को खाना खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकाल सकते थे। क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने जिले के इस बाहरी के दखल पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का एक ऐसा अभियान चलाया जो जितना प्रभावी था उतना ही क्रूर भी। जब कॉक्स ने आपातकालीन राहत के लिए 80,000 रुपए की मांग की तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। पाउनी स्थापित प्रक्रिया के पीछे छिप गए और जोर देकर कहा कि उन्हें पैसा जारी करने से पहले राजस्व बोर्ड से 3 प्रतियों में प्राधिकरण चाहिए। जब कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा तो वहां के अधिकारियों ने भी बहाने बनाए। यहां तक कि जब चावल की व्यवस्था हो गई तो स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें शरणार्थियों तक अनाज पहुंचाने के लिए कोई नाव नहीं मिल रही है। जब तक कोई सहायता बस्ती तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने आने वाले सामान का अधिकांश हिस्सा हड़प लिया, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मरते रहे। राजस्व में भारी खर्च और इस अव्यवस्था को देखकर कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर अल्यूड क्लार्क ने इन प्रयोगों को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने केवल एक महीने के भीतर कॉक्स को वापस बुला लिया, ये कहते हुए कि उनकी उपस्थिति जिले के नियमित और स्थापित अधिकार में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है। कॉक्स का मनोबल और उनका स्वास्थ्य अपने ही साथियों के इस दैनिक प्रतिरोध के दबाव में टूट गया। ड्यूटी से मुक्त होने के कुछ ही समय बाद वे सीमावर्ती क्षेत्रों की जहरीली जलवायु में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कॉक्स बाजार शहर उनका एकमात्र स्मारक है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज की एक दिलचस्प याद दिलाती है। ये साबित करता है कि शुरुआती कंपनी शासन में गवर्नर जनरल का मानवीय मिशन भी कुछ दृढ़ स्थानीय नौकरशाहों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर क्षेत्र की रक्षा के लिए विफल किया जा सकता था। हीराम कॉक्स केवल असफल नहीं हुए, उन्हें उसी मशीनरी ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जिसकी उन्होंने सेवा की थी।

0: नमस्कार श्रोताओं,
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम भारतीय पत्रकारिता के अग्रपुरुष माधवराव सप्रे के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। इस कार्यक्रम को स्वर दे रहे हैं संदीप शर्मा और मनीषा चतुर्वेदी।
0: 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूं मनीषा।
0: और आज हम अपने कार्यक्रम भारत विभूति में बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत, हिंदी कहानी के जनक माधवराव सप्रे की।
2: किसी भी महापुरुष को समझने के लिए उस युग को समझना आवश्यक है जिसमें उसने जन्म लिया और अपना जीवन जिया। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ। वो काल जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कठोर पकड़ में जकड़ा हुआ था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद ब्रिटिश शासन और भी निरंकुश हो गया था। भारतीय समाज में एक और रूढ़िवाद, जाति भेद और अशिक्षा का अंधेरा था। दूसरी ओर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से एक नई जागृति की लहर धीरे धीरे उठ रही थी।
0: हिंदी साहित्य उस काल में अपनी शैशवावस्था में था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य साहित्य को एक दिशा दी थी, किंतु हिंदी पत्रकारिता और कथा साहित्य अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मराठी, बंगाली और गुजराती में साहित्य और पत्रकारिता अपेक्षाकृत अधिक विकसित थी। हिंदी को एक ऐसे रचनाकार की आवश्यकता थी जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाए, और माधव राव सप्रे को उसी भूमिका के लिए नियति ने चुना था।
2: छत्तीसगढ़ का क्षेत्र उस काल में और भी पिछड़ा था। मध्य प्रांत के अंतर्गत ये क्षेत्र शिक्षा, उद्योग और राजनीतिक चेतना सभी दृष्टियों से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। ऐसे में वहां से हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका निकालना और हिंदी कहानी की नींव रखना ये एक असाधारण साहस और दूरदर्शिता का प्रमाण था।
0: श्रोताओं, माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के पथरिया ग्राम में हुआ। उनका मूल परिवार महाराष्ट्र से आया हुआ मराठी ब्राह्मण परिवार था जो पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ की धरती पर बस गया था। पिता श्री दुर्गा प्रसाद सप्रे एक सात्विक और संस्कारी व्यक्ति थे। परिवार में संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन नियमित रूप से होता था।
2: दोस्तों, बालक माधव अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। गांव की छोटी सी पाठशाला में उन्होंने संस्कृत और हिंदी के साथ प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार पढ़ा हुआ पाठ उन्हें कंठस्थ हो जाता था। बचपन से ही उनमें पढ़ने की असाधारण लालसा थी। जो भी पुस्तक मिलती उसे वो अवश्य पढ़ते थे।
0: छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोकगीत, नदियाँ, जंगल और सामान्य जनजीवन ने उनके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी। इसलिए उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की धरती और वहां के लोगों के प्रति एक गहरी ममता और आत्मीयता दिखाई देती है। पथरिया के उस छोटे से गांव की माटी ने एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जो आगे चलकर हिंदी साहित्य का गौरव बना।
2: रायपुर से नागपुर तक प्रारंभिक शिक्षा के बाद माधव राव उच्च शिक्षा के लिए रायपुर आए। रायपुर उस काल में छत्तीसगढ़ का प्रमुख शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ के राजकीय हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। रायपुर में रहते हुए उनका संपर्क ऐसे शिक्षकों और विद्यार्थियों से हुआ जिनमें राष्ट्रीय चेतना का अंकुरण हो रहा था।
0: और इसके पश्चात वे नागपुर चले गए जो मध्य प्रांत की राजधानी थी और बौद्धिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र थी। नागपुर में उन्होंने उच्च शिक्षा जारी रखी। यहाँ उनकी भाषाई दक्षता और विस्तृत हुई। वे संस्कृत, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी चारों भाषाओं में पारंगत हो गए।
2: नागपुर में उनका परिचय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों और उनकी केसरी पत्रिका से हुआ। तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका उद्घोष उनके हृदय की गहराइयों में उतर गया। इसी दौरान उनकी रुचि पत्रकारिता की ओर भी जाने लगी। उन्होंने देखा कि मराठी में केसरी जैसी पत्रिका जनता को कितना जागृत कर सकती है और उनके मन में विचार आया कि हिंदी में भी एक ऐसी ही पत्रिका होनी चाहिए।
0: श्रोताओं, नागपुर में ही उन्होंने हिंदी और मराठी के साहित्यिक मंडलियों में भाग लेना शुरू किया। उस काल के अनेक विचारक और समाज सुधारक नागपुर में सक्रिय थे। इन सभी संपर्कों ने सप्रे जी की वैचारिक परिपक्वता को और गहरा किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे, एक सरकारी नौकरी का सुरक्षित मार्ग, दूसरा साहित्य और पत्रकारिता का कंटकाकीर्ण किंतु सार्थक मार्ग। उन्होंने बिना किसी संकोच के दूसरा मार्ग चुना। यही उनकी महानता की असली पहचान थी।
2: माधवराव सप्रे को समझने के लिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति, लोक संस्कृति और आदिवासी परंपराओं का अद्भुत समन्वय मिलता है।
0: यहां की मिट्टी में एक अलग ही रस है। यहां के लोगों में एक सहज सरलता और आत्मीयता है। सप्रे जी इसी माटी की संतान थे। उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की ये सरलता और आत्मीयता झलकती है। उनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जो विधवा स्त्री है, वो छत्तीसगढ़ के उसी सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती है जो निर्धन है, निरीह है, किंतु अपने मातृभूमि से अपने बच्चों की तरह जुड़ा है।
2: छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं, लोक गीतों और लोक परंपराओं ने सप्रे जी को एक ऐसी भाषाई संवेदना दी जो पोथियों में नहीं मिलती। उन्होंने जब हिंदी में लिखा तो उनकी भाषा में एक लोक लय थी, एक धरती की मिट्टी की गंध थी जो उन्हें अन्य लेखकों से अलग और विशेष बनाती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उस काल में जो सामाजिक विषमताएं थीं, भूस्वामियों और किसानों के बीच की खाई, जमींदारी प्रथा का अत्याचार, स्त्रियों की दुर्दशा, इन सब ने सप्रे जी के सामाजिक सरोकारों को जन्म दिया। वो केवल साहित्यिक लेखक नहीं थे, वो एक सामाजिक चेतना के वाहक भी थे।
0: दोस्तों, सन 1900 में माधवराव सप्रे ने अपने घनिष्ठ मित्र रामराव चिंचोलकर के सहयोग से बिलासपुर जिले के पेंड्रा नामक स्थान से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आरंभ किया। ये हिंदी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली उन प्रारंभिक पत्रिकाओं में से एक थी जिसका स्वरूप पूर्णतः साहित्यिक और वैचारिक था। पेंड्रा उस काल में एक अत्यंत छोटा और दुर्गम स्थान था। वहां ना तो उन्नत मुद्रण सुविधाएं थी, ना ही पर्याप्त संख्या में पाठक। डाक व्यवस्था भी अनियमित थी, कागज और स्याही की आपूर्ति अनिश्चित थी। इन सब बाधाओं के बावजूद सप्रे जी ने हार नहीं मानी।
2: छत्तीसगढ़ मित्र ये एक मासिक पत्रिका थी। इसमें साहित्य, इतिहास, दर्शन, समाज सुधार, राजनीति और विज्ञान विविध विषयों पर उच्च स्तर के लेख प्रकाशित होते थे। पत्रिका की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण थी ताकि सामान्य पाठक भी उसे समझ सके। इस पत्रिका ने पहली बार छत्तीसगढ़ के हिंदी पाठकों को एक ऐसा मंच दिया जहां वो अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और देश दुनिया की बातें जान सकते थे। ये केवल एक पत्रिका नहीं थी, ये एक आंदोलन था, हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान का आंदोलन।
0: छत्तीसगढ़ मित्र में केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं थी, इसमें समाज सुधार के लेख, भारत के इतिहास पर निबंध, किसानों और मजदूरों की दुर्दशा पर आलेख और राष्ट्रीय आंदोलन की खबरें भी प्रकाशित होती थीं। सप्रे जी चाहते थे कि पत्रिका केवल बुद्धिजीवियों तक सीमित ना रहे, वो आम पाठक तक भी पहुंचे। इसलिए उन्होंने भाषा को सरल रखा और विषयों को जीवन से जोड़ा।
2: पत्रिका में महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर भी लेख प्रकाशित होते थे, जो उस काल में अत्यंत साहसिक और प्रगतिशील कदम था। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के पुनरुद्धार पर भी सामग्री प्रकाशित होती थी।
0: श्रोताओं, आर्थिक कठिनाइयों और ग्राहकों की अपर्याप्त संख्या के कारण छत्तीसगढ़ मित्र केवल 3 वर्षों यानी 1900 से लेकर 1902 तक ही प्रकाशित हो सकी। ये सप्रे जी के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। वो पत्रिका जिसे उन्होंने अपने सपनों के बीज से उगाया था, संसाधनों के अभाव में मुरझा गई, किंतु जो बीज उन्होंने बोया था वो कभी नष्ट नहीं हुआ। उससे प्रेरणा लेकर आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा और कर्मवीर जैसी पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाया।
2: पत्रिका के बंद होने का एक और कारण था पेंड्रा जैसा दूर दराज स्थान। यहाँ से पत्रिका वितरित करना बहुत कठिन काम था। उस काल में रेल मार्ग और डाक सेवाएं सीमित थी, पत्रिका पाठकों तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। इन सब व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद जो 3 वर्ष छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुई वो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। छत्तीसगढ़ मित्र के 1901 के अंक में माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकार और विद्वान इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार करते हैं।
0: ये कहानी एक राजा और एक निर्धन विधवा की है। एक राजा के राज्य में एक निर्धन विधवा रहती है जिसकी छोटी सी झोपड़ी है। राजा उस भूमि को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। विधवा झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। बातचीत के दौरान विधवा राजा से कहती है कि वो जाने के लिए तैयार है, किंतु पहले उसे अपनी झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी दे दे, अपनी मातृभूमि की एक मुट्ठी माटी। राजा टोकरी भरवाता है, किंतु विधवा उस भरी हुई टोकरी को उठाने में असमर्थ हो जाती है। तब वो राजा से कहती है, यदि एक टोकरी भर मिट्टी का भार उठाना मेरे लिए इतना कठिन है, तो जिस राजा के ऊपर पूरी पृथ्वी का भार है, वो उसे कैसे उठा पाएगा?
2: बस ये कथन राजा को आत्मचिंतन पर विवश कर देता है और वो अपनी भूमि हत्याने का विचार छोड़ देता है। इस कहानी में मातृभूमि के प्रति प्रेम, सत्ता की निरंकुशता का विरोध, एक साधारण स्त्री की बुद्धिमता और नैतिक साहस जैसे गहरे विषय बड़े कौशल से उठाए गए हैं। भाषा सरल किंतु भावपूर्ण है, कथानक संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली है। शिल्प की दृष्टि से ये आधुनिक कहानी के सभी तत्वों को धारण करती है, एक केंद्रीय द्वंद, एक क्लाइमेक्स और एक अर्थपूर्ण अंत।
0: एक टोकरी भर मिट्टी एक स्वतंत्र, मौलिक, समकालीन यथार्थ से जुड़ी कहानी थी और इसलिए ये हिंदी कहानी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यदि हम एक टोकरी भर मिट्टी का साहित्यिक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें आधुनिक कहानी के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हैं। ये कहानी उस काल की राजनीतिक परिस्थिति का भी रूपक है। जिस प्रकार राजा एक निर्धन विधवा की भूमि छीनना चाहता है, उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य भारत की भूमि, संसाधन और स्वाभिमान छीन रहा था। ये समानांतर पाठकों को स्पष्ट था और इसलिए कहानी का प्रभाव केवल साहित्यिक नहीं, राजनीतिक भी था।
2: एक टोकरी भर मिट्टी के अतिरिक्त माधवराव सप्रे ने हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं दी। उनका संपूर्ण साहित्यिक योगदान कई आयामों में फैला हुआ है। सप्रे जी के निबंध हिंदी गद्य साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति सभी विषयों पर गहन और विचारोत्तेजक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों की विशेषता यह थी कि वो केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं थे, उनमें एक व्यवहारिक संदेश होता था, एक आह्वान होता था जो पाठक को निष्क्रियता से जगाकर सक्रियता की ओर प्रेरित करता था।
0: उन्होंने भारतीय इतिहास पर भी महत्वपूर्ण लेख लिखे। मराठा इतिहास और शिवाजी महाराज पर उनके लेख अत्यंत शोधपरक और प्रेरणादायक थे। शिवाजी की वीरता और राष्ट्र निर्माण की भावना उन्हें विशेष प्रिय थी। सप्रे जी ने अनुवाद को एक गंभीर साहित्यिक कार्य के रूप में अपनाया। उस काल में अनुवाद को प्रायः द्वितीय श्रेणी का कार्य माना जाता था, किंतु सप्रे जी जानते थे कि एक अच्छा अनुवाद मूल की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए नई भाषा में नई जान फूंकता है। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद किए वे सभी इस कसौटी पर खरे उतरे।
2: उनके संपादकीय और समाचार टिप्पणियां हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने पत्रकारिता में एक मानदंड स्थापित किया, तथ्यात्मक, निष्पक्षता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समन्वय। छत्तीसगढ़ मित्र बंद होने के बाद माधव राव सप्रे स्थायी रूप से नागपुर आ गए। यहाँ उन्होंने साहित्यिक और पत्रकारिता की गतिविधियों को नए सिरे से संगठित किया।
0: नागपुर में उन्होंने हिंदी ग्रंथमाला नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी में उच्च कोटि के साहित्यिक, वैचारिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रकाशन किया। उस काल में हिंदी में अच्छी पुस्तकों का घोर अभाव था। अंग्रेजी, मराठी और बंगाली में ज्ञान विज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध थे, किंतु हिंदी पाठक उनसे वंचित थे। सप्रे जी ने हिंदी ग्रंथमाला के अंतर्गत न केवल मौलिक रचनाएं प्रकाशित की बल्कि अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों के हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किए। इस प्रकार उन्होंने हिंदी पाठकों को भारतीय और विश्व विचार की मुख्य धारा से जोड़ा।
2: हिंदी ग्रंथमाला के अंतर्गत उन्होंने इतिहास, दर्शन, विज्ञान और राजनीति, सभी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की। इसके माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया कि हिंदी केवल काव्य और कथा की भाषा नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान की भी भाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ये उनकी एक दूरदर्शी सोच थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नागपुर में रहते हुए सप्रे जी ने हिंदी केसरी का संपादन किया। ये पत्रिका लोकमान्य तिलक की मराठी केसरी से भी प्रेरित थी और उसी राष्ट्रवादी चेतना के संवाहक थी। हिंदी केसरी में सप्रे जी ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया और जनता को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया।
0: दोस्तों, इस पत्रिका के संपादकीय लेख अत्यंत तर्कपूर्ण, ओजस्वी और प्रभावशाली होते थे। वो पाठकों को न केवल सूचित करते थे बल्कि उनके भीतर एक आंदोलन की भावना जगाते थे।

0: हमें खेद है कि तकनीकी खराबी के कारण आप हमारा कार्यक्रम भारत विभूति पूरा नहीं सुन पाए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: जेम्स रबी की हत्या, एक मौत जिसने साम्राज्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1887 में एक सुदूर जंगल में एक अकेले ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी साम्राज्य के बीच लगभग युद्ध छेड़ दिया था। वो व्यक्ति था जेम्स रबी, और नाफ नदी के मुहाने पर हुई उसकी मौत केवल एक साधारण अपराध नहीं थी, ये उस मानवीय आपदा का रक्त रंजित चरमोत्कर्ष था जिसे अंग्रेज हताशा में अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी 1785 में शुरू होती है, जब बर्मा ने अराकान पर आक्रमण किया, जिसके कारण हजारों शरणार्थी भागकर कंपनी के चटगांव जिले में आ गए। ये मगह शरणार्थी अंग्रेजों के लिए कृषि श्रम का एक संभावित जरिया थे, लेकिन वे एक राजनयिक दुस्वप्न भी थे। बर्मी जनरल वानकेचा उच्च पदस्थ अराकानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था और उसे कंपनी की सीमाओं की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने शरणार्थियों की इस पहली लहर को कैसे संभाला? उन्होंने उन्हें जुआओ डी बैरोस नामक एक पुर्तगाली जमींदार की देखरेख में रख दिया और उसे एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब बर्मी सेना ने वास्तव में सीमा पार की, तो कंपनी की स्थानीय सेना, जो संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और अपनी हार से डरी हुई थी, पीछे हट गई। ये महसूस करते हुए कि ब्रिटिश सुरक्षा एक खोखला वादा है, शरणार्थी पहाड़ियों में भाग गए और जीवित रहने के लिए मुक्त लूटपाट और डकैती का रास्ता चुन लिया। इसी अराजकता के बीच जेम्स रबी को लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रवि की मौत तक स्थानीय कलेक्टर छिपाने की संस्कृति का पालन कर रहा था। वो कलकत्ता में अपने वरिष्ठों के सामने अक्षम न दिखने के लिए बर्मी छापों की रिपोर्ट को हल्का करके पेश करता था। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसे अधिकारी अब दबा नहीं सकते थे, जिसने फोर्ट विलियम्स की केंद्र सरकार को आखिरकार ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी दक्षिणी सीमा एक कानून विहीन शून्य बन गई है। इस संकट का परिणाम वास्तव में विचित्र था। बर्मी गवर्नर वाजा, जिसे पेगू राजा के नाम से जाना जाता है, उसने रवि की हत्या को एक प्रोपोगेंडा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ब्रिटिश कलेक्टर को एक ताना मारते हुए पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया कि वो 4,000 मस्कटधारियों के साथ चटगांव पर आक्रमण कर रहा है ताकि कानून व्यवस्था लागू की जा सके और उन लुटेरों को पकड़ा जा सके जिन्होंने अंग्रेज को मारा था। क्या आप इस संकट की दुखद विडंबना जानते हैं? कलेक्टर शियरमैन बर्ड ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शरणार्थियों को लुटेरा घोषित कर दिया और कहा कि वे कभी भी देश की कोई आवश्यक सेवा नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से इस तथ्य को भूल गए कि सुरक्षा प्रदान करने में उनकी अपनी विफलता ने ही उन्हें अपराध के लिए मजबूर किया था। जेम्स रवि की मौत इस बात की याद दिलाती है कि विचारों के साम्राज्य में ईआईसी अक्सर अपने झंडे के नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा से अधिक सत्ता की छवि की परवाह करती थी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिनों भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। इसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे स्वाधीनता के गान।

0: जिसमें नृत्य नाटिका स्वाधीनता के गान में 12 कविताएं एक साथ पिरोई गईं। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन में।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है हितैषी जी की कविता उरुजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा।

तो ये था गीत, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। आज जब हम आजाद भारत में अपना स्वाधीन जीवन जी रहे हैं, तब इस बात का अनुमान लगाना भी कठिन है कि पिछली शताब्दी के शुरू में कवि इसी स्वाधीनता के स्वप्न देख रहे थे। इसी सपने को आगे बढ़ाया मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। वे बचपन में स्वर्णलता के नाम से छप्पे लिखते थे, फिर किशोर अवस्था में रसिकेश के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप के नाम से किया और भारती तथा नित्यानंद के नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। 1912 में आई उनकी कृति भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा। गुप्त जी हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के पहले महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया और संस्कृत छंदों में कविता लिखी। राष्ट्र चेतना और मानवीय उत्थान उनकी कविता के मूल में है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और अनेक गद्य कृतियां उनकी उपलब्ध हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध और विष्णु प्रिया जैसी कृतियों के महान रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये गीत, मस्तक ऊंचा द्वार मही का।

0: अभी आप सुन रहे थे विगत दिनों भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: रानू खान, वो पहाड़ी विद्रोही जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को 10 साल तक छकाया। क्या आप जानते हैं कि एक दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसे विद्रोही नेता द्वारा व्यवस्थित रूप से अपमानित किया गया जिसे वे उपहास में पहाड़ी कहते थे। ये रानू खान थे, चकमा लोगों के शानदार जनरल और दीवान, जिन्होंने 1776 और 1787 के बीच दुर्गम चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठा के कब्रिस्तान में बदल दिया था। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब कंपनी ने राजस्व की अपनी अतृप्त भूख के कारण चकमा राजा की उन पैतृक जमीनों पर कर लगाने की कोशिश की जो पीढ़ियों से कर मुक्त थी। रानू खान ने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने प्रतीकात्मक चुनौती दी। जब कंपनी ने उन्हें नोटिस देने के लिए सिपाही भेजे तो उन्होंने सिपाहियों को पिटवाया और उनके आधिकारिक सरकारी वारंट परवाना को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। 1777 की शुरुआत में कंपनी ने इस अशांत विद्रोही को पकड़ने के लिए 50 नियमित सिपाहियों का एक दल भेजा। उन्हें त्वरित जीत की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन पर जनजातीय सशस्त्र समूहों और भयंकर कुकी पहाड़ी लड़ाकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। घने जंगलों ने ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण को पूरी तरह बेअसर कर दिया। बड़ा और सुदृढ़ सैन्य दल इस हेतु तैनात किए जाने के बाद भी ब्रिटिश सेना रानू खान को नहीं पकड़ सकी। वो बस आंतरिक पहाड़ियों के उस अदृश्य क्षेत्र में गायब हो गए जहां कंपनी का अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि रानू खान कंपनी की नाक के नीचे अपना राज्य चलाने में कैसे सफल रहे? उन्होंने अपने निशान स्वतंत्रता के झंडे फहराए और स्थानीय जमींदारों को अंग्रेजों को भुगतान करने के बजाय उन्हें नजर यानी औपचारिक कर देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी जमीनों पर काम करने के लिए कंपनी के रैयतों यानी किसानों को पकड़ लिया, जिससे प्रभावी रूप से ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता छीन ली गई। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच व्याप्त छिपाने की संस्कृति ने इस अपमान को और बढ़ा दिया। चटगांव के स्थानीय प्रमुख फ्रांसिस लॉ ने महीनों तक एक शांत दर्शक के रूप में इस अराजकता को देखा। उन्हें डर था कि किसी हलचल की सूचना देने से वे कलकत्ता में अपने वरिष्ठों की नजर में अक्षम लगेंगे, इसलिए उन्होंने तब तक विद्रोह के पैमाने के बारे में झूठ बोला जब तक कि राजस्व का नुकसान इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसे छिपाना असंभव हो गया। रानू खान जानते थे कि अंग्रेज केवल धोखा दे रहे हैं। उन्होंने बाद में कंपनी अधिकारियों से कहा कि वे उनकी लंबी निष्क्रियता को सरकार की कमजोरी के संकेत के रूप में देखते हैं। 10 वर्षों में कंपनी ने 3 अलग अलग सैन्य अभियान चलाए, लेकिन हर बार रानू खान ने पहाड़ियों की गतिशीलता का उपयोग करके उन्हें छकाया। अंततः अंग्रेज युद्ध के मैदान में इस पहाड़ी को हरा नहीं सके। उन्होंने राजनीतिक तोड़फोड़ का सहारा लिया। उन्होंने चकमा राजा जान बख्श खान को आश्वस्त किया कि रानू खान बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और उनका सिंहासन छीन सकते हैं। 1787 में राजा ने अपने जनरल के पीठ पीछे कलकत्ता में एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए। रानू खान, वो व्यक्ति जिसने एक दशक तक ब्रिटिश वारंट फाड़े थे और उनके बेहतरीन सिपाहियों को पछाड़ा था, पहाड़ियों में ओझल हो गए।
2: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिनों भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी। विगत दिवस भोपाल के बाग मुगलिया में संतवाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस कार्यक्रम में कबीर, रविदास, मीराबाई, तुलसीदास और अमीर खुसरो की अमर रचनाओं को शास्त्रीय रागों में पिरोकर प्रस्तुत किया गया। 700 ऐतिहासिक और दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह माधवराव सप्रे संग्रहालय को समर्पित किया गया। यह संग्रह साहित्यकार और वीणा पत्रिका के पूर्व संपादक स्वर्गीय मोहनलाल उपाध्याय निर्मोही की स्मृति में दिया गया। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, गुजराती और राजस्थानी साहित्य, आलोचना, इतिहास और कोश शामिल है। विगत दिवस प्रशासन एकेडमी के स्वर्ण जयंती सभागार में दरभंगा घराने की 13वीं पीढ़ी के गौरव और मल्लिक बंधु पंडित प्रशांत मल्लिक एवं पंडित निशांत मल्लिक ने अपनी गायकी प्रस्तुत की। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। यह परंपरा, परिवर्तन और भविष्य विषय पर केंद्रित है। और अब जानकारी भोपाल में आज के दिन आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 7 बजे स्मार्ट सिटी रोड स्थित LBT सभागार में नाटक आत्मक क्षण का मंचन किया जाएगा। यह था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। आज की कड़ी क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर केंद्रित है।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: कहते हैं कि जलियांवाला बाग की मिट्टी पर गिरने वाला खून उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता था जिनके सीने में आजादी की तमन्ना आग की तरह रोशन थी। 12 साल के एक बालक ने भी उस बाग से मिट्टी उठाकर अंग्रेजों से बदला लेने की सौगंध खाई थी। उस बालक का नाम था भगत सिंह। इंकलाबी परिवार से नाता रखने वाले सरदार भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी थी बल्कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। भगत सिंह समय से आगे की सोच रखने वाले क्रांतिकारी थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा का निर्माण करके पंजाब में क्रांति का आह्वान किया था। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी संघ का निर्माण किया और सशस्त्र क्रांति के द्वारा देश को स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में देखने का ख्वाब देखा था। अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और सांडर्स का वध कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंके। बम फेंकने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत को ये पता चला कि भगत सिंह सांडर्स की हत्या में शामिल थे तो उन पर फिर मुकदमा चलाया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान भगत सिंह ने अपने बयानों और 61 दिन के आमरण व्रत से मुकदमे को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वे रातों रात करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंख का तारा बन गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह की शहादत ने लोगों के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि शहीद शब्द उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया।

0: क्या बात है, आज बच्चा पार्टी बड़ी उधम मचा रही है।
1: एग्जाम जो खत्म हो गई है।
0: ओ, तब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं अब है।
2: दादाजी आज हमको बाहर ले चलो।
0: अरे नहीं भाई, आज तो मुझे बहुत काम है। ऐसा करते हैं अपन परसों चलते हैं। ओहो, अब तुम लोग मानने वाले तो हो नहीं है। चलो ठीक है, गजबीय काका के ढाबे चलते हैं।
2: दादाजी आज एक बात बताना तो भूल ही गई।
0: वो क्या?
2: इसको आज प्राइज मिला है।
0: ओ, किस लिए मिला है?
3: इसने देशभक्ति गीत गाया था।
0: चलो चलो, हमको भी सुनाओ बेटा।

वाह वाह बच्चों, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। पता है तुम्हें, ये गीत राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है और भगत सिंह और उसके साथी इसे बहुत गाया करते थे।

0: लो ढावा भी आ गया बात करते करते।
1: चलो चलो चलो बच्चों, हाँ धीरे धीरे गाड़ी से उतरो, हाँ हाँ धीरे धीरे।
0: अरे छोटू उस्ताद।
2: हाँ मालिक, आया आया आया।
0: अरे भाई ये गजबीय काका नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं?
2: अरे गजबीय काका गए हैं, 2-3 दिन हो गए ना, गांव गए ना अपने।
0: ओ फिर तो तुम्हारे मजे मजे होंगे।
2: अरे कहाँ मालिक, कहाँ हम लोग के काय के मजे, हमारी तो कोई छुट्टी।
0: अच्छा सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना?
2: एकदम एकदम ठीक।
0: चलो ये ठीक है। अच्छा बच्चा पार्टी, तुम लोग क्या क्या खाओगे?
3: दाल तड़का, पनीर की सब्जी, खीर।
2: अरे वाह, तुम लोग की परीक्षा खत्म हो गई क्या? तभी।
0: अच्छा छोटू उस्ताद इनका ऑर्डर ले ले भाई, हैं जल्दी लगवा दे।
3: दादाजी हमें भगत सिंह के बारे में बताओ ना।
0: हाँ बच्चा पार्टी, मैं तो जानता था तुम लोग मानने वाले नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें भगत सिंह के बारे में बताता हूँ। अरे बच्चों, जैसे तुम जिद कर रहे हो ना कहानी सुनाने के लिए, वैसे ही जब भगत सिंह छोटे थे तो वो भी जिद किया करते थे अपनी चाची से कहानी सुनाने के लिए, और खूब कहानियां सुना करते थे। लेकिन उनकी चाची देशभक्ति की कहानी सुनाया करती थी। कहानी सुनते सुनते भगत सिंह कहा करते थे कि मैं भी बड़ा होके अंग्रेजों का सफाया करूंगा।
4: भारतीय क्रांतिकारियों की प्रथम पंक्ति में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व हुए, जिनमें से एक थे भगत सिंह, शहीदों के शहीद भगत सिंह। 11 नवंबर 1907 को जिला लायलपुर में सरदार किशन सिंह जी के घर जन्मे भगत सिंह का उन्मुक्त बचपन घर के देशभक्तिपूर्ण वातावरण को आत्मसात करता रहा और उसके लक्षण भी दिखने लगे।
5: बेटा भगत, ये क्या कर रहे हो?
6: बंदूके बो रहा हूँ।
7: अरे पुत्र, बंदूके बो के तू क्या करेगा?
6: इनसे जो बंदूके होगेगी उनसे मैं अंग्रेजों का सफाया करूँगा।
7: हाय मेरा पुत्र, इतनी चिंता करता है मेरी।
6: मैं बड़ा होकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा।
4: बचपन से ही मेधावी बुद्धि के मालिक भगत सिंह 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते देशभक्ति की भावना के रंग में इतने रंग चुके थे कि जलियांवाला बाग की घटना सुनकर स्कूल से सीधे अमृतसर घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां प्रतिज्ञा करके लौटे कि उन्हें देश की आजादी के लिए लड़ना है, और पिता को सूचित कर चल पड़े इस कठोर डगर पर। पहले सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया, फिर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई।
8: साइमन कमीशन,
9: गो बैक, गो बैक।
8: साइमन कमीशन,
9: गो बैक, गो।
0: ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये।
10: हाँ हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

0: यू बड़े इंडियंस जरूर से निकालोगे, आंदोलन करोगे, यू डॉट इंडियंस।
1: हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे। साथियों आगे बढ़ो,
2: भाग जाओ वरना गोली चलाई जाएगी।
3: साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक।
2: चलाओ लाठियां।
4: जी साहब।
2: खदेड़ दो सबको, मारो।
3: साइमन कमीशन गो बैक।
5: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

0: जी आप ठीक है ना लाला जी? हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे लाला जी।
1: राजगुरु जल्दी आओ, लाला जी के सिर से खून बह रहा है।
0: भगत सिंह, लाला जी के सिर से खून बह रहा है। लाला जी, लाला जी आप ठीक है ना? हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे लाला जी। लाला जी आप ठीक है? लाला जी,
2: आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
0: लाला जी,
1: लाला जी, लाला जी, लाला जी, क्या हो रहा है लाला जी? लाला जी को अस्पताल जाना पड़ेगा जल्दी।
3: लाला जी।

0: मुजरिमों ने लाला जी की, ये राष्ट्र का घोर अपमान है।
1: हाँ, ये राष्ट्र का घोर अपमान है।
2: घोर अपमान है,
1: हम नहीं सहेंगे,
2: हम नहीं सहेंगे अब।
3: हाँ, पंडित जी ठीक कहते हैं।
4: हाँ, इन्होंने लाला जी ही नहीं 30 करोड़ भारतीयों पर लाठी बरसाई है। हम इन अत्याचारियों का दमन करेंगे।
0: हाँ भगत सिंह, हम इन अंग्रेजों को इस देश से निकाल कर रहेंगे।
2: हाँ
1: हाँ, निकाल कर रहेंगे।
2: हाँ,
5: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।

0: लाला लाजपत राय की शहादत पर श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए भगत सिंह और साथियों ने जो प्रण किया उसे पूरा करने के लिए तयशुदा स्थान पर पहुंच गए।
1: अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना ही। राजगुरु, बस इशारा होते ही
2: गोली चलानी है।
1: बिल्कुल, और ध्यान रहे निशाना चूकना नहीं चाहिए।
2: भगत सिंह बिल्कुल नहीं चूकेगा।
1: तैयार तो है हम, बस निशाना सही लगे।
2: हाँ भगत सिंह, इशारा हो चुका है।
1: बिल्कुल, हाँ ठीक। आगे बढ़ो तुम, ध्यान रखना। हाँ आगे बढ़ो, चलाओ गोली।
2: हाँ
1: चलाओ गोली, चलाओ राजगुरु, चलाओ गोली।
3: करना ही है, अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना ही।
1: भागो राजगुरु, भागो सब यहाँ से।
2: हाँ भगत सिंह,
1: जल्दी।
2: हाँ
1: सब अलग अलग निकल जाओ।
2: हाँ निकलो निकलो।
4: काम हुआ भगत सिंह?
1: हाँ पंडित जी, काम तमाम हो गया।
4: ये लो साइकिलें, थाने की तरफ हलचल बढ़ेगी। जल्दी इस तरफ को निकलो। भगत सिंह, तुम दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता की रेल पकड़ो। भगवती चरण ने सब इंतजाम कर दिया है।
1: ठीक है
4: राजगुरु
1: जी।
4: तुम भी साथ जाओगे दोनों भेष बदल कर
1: जी।
4: ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, वहीं मिलेंगे।
1: ठीक है पंडित जी।
0: स्वतंत्रता के आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जयदेव कपूर और सभी साथी सकुशल कलकत्ता पहुंचे और वहां अगले कदम पर विचार विमर्श हुआ।
1: पंडित जी, सैंडर्स वध तो संपन्न हुआ, क्यों ना असेंबली में बम के धमाकों के साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए।
5: हम भी यही चाहते हैं।
4: हाँ भगत सिंह, यही ठीक रहेगा, पर सारी योजना क्या होगी ये बताओ।
1: असेंबली जाकर सरकारी नुमाइंदों के सामने बम फेंके जाएं, वहां पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के पर्चे बांटे जाएं।
4: बिल्कुल सही योजना है।
5: हाँ हम सब समर्थन करते हैं।
1: साथियों, देश हमारा है और हक कानून इन अंग्रेजों के, जमीन हमारी है और पैदावार इनकी, नदियां हमारी है और वाटर टैक्स ये ले, हमारे लिए न वकील न दलील और ना ही अपील। पंडित जी, हमारे कानों में हर पल ये गुलामी काली की तरह गूंजती रहती है।
4: भगत सिंह, सोने के प्याले में ढका हुआ सत्य है ये आजादी, विस्फोट करना ही होगा। सांप केंचली मारकर बैठा है हमारी आजादी पर।
2: पंडित जी, दुनिया के किसी ताकतवर ने आसानी से दी है कभी आजादी? उससे अधिक ताकतवर बनना ही पड़ता है।
4: ठीक कहते हो राजगुरु, हम काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को नहीं छुड़ा पाए, न हम साइमन कमीशन को वापस भेज पाए और लाला जी को भी खो बैठे।
1: लेकिन साथियों, हम कमजोर नहीं हैं। लाला जी की शहादत ने हमें और मजबूत किया है। असेंबली में बम फेंकना तय हुआ समझे।

0: और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकेंगे असेंबली में। केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड सेफ्टी बिल दोनों पास नहीं हो पाए तो वाइस रॉय के विशेष अधिकार से इसे पास कर दिया गया है। कितनी तानाशाही है सुखदेव।
1: हाँ भगत सिंह, और इसकी घोषणा 8 अप्रैल को होगी।
0: हाँ सुखदेव, यही दिन तय करते हैं, 8 अप्रैल।
2: और मैं एंट्री पास का बंदोबस्त करता हूँ।
1: स्थिति और स्थान का जायजा लेना भी बहुत जरूरी है जयदेव कपूर।
2: यह सब मेरे जिम्मे छोड़ दो।
0: तो तय रहा सब?
3: हाँ तय रहा।

8 अप्रैल 1929 का दिन था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया।

0: उन लड़का लोगों को पकड़ के लाओ।
1: पहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है।
2: हम किसी का नुकसान करने के इरादे से नहीं आए हैं। सरकार को इन धमाकों से भी कुछ समझ में ना आए तो ये पर्चे पढ़ लिए जाएं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की हत्या करना आसान है, मगर विचारों की नहीं। हम लाला जी की हत्या का और दोनों बिलों का विरोध करते हैं। हम देश की आजादी के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हैं। हम आजाद होकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये रहे हमारे हथियार, हमें शौक से गिरफ्तार करें।
3: भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारियां दे दी। इसके बाद 7 मई 1929 को भगत सिंह की मांग के मुताबिक जज साहब के सामने उनके बयान हुए।
4: भगत सिंह, क्या तुमने सदन में बम फेंका?
2: सच है जज साहब, हमने बम फेंके।
4: सार्जेंट हैरी ने आपसे पिस्तौल छीनी?
2: असत्य, हमने भरी हुई पिस्तौल खुद टेबल पर रखी।
4: इट मींस तुम मानते हो कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया?
2: जी नहीं जज साहब, हमने कोई अपराध नहीं किया। ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य था और ना ऐसा कोई परिणाम हुआ। हमने सिर्फ अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है।
4: तो फिर तुमने बम क्यों फेंका?
2: जज साहब, अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए दहाड़े हैं हम। हमारे बमों से खाली बेंचों को नुकसान जरूर पहुंचा है, मगर किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। हमारे बम सिर्फ धमाका करने वाले थे। अगर हमारी नीयत मानव रक्त बहाने की होती तो हम उसमें और तीखे रसायन डालते और उन्हें खाली बेंचों की तरफ ना फेंकते। हमारे बमों ने अपने ध्येय से अधिक कुछ नहीं किया। सरकार को चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी थी, जिसे हमने पूरा किया। जज साहब, हम अपने कार्य के अनुसार दंड भुगतने को तैयार हैं, और हमने अपनी मर्जी से अपने आप को खुद सरकार के हवाले किया है।
4: क्या यही है आपकी क्रांति?
2: जी हाँ, यही है हमारी क्रांति। इसका उद्देश्य है साम्राज्यवाद का विनाश हो, सार्वभौमिक शक्ति का सूत्रपात हो, स्वतंत्रता और लोक प्रभुता की स्थापना हो। इनकलाब जिंदाबाद।

0: अपनी गिरफ्तारी का अंजाम जानते थे भगत सिंह और अपने बचाव के विरुद्ध भी थे, सो उन्होंने अदालत के कटघरे को ऐसा मंच बना लिया जहां से वे आजादी के संग्राम में कूद पड़ने के लिए देशवासियों का आह्वान कर सकें। जेल यात्राएं सहते हुए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल भी की। उसी दौरान उन पर सैंडर्स वध का मुकदमा चला तो उन्होंने सच्चाई के साथ इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। स्पेशल कोर्ट में भी मुकदमा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो स्पेशल ट्रिब्यूनल बना। पेश होने के लिए जब लारी में बिठाकर उन्हें लाया जा रहा था तो लारी में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरें ले रही थीं।
1: शहीदों की चिता

0: पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
1: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
0: वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा,
1: वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
0: कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा,
1: उरूजे कामयाबी
2: ऑर्डर ऑर्डर
1: हिंदोस्ता होगा,
0: उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा,
1: उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा।
2: ऑर्डर ऑर्डर।

0: आशना होगा।
1: No need of nuisance here.
2: न्यायाधीश महोदय, आपको हमारा देश प्रेम न्यूसेंस लगता है क्या? आप अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करते? हो सकता है मातृभूमि आपके लिए मिट्टी पत्थरों के बेजान टुकड़े हों, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को माँ का दर्जा देते हैं। वंदे
0: मातरम,
2: वंदे
0: मातरम,
2: वंदे
0: मातरम।
2: जज साहब, ना आप हमारी भक्ति भावना को मार सकते हैं और ना हम इसे आपके पैरों तले रौंदता हुआ देख सकते हैं। नतीजा जल्द ही हमारे पक्ष में होगा जज साहब।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
0: नतीजा तो हमारे हक में ही होगा।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
3: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: ऑर्डर ऑर्डर।

0: जिंदाबाद। आपको हमारी देशभक्ति पर एतराज है तो हमें आपके फैसलों पर एतराज है। हम यह अदालती तमाशा हरगिज नहीं देखना चाहते। बहुत से हम अदालत का बहिष्कार करते हैं। इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद।
2: नारे की गूंज न्यायाधीशों को विचलित कर देती है। भगत सिंह के अदालत के पूर्ण बहिष्कार के फलस्वरूप बिना वकीलों, दलीलों और गवाहों के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया।
3: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दी जाती है।
4: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब
5: जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
2: दिसंबर 1930, जेल में रात्रि का समय। भगत सिंह से मिलने आए हैं शिव वर्मा।
6: अरे भगत सिंह, तुमसे मिलने को ही आया है भाई।
7: अरे शिव वर्मा, बेड़ियों के गीत बड़े मधुर सुनाई दिए, आओ गले मिलने।
8: अरे यार, गले मिलने ही तो आया हूँ भगत सिंह। शायद आखिरी बार, शायद आखिरी बार तुम सलाखों के बाहर बाहें फैला दो और मैं सलाखों के अंदर कर लेता हूँ बाहें। पर मिलने की भूख तो रह ही जाएगी दोस्त।
7: हाँ शिव वर्मा, हमारे दिल भी एक साथ ना धड़के, सरकार को खतरा हो जाता है। ले जा रहे हैं ना तुमको दूसरी जेल में।
8: हाँ चलो, मिलने की इजाजत तो मिली।
7: सोचता था क्रांति का नारा देश के कोने कोने में गूंज उठे, और आज इस काल कोठरी में उसकी गूंज सुन रहा हूं। जीवन का कुछ तो मूल्य हुआ।
8: हाँ भाई, इनकलाब का भरपूर जवाब भी तो मिला है।
7: इस छोटे से जीवन का इससे बढ़कर मूल्य क्या होगा कि ये देश पर कुर्बान हो।
8: हाँ भगत, सही कहा तुमने।
7: सुनो शिव वर्मा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा कुछ ही दिनों में, लेकिन तुम सब इस राह में थक कर बैठ मत जाना। इस क्रांति की लौ को जलाए रखना जब तक देश में आजादी का उजाला ना फैल जाए।
8: हाँ भगत सिंह, मैं क्या, सारा देश याद रखेगा, सारा देश। अच्छा दोस्त, चलूं।
2: 23 मार्च 1931 का दिन आजादी के दीवानों को फांसी पर चढ़ाया जाना था, पर भगत सिंह की निर्भीकता, प्रतिबद्धता और सहजता तो देखिए। भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ से लेनिन का जीवन चरित्र मंगवाया पढ़ने के लिए।
9: कैसे हो भगत सिंह?
7: वकील साहब, प्रसन्न हूं। पुस्तक लाया?
9: हाँ ये लीजिए। भगत सिंह, क्या मैं आपकी आखिरी इच्छा पूछ सकता हूँ?
7: वकील साहब, जीवन में एक ही इच्छा थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए जीऊं और मर मिटूं। आखिरी इच्छा भी यही है, फिर जन्म लूं तो भी देश पर कुर्बान होने के लिए।

0: आएगी फसलें बहार वकील साहब, जरूर आएगी। आजादी दूर नहीं है, उम्मीद रखिए।
1: भगत सिंह जी, फांसी का हुक्म हो चुका है, चलिए।
0: रुको, जरा रुको। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, चलिए।
1: हथकड़ियां लगाओ इन्हें।
2: जी साहब।
0: हमारे हाथों में हथकड़ियां ना लगाई जाएं, हम चेहरे भी नहीं ढकेंगे। हम आजादी के दीवाने मौत से खुद हाथ मिला रहे हैं। फांसी हमारे लिए सजा नहीं, आत्म बलिदान है। चलो। दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी।

0: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। आज की कड़ी समर्पित थी क्रांतिकारी भगत सिंह को। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको शास्त्रीय गायन सुनवा रहे हैं। कलाकार है प्रदक्षिणा भट्ट।

ग्वालियर घराने की खासियत, तिरवट और तराने, वो प्रस्तुत करूँगी। और मैं शुरुआत भोपाली की तिरवट से करूँगी। तिरवट में लिटरली वर्ड्स नहीं रहते हैं, तबले और पखावज के बोलों से मिलकर तिरवट बनती है।

0: धन्यवाद।
1: पुनः जोरदार तालियां सुश्री प्रदीक्षणा भट्ट, श्री चैतन्य भट्ट और श्री तल्लीन त्रिवेदी जी के लिए। बहुत ही सुरमयी और भावपूर्ण प्रस्तुति।
2: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे प्रदक्षिणा भट्ट का शास्त्रीय गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय गायन, कलाकार थी प्रदक्षिणा भट्ट। इसके साथ ही हमारा आज का सुर सागर कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: ढाका की आपूर्ति नावें और कैप्टन कॉक्स की त्रासदी। क्या आप जानते हैं कि औपनिवेशिक इतिहास की सबसे दुखद मानवीय विफलताओं में से एक संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि आपूर्ति वाली नावों के एक ऐसे बेड़े के कारण हुई थी जिसे स्थानीय नौकरशाही ने खोजने से ही इनकार कर दिया था। ये कहानी है ढाका की आपूर्ति नावों की और उस व्यक्ति की जिसने अपने ही सहयोगियों की टाल मटोल वाली नीति से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। वर्ष 1799 था। चटगांव के दक्षिणी जंगलों में एक भयावह मंजर था। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार कर दिया और कैप्टन हीराम कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो प्रोकंसुलर शक्तियों के साथ आए थे और उन्हें भूखों को खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकालने का अधिकार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में इस बाहरी के हस्तक्षेप पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का अभियान छेड़ दिया। जब कॉक्स ने राहत के लिए 80,000 रुपए मांगे तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने स्थापित प्रक्रिया की आड़ ली और 3 प्रतियों में कागजी कार्रवाई की मांग की। हताश होकर कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा, लेकिन वहां की नौकरशाही भी उतनी ही संवेदनहीन थी। ढाका और त्रिपुरा के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मर रहे थे। इस बेतुकेपन का चरम तब आया जब आखिरकार चावल की व्यवस्था हो गई। आपको लगेगा कि संकट टल गया, लेकिन स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें नावें नहीं मिल रही हैं। विशाल नदी प्रणालियों वाले इस क्षेत्र में ढाका और चटगांव के अधिकारियों ने ये तर्क दिया कि उपयुक्त परिवहन नावें उपलब्ध नहीं थीं। क्या आप जानते हैं कि इस दैनिक प्रतिरोध का क्या परिणाम हुआ? जनवरी 1800 तक केवल 16,000 मन चावल ही बस्ती तक पहुंच सका, जो कॉक्स द्वारा मांगी गई मूल मात्रा के 1/4 से भी कम था। जो थोड़ी बहुत सहायता पहुंची उसे भी भ्रष्ट अधिकारियों ने चुरा लिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने केवल भारी खर्च और स्थानीय अधिकारियों की परेशानी को देखा और मिशन को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने कॉक्स को ये कहते हुए वापस बुला लिया कि वे स्थानीय सत्ता के काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रणालीगत तोड़फोड़ से कॉक्स का मनोबल और स्वास्थ्य दोनों टूट गए। वे वहां की जहरीली जलवायु में बीमार पड़ गए और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। आज कॉक्स बाजार शहर उनके एकमात्र स्मारक के रूप में खड़ा है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज का एक डरावना उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि शुरुआती ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने निजी स्वार्थ की रक्षा करने वाले कुछ मुट्ठी भर नौकरशाह किसी भी दुश्मन सेना से कहीं अधिक घातक हो सकते थे। ढाका की लापता नावें समुद्र में नहीं खोई थीं, उनका गला लाल फीता शाही ने घोंट दिया था।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है योग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में रहते समय ज्ञान योग विषय पर कुछ प्रवचन दिए थे। उनकी शिष्या कुमारी वाल्डो ने उन प्रवचनों को लिपिबद्ध कर लिया था। स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी शारदानंद सन 1896 में जब वेदांत प्रचार के लिए अमेरिका गए थे, तब उन्होंने ये प्रवचन कुमारी वाल्डो की नोटबुक से लिख लिए थे।
1: स्वामी जी ने ज्ञान योग का विवेचन उपनिषद तथा भगवत गीता के आधार पर किया है और इस प्रकार इन प्रवचनों में उन्होंने स्पष्ट दर्शाया है कि ज्ञान योग साधक को किस प्रकार मुक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बड़े सरल ढंग से बतला दिया है कि ज्ञान योग के मार्ग में सफल होने के लिए किन गुणों तथा साधना की आवश्यकता है।
0: इस ज्ञान योग का अनुसरण कर आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होकर किस तरह शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, इसका मार्गदर्शन भी स्वामी जी ने बड़े सुंदर एवं युक्तिपूर्ण रूप से किया है।
2: योग का अर्थ है मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने की पद्धति। इतना समझ लेने के बाद आप ईश्वर और मनुष्य की अपनी परिभाषाओं के अनुसार चल सकते हैं और आप देखेंगे कि योग शब्द हर परिभाषा के साथ ठीक बैठ जाता है। सदा याद रखिए कि विभिन्न मानसों के लिए विभिन्न योग है और यदि एक आपके अनुकूल नहीं होता तो दूसरा हो सकता है। सभी धर्म सिद्धांत और व्यवहार दो भागों में विभक्त हैं। पाश्चात्य मानस ने सिद्धांत पक्ष को छोड़ दिया है और वो शुभ कर्म के रूप में धर्म के केवल व्यवहारिक भाग को ही ग्रहण करता है। योग धर्म का व्यवहारिक भाग है और ये प्रदर्शित करता है कि धर्म शुभ कर्मों के अतिरिक्त एक व्यवहारिक शक्ति भी है।
1: इसके बाद स्वामी जी ने समझाया कि जो भी कार्य करते हैं सुख प्राप्ति के लिए आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं।
2: सुख और दुख दोनों ही जंजीरें हैं, एक स्वर्णिम और दूसरी लौह, किंतु दोनों ही हमें बांधने के लिए एक समान दृढ़ है और अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार करने से हमें रोकती है। आत्मा दुख या सुख नहीं जानती, ये तो केवल स्थितियां हैं और स्थितियां अवश्य सदैव बदलती रहती हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद और अपरिवर्तनीय शांति है, हमें इसे पाना नहीं है, वो हमें प्राप्त है। आओ हम अपनी आंखों से कीचड़ खो डालें और उसे देखें। हमें आत्मा में सदैव प्रतिष्ठित रहकर पूर्ण शांति के साथ संसार की दृश्यावली को देखना चाहिए।
0: स्वामी जी ने समझाया, आनंद बाहरी वस्तु से नहीं अंदर से आना चाहिए।
2: इंद्रियों के या मन के भी सभी आनंद क्षणभंगुर हैं, किंतु हमारे अंदर में एक सच्चा असंबद्ध आनंद है जो किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह आत्मा का आनंद ही है जिसे संसार धर्म कहता है। जितना ही अधिक हमारा आनंद हमारे अंतर में होगा उतने ही अधिक हम आध्यात्मिक होंगे। हम आनंद के लिए संसार पर निर्भर ना हो।
1: उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया।
2: कुछ दीन मछुआ स्त्रियों ने भीषण तूफान में फंसकर एक संपन्न व्यक्ति के बगीचे में शरण पाई। उसने उनका दयापूर्वक स्वागत किया, उन्हें भोजन दिया और जिनके सुवास से वायुमंडल परिपूर्ण था ऐसे पुष्पों से घिरे हुए एक सुंदर ग्रीष्मवास में विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। स्त्रियां इस सुगंधित स्वर्ग में लेटी तो किंतु सो न सकी। उन्हें अपने जीवन से कुछ खोया हुआ सा जान पड़ा और उसके बिना वे सुखी ना हो सकी। अंत में एक स्त्री उठी और उस स्थान को गई जहां की वे अपनी मछलियों की टोकरियां छोड़ आई थी। वे उन्हें ग्रीष्मवास में ले आए और तब एक बार फिर परिचित गंध से सुखी होकर वे सब शीघ्र ही गहरी नींद में सो गए।
0: उन्होंने कहा, सभी मनुष्यों में सत्व रज और तमोगुण होते हैं। हाँ, उनके अनुपात अलग अलग होते हैं।
2: संसार मछली की हमारी वो टोकरी न बन जाए जिस पर हमें आनंद के लिए निर्भर होना पड़े। ये तामसिक या तीनों गुणों में से निम्नतम द्वारा बंधना है। इसके बाद वे अहमवादी आते हैं जो सदैव मैं की बातें करते हैं। कभी कभी वे अच्छा काम करते हैं और आध्यात्मिक बन सकते हैं। ये राजसिक या सक्रिय हैं। सर्वोच्च अंतर्मुख स्वभाव वाले सात्विक हैं, जो आत्मा में ही रहते हैं। ये तीन गुण हर मनुष्य में भिन्न अनुपात में हैं और विभिन्न गुण विभिन्न अवसरों पर प्रधानता प्राप्त करते हैं। हमें तमस और रजस को जीतने का और तब उन दोनों को सत्व में मिला देने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए।
1: उन्होंने समझाया, हम अपनी ही आत्मा की पूजा ईश्वर पूजन के रूप में करते हैं।
2: जब हम किसी ईश्वर को मानते हैं तो वास्तव में वो हमारी अपनी आत्मा ही होती है, जिसे हम अपने से पृथक कर देते हैं और उसकी इस प्रकार पूजा करते हैं जैसे कि वो हमसे बाहर हो, किंतु वो सदैव हमारी अपनी आत्मा ही होती है तथा वही एक और अद्वितीय ईश्वर है। पशु का स्वभाव जहां वो है वहीं रहने का है, मनुष्य का शुभ खोजने और अशुभ से बचने का, और ईश्वर का न तो खोजने का और न बचने का, अपितु सदैव आनंदमय रहने का है।
0: ईश्वर सभी में विद्यमान है, हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं।
2: आओ हम ईश्वर बने, हम अपने हृदय महासागर जैसे बनाए, ताकि हम संसार की छोटी छोटी बातों से परे जा सके और उसे केवल एक चित्र की भांति देखें। तब हम इससे बिना किसी प्रकार प्रभावित हुए इसका आनंद ले सकें। संसार में शुभ को क्यों खोजें? हम वहां क्या पा सकते हैं? सर्वोच्च वस्तुएं जो वो दे सकता है उन कांच की गोलियों के समान है जो बच्चे कीचड़ के पोखरे में खेलते हुए पा जाते हैं। वे उन्हें फिर खो देते हैं और तब नए सिरे से उन्हें अपनी खोज प्रारंभ करनी होती है। असीम शक्ति ही धर्म और ईश्वर है। यदि हम मुक्त हों तभी हम आत्मा हैं। अमरता केवल तभी है जब तक कि हम मुक्त हों, ईश्वर तभी है जब वो मुक्त हो।
1: अहम ही हमें स्वर्गीय आनंद से वंचित करता है, स्वामी जी ने कहा।
2: जब तक हम अहम भाव द्वारा निर्मित संसार का त्याग नहीं करते, हम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रविष्ट नहीं हो सकते। न तो कोई कभी प्रविष्ट हुआ, न कोई कभी होगा। संसार के त्याग का अर्थ है अहम भाव को पूर्णतया भूल जाना, उसे बिल्कुल न जानना, शरीर में रहना पर उसके द्वारा शासित न होना। इस दुष्ट अहम भाव को अवश्य ही मिटाना होगा।
0: अपने मैं को हटाना होगा, अहम को त्यागना होगा, तभी ईश्वर मिलेंगे।
2: मनुष्य जाति की सहायता करने की शक्ति उन शांत व्यक्तियों के हाथ में है जो केवल जीवित हैं और प्रेम करते हैं तथा जो अपना व्यक्तित्व पूर्णतः पीछे हटा लेते हैं। वे मेरा या मुझे कभी नहीं कहते। वे दूसरों की सहायता करने में उपकरण बनने में ही धन्य है। वे पूर्णतया ईश्वर से अभिन्न हैं, न तो कुछ मांगते हैं और न सचेतन रूप से कोई काम करते हैं। वे सच्चे जीवन मुक्त हैं, पूर्णतः स्वार्थ रहित। उसका छोटा व्यक्तित्व पूर्णतया उड़ गया होता है, महत्वाकांक्षा का अस्तित्व नहीं रहता। वे व्यक्तित्व रहित पूर्णतया तत्व मात्र हैं। जितना अधिक हम छोटे से अहम को डुबाते हैं उतना ही अधिक ईश्वर आता है। आओ हम इस छोटे से अहम से छुटकारा दें और केवल बड़े अहम को अपने में रहने दें।
1: स्वामी जी ने कहा, अपने आप को मिटाकर ही मुक्ति मिलती है।
2: जब हम अपने को नाम और रूप से मुक्त कर लेते हैं, विशेषतया जब हमें अच्छे बुरे सूक्ष्म या स्थूल किसी भी प्रकार के शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, तभी हम बंधन से छुटकारा पाते हैं। शाश्वत प्रगति, शाश्वत बंधन होगी। हमें समस्त विभेदीकरण से परे होना ही होगा और शाश्वत एकत्व या एक रूपता अथवा ब्रह्म तक पहुंचना ही होगा। आत्मा सभी व्यक्तियों की एक है और अपरिवर्तनीय है, एक और अद्वितीय है। वो जीवन नहीं है अपितु वो जीवन में रूपांतरित कर दी जाती है। वो जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ से परे है। वो निरपेक्ष एकता है।
0: दूसरों को ठेस पहुंचाकर अपनी मुक्ति ढूंढने को स्वामी जी पाप मानते थे। वे कहते थे,
2: नरक के बीच भी सत्य को खोजने का साहस करो। नाम और रूप की सापेक्ष की मुक्ति कभी यथार्थ नहीं हो सकती। कोई रूप नहीं कह सकता मैं रूप मुक्त हूं। जब तक रूप का संपूर्ण भाव नष्ट नहीं होता, मुक्ति नहीं आती। यदि हमारी मुक्ति दूसरों पर आघात करती है तो हम मुक्त नहीं हैं। हमें दूसरों को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वास्तविक अनुभव केवल एक होता है, किंतु सापेक्ष अनुभव अवश्य ही अनेक होते हैं।
1: सब कुछ हमारे सामने है, हम उसे बाहर क्यों ढूंढने जाते हैं?
2: समस्त ज्ञान का स्रोत हम में से प्रत्येक में है, चींटी में तथा सर्वोच्च देवदूत में। वास्तविक धर्म एक है। सारा झगड़ा रूपों का, प्रतीकों का और दृष्टांतों का है। सत्युग खोज लेने वालों के लिए सत्युग पहले से ही विद्यमान है। सत्य ये है कि हमने अपने को खो दिया है और संसार को खोया हुआ समझते हैं। मूर्ख, क्या तू ही सुनता है? तेरे अपने ही हृदय में रात दिन को शाश्वत संगीत हो रहा है। सच्चिदानंद सोहम सोहम सोहम सोहम।
0: प्रतिमा पूजा की परंपरा पर वे बोले,
2: भारत में प्रतिमाओं का प्रारंभ बुद्ध द्वारा एक वैयक्तिक ईश्वर के विरुद्ध किए गए अनवरत प्रचार का परिणाम है। वेदों में प्रतिमाओं की चर्चा भी नहीं है, किंतु सृष्टा और सखा के रूप में ईश्वर के लोभ की प्रतिक्रिया ने महान धर्मोपदेशकों की प्रतिमाएं निर्मित करने का मार्ग दिखलाया और बुद्ध स्वयं मूर्ति बन गए, जिनकी करोड़ों लोग पूजा करते हैं। सुधार के कठिन प्रयत्नों का अंत सदैव सच्चे सुधार को अवरुद्ध करने में होता है।
1: साधारण लोगों के लिए अमूर्त की पूजा करना कठिन है, इसीलिए उसे कोई न कोई मूर्त रूप की जरूरत पड़ती है।
2: उपासना करना हर मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित है। केवल उच्चतम दर्शन शास्त्र ही विशुद्ध अमूर्त विचार तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए मनुष्य उसे सदैव एक व्यक्ति का रूप देता रहेगा। जब तक प्रतीक की पूजा, वो चाहे जो कुछ हो, उसके पीछे स्थित ईश्वर के प्रतीक के रूप में होती है। सर्वोपरि हमें अपने को किसी बात पर केवल इसलिए कि वो ग्रंथों में है, विश्वास करने के अंधविश्वास से मुक्त करने की आवश्यकता है। हर वस्तु, विज्ञान, धर्म, दर्शन तथा अन्य सब को जो किसी पुस्तक में लिखा हो उसके समरूप बनाना एक भीषणतम अत्याचार है। ग्रंथ पूजा मूर्ति पूजा के निकृष्टतम रूप है।
0: उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा,
2: एक बारह सिंगा था, गर्वीला और स्वतंत्र। एक राजा के सदृश उसने अपने बच्चे से कहा, मेरी ओर देखो, मेरे शक्तिशाली सींग देखो, एक चोट से मैं आदमी मार सकता हूं। बारह सिंगा होना कितना अच्छा है। ठीक तभी आखेटक के बिगुल की ध्वनि दूर सुनाई पड़ी और बारह सिंगा अपने चकित बच्चे को लेकर एकदम भाग पड़ा। जब वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो बच्चे ने पूछा, हे मेरे पिता, जब तुम इतने बलवान और वीर हो तो तुम मनुष्य के सामने से क्यों भागते हो? बारह सिंगे ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैं बलवान और शक्तिशाली हूं, किंतु जब मैं वो ध्वनि सुनता हूं तो मुझ पर कुछ ऐसा छा जाता है जो मुझे भगाता है मैं चाहूं या ना चाहूं। ऐसा ही हमारे साथ है। हम ग्रंथों में वर्णित नियमों के बिगुल की ध्वनि सुनते हैं। आदतें और पुराने अंधविश्वास हमें जकड़े रहते हैं। इसका ज्ञान होने के पूर्व ही हम दृढ़ता से बंध जाते हैं और अपने वास्तविक रूप को भूल जाते हैं, जो कि मुक्ति है।
1: स्वामी जी ने कहा, ईश्वर प्राप्ति के लिए पवित्र हृदय का होना जरूरी है, क्योंकि
2: ज्ञान का अस्तित्व शाश्वत है। जो व्यक्ति किसी आध्यात्मिक सत्य को खोज लेता है, उसे हम ईश्वर प्रेरित कहते हैं, और जो कुछ वो संसार में लाता है, वो दिव्य ज्ञान या श्रुति है। किंतु श्रुति भी शाश्वत है, और उसका अंतिम रूप निर्धारित करके उसका अंधानुकरण नहीं किया जा सकता। दिव्य ज्ञान की उपलब्धि ऐसे हर व्यक्ति को हो सकती है जिसने अपने को उसे पाने के योग्य बना लिया हो। पूर्ण पवित्रता सबसे आवश्यक बात है, क्योंकि पवित्र हृदय वाला ही ईश्वर के दर्शन पा सकेगा।
0: उपासना करने के लिए हम ईश्वर के जिस रूप की कल्पना करते हैं, जिन गुणों से उन्हें सजाते हैं, वे मानवीय रूप और गुण हैं। एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाने पर हम ईश्वर के निर्गुण रूप और स्वरूप को पहचान पाते हैं।
2: समस्त प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च है, और ये जगत सबसे महान, क्योंकि यहां मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की जो सर्वोच्च कल्पना हम कर सकते हैं, वो मानवीय है। जो भी गुण हम उसमें आरोपित करते हैं, वे मनुष्य में केवल अल्प परिमाण में। जब हम ऊंचे उठते हैं और ईश्वर की इस कल्पना से निकलना चाहते हैं, हमें शरीर, मन और कल्पना के बाहर निकलना पड़ता है और इस जगत को दृष्टि से परे करना होता है।
1: ईश्वर के समीप पहुंचने पर हम तुच्छ सांसारिक घटना या वस्तु से विचलित नहीं होते, उन्होंने समझाया है।
2: जब हम ब्रह्म होने के लिए ऊंचे उठते हैं, हम संसार में नहीं रह जाते। सभी कुछ विषय रहित विषय ही हो जाता है। जिस एकमात्र संसार को हम जान सकते हैं, मनुष्य उसका शिखर है। जिन्होंने एकत्व या पूर्णता प्राप्त कर ली है, उनको ईश्वर में निवास करने वाला कहा जाता है। समस्त घृणा स्वयं का स्वयं द्वारा हनन है, अतः प्रेम ही जीवन का धर्म है। इस भूमिका तक उठना पूर्ण होना है, किंतु जितने ही अधिक पूर्ण हम होंगे, उतना ही कम काम हम कर सकेंगे। सात्विक जानते हैं कि यह संसार केवल बच्चों का खेल है और उसके विषय में चिंता नहीं करते। जब हम दो बिल्लों को लड़ते और एक दूसरे को काटते हुए देखते हैं, तो हम उद्विग्न नहीं होते। हम जानते हैं ये कोई गंभीर बात नहीं है। पूर्ण व्यक्ति जानता है ये संसार माया है।
0: आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त है। हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमानंद हैं। स्वामी जी ने कहा है,
2: जीवन को ही संसार कहा जाता है। वो हम पर क्रिया करने वाली परस्पर विरोधी शक्तियों का परिणाम है। भौतिकवाद कहता है मुक्ति की ध्वनि एक भ्रम मात्र है। आदर्शवाद कहता है जो ध्वनि बंधन के विषय में कहती है, स्वप्न मात्र है। वेदांत कहता है हम ही साथ मुक्त हैं और मुक्त नहीं भी। इसका अर्थ ये होता है कि हम पार्थिव स्तर पर कभी मुक्त नहीं होते, किंतु आध्यात्मिक पक्ष में सदैव मुक्त हैं। आत्मा मुक्ति और बंधन दोनों से परे है। हम ब्रह्म हैं, हम अमर ज्ञान हैं, इंद्रियों से परे हैं, हम पूर्ण परमानंद हैं।
1: परम ब्रह्म हमारे अंदर ही निहित है। जरूरत है उन्हें अपने में महसूस करने की शक्ति की।
2: मनोकल्पना को वर्जित करके विचार करना असंभव को संभव बनाना है। हर विचार के दो भाग होते हैं, विचार और शब्द। हमें दोनों की आवश्यकता है। जगत की व्याख्या न तो आदर्शवादी कर पाते हैं न भौतिकवादी। इसके लिए हमें विचार और अभिव्यक्ति दोनों को लेना होगा। समस्त ज्ञान प्रतिबिंबित का ज्ञान है। जैसे हम अपने ही मुख को एक दर्पण में प्रतिबिंबित देखती है। अतः कोई अपनी आत्मा या ब्रह्म को नहीं जान सकता, किंतु प्रत्येक वही आत्मा है और उसे ज्ञान का विषय बनाने के लिए उसे उसको प्रतिबिंबित देखना आवश्यक है। अदृश्य तत्व के चित्रों का यह दर्शन ही तथाकथित मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। मूर्तियों या प्रतिमाओं का क्षेत्र जितना समझा जाता है उससे कहीं अधिक विस्तृत है। लकड़ी और पत्थर से लेकर वे ईसा बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों तक फैली है।
0: सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, ये संतुलन प्राप्त करने की एक क्रिया मात्र है। स्वामी जी कहते हैं,
2: सृष्टि कुछ बना देना नहीं है, वो तो सम संतुलन को पुनः प्राप्त करने का एक संघर्ष है। जैसे किसी कार के परमाणु एक जल पात्र की पेंदी में डाल दिए जाने पर वे पृथक पृथक और गुच्छों में ऊपर की ओर झपटती हैं, और जब सब ऊपर आ जाते हैं और सब संतुलन पुनः प्राप्त हो जाता है तो समस्त गति या जीवन एक हो जाता है। यही बात सृष्टि की है। यदि सम संतुलन प्राप्त हो जाए तो सब परिवर्तन रुक जाएगी, जीवन नामधारी वस्तु समाप्त हो जाएगी, जीवन के साथ अशुभ अवश्य रहेगा, क्योंकि संतुलन पुनः प्राप्त हो जाने पर संसार अवश्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समत्व और नाश एक ही बात है। सदैव बिना दुख के आनंद ही पाने की कोई संभावना नहीं है, या बिना अशुभ के शुभ पाने की, क्योंकि जीवन स्वयं ही तो खोया हुआ समसंतुलन है। जो हम चाहते हैं वो मुक्ति है, जीवन आनंद या शुभ नहीं।
1: जीवन और मृत्यु ये एक तांता है, चलता ही रहता है, केवल आत्मा अनंत है।
2: सृष्टि शाश्वत है, अनादि अनंत, एक असीम सरोवर में सदैव गतिशील है। उसमें अब भी ऐसी गहराइयां हैं जहां कोई नहीं पहुंचा, और जहां वैसी निस्पंदता पुनः स्थापित हो गई है, किंतु लहर सदैव प्रगति कर रही है। संतुलन पुनः स्थापित करने का संघर्ष शाश्वत है। जीवन और मृत्यु उसी तथ्य के विभिन्न नाम हैं, वे एक सिक्के के दो पक्ष हैं, दोनों ही माया है। एक बिंदु पर जीवित रहने के प्रयत्न की अगम्य स्थिति और एक क्षण बाद मृत्यु, इस सबसे परे सच्चा स्वरूप है आत्मा। हम सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और तब वो हमारे लिए जीवंत हो जाती है। वस्तुएं स्वयं तो मृत हैं, केवल हम उन्हें जीवन देते हैं, और तब मूर्खों के सदृश हम घूमते हैं और या तो इतने डरते हैं या उनका उपभोग करते हैं। संसार ना तो सत्य है ना असत्य, वो सत्य की छाया है।
0: सत्य तो शाश्वत है, पर समय के अनुसार उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, नए रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है।
2: सत्य सदैव अपरिवर्तित रहता है, किंतु उसे एक आकार में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए समय समय पर सत्य को एक ऐसा रूप या अभिव्यक्ति दी जाती है जिससे मानव जाति अपनी प्रगति के फल स्वरूप ग्रहण करने में समर्थ होती है। प्रत्येक महान धर्मोपदेशक ये जानता है और उससे सावधान रहने का प्रयत्न करता है, किंतु साधारणतया मानव अदृष्ट की अपेक्षा दृष्ट की पूजा करने को अधिक उन्मुख रहता है। इसलिए व्यक्तित्व को पीछे निहित तत्व की ओर बारंबार इंगित करके और उसे समय के अनुरूप एक नया आवरण देने के लिए पैगंबरों की परंपरा संसार में चली आई है।
1: निंदा से डरो मत, वो हमारे अहम को दूर करता है। तभी स्वामी जी कहते हैं,
2: हमारा सर्वोच्च कार्य और प्रभाव तब होता है जब हम अहम के विचार मात्र से रहित हो जाते हैं। केवल निष्काम लोग ही बड़े बड़े परिणाम घटित करते हैं। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तो, वे झूठे अहम को निकाल बाहर करने में सहायता देकर कितनी भलाई कर रही है। यथार्थ आत्मा में दृढ़ता से स्थिर हो, केवल शुद्ध विचार रखो और तुम उपदेशकों की पूरी सेना से अधिक काम कर सकोगे। पवित्रता और मौन से शक्ति की वाणी निकलती है।
0: अंत में स्वामी जी ज्ञान योग को सहज भाव से समझाकर कहते हैं,
2: पहले ध्यान निषेधात्मक प्रकार का होना चाहिए। हर वस्तु को विचारों से निकाल बाहर करो। मन में आने वाली हर वस्तु का मात्र इच्छा की क्रिया द्वारा विश्लेषण करो। तदुपरांत आग्रह पूर्वक उसकी स्थापना करो। जो हम वस्तुता है, सत, चित, आनंद और प्रेम, विषय और विषयी के एकीकरण का साधन है ध्यान करो।
1: स्वामी जी धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। कोई भी सांसारिक लीला उन्हें विचलित नहीं कर सकती।
2: ऊपर वो मुझसे परिपूर्ण है, नीचे वो मुझसे परिपूर्ण है, मध्य में वो मुझसे परिपूर्ण है, मैं सब प्राणियों में हूं और सब प्राणी मुझ में हैं। ओम तत् सत, मैं वो हूं। मैं सत के ऊपर की सत्ता हूं। मैं मन के ऊपर की सत्ता हूं। मैं विश्व की एकात्मा हूं। मैं ना सुख हूं ना दुख। शरीर खाता है पीता है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं वो हूं। मैं द्रव्य हूं, मैं देखता जाता हूं। जब स्वास्थ्य आता है तब मैं दृष्टा होता हूं, जब रोग आता है तब भी मैं दृष्टा होता हूं। मैं ज्ञान का अमृत और सार तत्व हूं। चिरंतन काल तक मैं परिवर्तित नहीं होता। मैं शांत, दैदीप्यमान और अपरिवर्तनीय हूं। ओम तत् सत्, ओम तत् सत्।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण सुन रहे हैं। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। 5:10 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित किशोरी लाल के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। शाम 6:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है गोंड राज्य चंद्रपुर का इतिहास। जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना, जो कि इतिहासविद हैं, और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। योग संवाद, इस कार्यक्रम का समय होगा शाम 7 बजे। आज का विषय है योग वशिष्ठ, क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता। इस विषय पर जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से बातचीत करेंगी सुनीता सिंह। शाम 7:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम। माधव राव सप्रे के जीवन पर केंद्रित होगा।

रात्रि के 8:30 पर सुने कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा आज की कड़ी क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर केंद्रित होगी। रात्रि के 9 कार्यक्रम सुर सागर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको शास्त्रीय गायन सुनवाएंगे, कलाकार होंगी प्रदक्षिणा भट्ट। रात्रि के 9:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की, जिन्हें आप शाम 5 से लेकर रात्रि के 10 तक सुन सकते हैं। दोपहर के 12 रहे हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन।

जो बंदिश सुना रहा हूँ इसमें साहित्यिक शब्दों का उपयोग नहीं है। स्वरों को इस प्रकार से गठन किया है, वो शब्द का काम भी करते हैं। यमन कल्याण में

बोल हैं, नीर गगरी गिरी नार से, नीर नीरे गगरी गगरे गिरी गरे नार नार नीरे सा, सिर सगरी गंगा मग गिर परी, नीर गगरी गिरी नार से।

ये इस बंदिश की खास बात यही है कि अलग से शब्दों का उपयोग नहीं है, केवल स्वरों को इस प्रकार से योजनाबद्ध किया है कि वही शब्द का काम भी करते हैं। हे री

अंतिम प्रस्तुति चैती की है जो परंपरागत है। इसके बोल हैं, हथवा लगत कुम्हलाय गैल रामा।

आज के इस कार्यक्रम में आपने पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: 90.8 गीगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी दोपहर कालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। आरंभ होती है हमारी सांधिकालीन सभा और आप सभी श्रोताओं का हम करते हैं स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को मिक्सलर एप्लीकेशन पर प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम, सोम, अग्नि, सूर्य, वायु, सरस्वती, साध्य, पर्जन्य, अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: अपश्यम गोपा मणिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् स सद्रीचीः स विशूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः। समीपस्थ तथा दूरस्थ मार्गों में गतिमान सूर्यदेव निरंतर गतिशील रहकर भी कभी नहीं गिरते, वे संपूर्ण विश्व का संरक्षण करते हैं। चारों ओर फैलने वाली तेजस्विता को धारण करते हुए समस्त लोकों में विराजमान सूर्यदेव को हम देखते हैं। य ईं चकार न सो अस्य वेदय ईं ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात् स मातुर्योना परिवीतो अंतर्बहुप्रजा निर्रितिमा विवेश। जिसने इसे बनाया वह भी इसे नहीं जानता, जिसने इसे देखा है उससे भी यह लुप्त रहता है। यह माँ के प्रजनन अंग में घिरा हुआ स्थित है, यह प्रजाओं की उत्पत्ति करता हुआ स्वयं अस्तित्व खो देता है। द्यौर में पिता जनिता नाभिरत्र बंधुर में माता पृथ्वी महीयम् उत्तानयोश्च वो योर निरंतरत्रा पिता दुहितुर गर्भ माधात। द्युलोक स्थित सूर्यदेव हमारे पिता और बंधु स्वरूप हैं, वही संसार के नाभिरूप भी हैं। यह विशाल पृथ्वी हमारी माता है। दो पात्रों आकाश के दो गोलार्धों के मध्य स्थित सूर्यदेव अपने द्वारा उत्पन्न पृथ्वी में गर्भ जीवन स्थापित करते हैं। पृच्छामि त्वा परमंतम पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम। इस धरती का अंतिम छोर कौन सा है, सभी भुवनों का केंद्र कहाँ है, अश्व की शक्ति कहाँ है और वाणी का उद्गम कहाँ है, यह हम आपसे पूछते हैं। इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम। यज्ञ की यह वेदिका पृथ्वी का अंतिम छोर है, यह यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी है, यह सोम ही अश्व की शक्ति है, यह ब्रह्मा वाणी का उत्पत्ति स्थान है। सप्तार्ध गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ते धीतिभिर् मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः। संपूर्ण विश्व का निर्माण अपरा प्रकृति के मन, प्राण और पंचभूत रूपी सात पुत्रों से होता है। यह सभी तत्व सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार ही कर्तव्य निर्वाह करते हैं। वे अपनी ज्ञानशीलता, व्यापकता से तथा अपनी संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। न वि जानामि यदि वेदमस्मि निर्ण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि यदा मागन प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः। मैं नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ। मैं मूर्ख की भांति मन से बंधकर चलता रहता हूँ। जब पहले ही प्रकट हुआ सत्य मेरे पास आया, तभी मुझे यह वाणी प्राप्त हुई।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

वसुदेव सुतम देवम कंस चारणोड़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं वसुदेव के पुत्र देवकी के परमानंद कंस और चारणोड़ का सहार करने वाले भगवान कृष्ण जो जगत गुरु हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ।

जैसे भगवान सूर्य उदय होने मात्र से ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही श्रीहरि का नाम एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। अतः समस्त जगत का मंगल करने वाले श्रीहरि नाम की जय हो।

अगर कोई सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है तो भगवान अवश्य उसका कल्याण करते हैं। भगवान के समान हमारा हित करने वाला गुरु भी कोई नहीं।

भगवान के कई रूप हैं, कई नाम हैं, कई प्रकारों से भगवान की कृपा हमें मिल सकती है। हम पूजा किस नाम या किस विधि से करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने अंदर भगवान को अनुभव कितना करते हैं,

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नौजवान साथियों, क्या हमें ये महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आजाद होना चाहिए, किसी दैवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई दैवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए कि हम आजाद हो जाएं? क्या हम आजादी के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? जिन्हें आजाद होना है उन्हें स्वयं चोट करनी पड़ेगी। नौजवानों, जागो, उठो, हम काफी देर सो चुके। हमने केवल नौजवानों से ही अपील की है, क्योंकि मानव प्रगति का संपूर्ण इतिहास नौजवान आदमियों और औरतों के खून से लिखा है। ये अंश है नौजवान भारत सभा लाहौर के घोषणा पत्र का, जिसे सरदार भगत सिंह ने युवाओं को संगठित करने के उद्देश्य से तैयार किया था। भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर भगत सिंह ने भारत की युवा शक्ति को जागृत और संगठित करने का प्रयास किया था, और उनके आह्वान पर अनगिनत युवाओं ने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह के संपर्क में आकर आजीवन क्रांति पथ पर चलने वाले ऐसे ही एक युवा थे, पंडित किशोरी लाल। किशोरी लाल का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के धर्मपुर गांव में हुआ था। उनके पिता रघुवीर दत्त शास्त्री एक अध्यापक थे तथा भगत सिंह के चाचा सरदार अजित सिंह के पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में सक्रिय थे। उनके बड़े भाई भी आर्य समाज के प्रचारक थे, जिनका अनेक क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। किशोरी लाल की आरंभिक शिक्षा धर्मपुर के ही प्राथमिक स्कूल में हुई। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए वो क्वेटा गए, जो कि अब पाकिस्तान में है। क्वेटा में उनके पिता संस्कृत अध्यापक के पद पर नियुक्त थे। यहां से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद किशोरी लाल ने उच्च अध्ययन के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़ते समय ही किशोरी लाल भारत नौजवान सभा के संपर्क में आए। उनके पिता और तीन बड़े भाई पहले ही राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। परिवार में राष्ट्र चेतना के स्वर सदा से ही गूंज रहे थे, इसलिए किशोरी लाल का भारत नौजवान सभा से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था, जिसकी स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। इस सभा से जुड़ते ही किशोरी लाल भगत सिंह के सीधे और करीब संपर्क में आ गए। यही वो बिंदु था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। नौजवान भारत सभा का गठन एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ था। लाला हरदयाल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काकोरी कांड के बाद छिन्न भिन्न हो गया था, उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही नौजवान भारत सभा देश के युवाओं को संगठित कर रही थी, और आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रयासों से ये संगठन पुनर्जीवित हुआ, जिसका नया नाम हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस तरह किशोरी लाल भगत सिंह के अंतरंग साथी के रूप में इस संगठन से जुड़ गए। भगत सिंह के साथ बैठकों में शामिल होकर वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और देश के लिए ही जीने मरने की कसम खा ली।

हमारा देश रातों रात गुलामी की जंजीरों से नहीं जकड़ गया था, बल्कि अंग्रेजों की साजिश, कूटनीति और विश्वासघात ने इसे धीरे धीरे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा। बरसों का इतिहास रहा ये, और भारत को नींद से जगाने में भी बरसों लगे। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वाधीनता के लिए सशस्त्र क्रांति का सूत्रपात सन 1857 से ही हो गया था, और ये सिलसिला विभिन्न चरणों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व सन 1946 तक जारी रहा। इसी कड़ी में सन 1924 से 1931 तक लगभग 8 वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का दबदबा पूरे भारतवर्ष में रहा, जिसके लिए किशोरीलाल ने कितनी ही खतरनाक जिम्मेदारियों को पूरा किया। साइमन कमीशन की खिलाफत करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हुए तो इस एसोसिएशन में खलबली मच गई, और पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या का प्रण लिया गया, जिसे दल के सदस्यों के सहयोग से सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने अंजाम दिया। गुलामी के इस दौर में ब्रिटिश राज के कानून बेहद सख्त थे। किशोरीलाल जानते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों के आसपास खड़े होने की भी कैसी कठिन सजा हो सकती है, लेकिन वो सरदार भगत सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। छोटी बड़ी, खतरनाक या आसान, जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलती, वो जान हथेली पर लेकर उसे पूरा करते। अपने क्रांतिकारी जीवन की अनिश्चितताओं को देखते हुए ही उन्होंने ठान लिया था कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, और वो आजीवन अविवाहित रहे। भारत के मुक्ति संघर्ष के इतिहास में तीसरे दशक के अंतिम कुछ वर्षों में सर्वहारा वर्ग की हड़तालों ने देशव्यापी रूप ले लिया था। मजदूरों की संगठित ट्रेड यूनियन गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। जन सामान्य में भी आक्रोश बढ़ रहा था। इन परिस्थितियों में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के जरिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा देश में उठ रही इन आवाजों को दबाने की मंशा साफ नजर आ रही थी। इस साजिश के

को अंजाम देने लगे। किशोरी लाल भी 69 कश्मीरी बिल्डिंग लाहौर में बम बनाने वाली इकाई में सुखदेव के साथ शामिल थे। पकड़े जाने पर क्या अंजाम होगा ये जानते हुए भी वो निर्भीकता से अपने मिशन में जुटे रहे। 8 अप्रैल सन 1929 को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी। बहरे कानों को खोलने की मंशा पूरी कर ली गई थी। अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। अन्य साथी क्रांतिकारियों की तलाश तेज हुई। 15 अप्रैल सन 1929 को किशोरी लाल सुखदेव के साथ गिरफ्तार हुए। वो बम बनाने, असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स को मारने की साजिश में शामिल पाए गए और उन्हें आजीवन देश निकाला यानी काला पानी की सजा सुनाई गई।

किशोरीलाल जब जेल में एक कैदी के रूप में बंदी बनाए जा रहे थे, तब 77 दिन लंबी ऐतिहासिक भूख हड़ताल में वो शामिल हुए। उन्होंने मुल्तान, लाहौर और मॉन्टगोमरी की जेलों में अपनी लंबी सजा काटी। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण लगभग 5 साल उन्होंने एकांत कारावास में बिताए। जेल में रहते हुए वो कई कम्युनिस्ट कैदियों के संपर्क में आए और मार्क्सवादी साहित्य पढ़ना शुरू किया। इसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। उनके विश्व दृष्टिकोण में बदलाव आया और सन 1936 में जेल में रहते हुए ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया और सन 1942 में वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए। किशोरीलाल को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा हुई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें वहां भेजने के लिए कोई संवाद नहीं किया था, इसलिए पंजाब के गृह सचिव ने उन्हें अंडमान द्वीप भेजने के लिए अनुपयुक्त पाया और वो लाहौर तथा मुल्तान आदि की जेलों में रहे। सदाचरण के कारण 1 जुलाई सन 1943 को किशोरीलाल की सजा में छूट स्वीकृत हुई और तब तक उन्होंने 14 वर्ष से अधिक समय कारागृह में बिता लिया था। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अपने रिहा होने का दावा भी प्रस्तुत किया, किंतु ब्रिटिश काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा कि किशोरीलाल को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा दी गई है, जबकि साधारण आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष मानी गई है। भले ही वो अंडमान के जेल में न हो, किंतु उनके मामले में ये अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने लंबा कठिन समय कारागृह में बिताया और सन 1946 में वे रिहा हुए। अपनी रिहाई के बाद ट्रेड यूनियन के मोर्चों पर उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ काम किया। इसके साथ ही कृषि और कृषकों के हित में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जमीनी स्तर पर लोगों की मदद के लिए उन्होंने कई प्रकल्प चलाए। हम जानते ही हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगाली शासन जमाए बैठे थे। गोवा मुक्ति आंदोलन में भी पंडित किशोरीलाल की भूमिका महत्वपूर्ण रही और सन 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त होकर भारत में शामिल हुआ। किशोरीलाल ने जालंधर में पंजाब बुक सेंटर के प्रभारी के रूप में भी काम किया तथा वे जालंधर में देशभगत यादगार समिति में भी बहुत सक्रिय रहे। पंजाब के निकट फगवाड़ा में एक सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु 11 दिन संघर्ष करने के बाद 11 जुलाई सन 1990 को वे उस अनंत ज्योति में लीन हो गए। नमन ऐसे महान क्रांतिवीर देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से की 16वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित देवगढ़ किले के बारे में। हमने बताया कि किस तरह वो किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जहां पर पानी की सप्लाई के लिए उस जमाने में टेराकोटा की पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया गया था। किले में स्थित राजा की कचहरी, बादल महल, खजाना, हाथी खाना, बारूद खाना और अनेक इमारतों के बारे में हमने जाना। इसके साथ ही किले की सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा दीवार और उसमें स्थित बुर्जों की महत्वपूर्ण लोकेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। किले के आसपास स्थित बावड़ियों, किस्बन महल और जाटवा की समाधि के साथ अनेक शिव मढ़ियाओं के बारे में हमने आपको बताया। हमने बताया कि किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक सुरक्षा चक्र, जैसे आसपास छोटे किले या गढ़ी और उसके बाद घना वन, नदियां और अनेक किलों से कैसे सुरक्षा जाल बिछाया जाता था, जो कि सूचना तंत्र की तरह भी काम आता था। ये सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई अपनी विषय विशेषज्ञ मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना के जरिए। स्वागत है पूजा जी आपका आज भी हमारे इस एपिसोड में।
1: नमस्कार
0: पूजा जी। देवगढ़ के बारे में तो आपने हमें विस्तार से पिछले एपिसोड में बता दिया था, आज हम गोंड शासन के किस किले के बारे में, किस शहर के, किस नगर के बारे में चर्चा करेंगे?
1: पिछली कड़ियों में बात करते हुए हमने गढ़ा मंडला के गोंड राज्य के बारे में जाना
0: जी,
1: जो कि जबलपुर और उसके आसपास मध्य प्रदेश में स्थित था, और उसके बाद हमने छिंदवाड़ा और उसके आसपास स्थित देवगढ़ के किले के बारे में जाना
0: जी,
1: और अब बारी है अगले गोंड राजवंश की, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था।
0: अच्छा,
1: तो ये जो चंद्रपुर है ये बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है
0: जी,
1: और वर्तमान में इसे चांदा के नाम से जाना जाता है, हालांकि फिर से इसका नाम बदल कर चंद्रपुर कर दिया गया है और अब ये महाराष्ट्र का एक जिला भी है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो गोंड इतिहास में अगर हम देखें तो कथा आती है कि कोल नाम का एक पराक्रमी गोंड था, जो कि जुन गांव मोवाड़ के आसपास किसी क्षेत्र में रहता था
0: जी।
1: तो उसने अपने पराक्रम से मानिकगढ़ के किले को जीत लिया और यहीं से गोंड राज्य की स्थापना हुई, ऐसे तथ्य हमको लोक कथाओं में मिलते हैं। उसने अपने पराक्रम से मानिकगढ़ के किले को जीत लिया और यहां से चंद्रपुर के गोंड राज्य की स्थापना हुई, ऐसा हमें कथाओं से पता चलता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन ऐतिहासिक तथ्य जो है उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है भीम बल्लाल सिंह का, जिनको राजा भीका भी कहते हैं
0: जी,
1: और इनका जो शासनकाल है वो है 13वीं शताब्दी में, यानी 1247 से लेकर 1272 ईस्वी तक
0: जी।
1: तो जो भीम बल्लाल सिंह है इनको ऐतिहासिक रूप से चांदा राजवंश का संस्थापक माना जाता है, और कहीं कहीं ये भी आता है कि जो कोल था उन्होंने सिरपुर की जागीर भीम बल्लाल सिंह को सौंप दी थी, इसलिए उनको राज्य करने का अवसर मिला और उन्होंने चंद्रपुर के गोंड राज्य की शासन व्यवस्था संभाली।
0: अच्छा,
1: इसी राजवंश में एक राजा हुए खंडाक्या बल्लाला राजा। तो जब उन्होंने चंद्रपुर की शासन व्यवस्था संभाली तो कहा जाता है कि उन्हें सिरपुर राजधानी के रूप में जच नहीं रहा था।
0: अच्छा,
1: और उन्हें लगता था कि ये भौगोलिक, आर्थिक और वित्तीय कारणों से ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया
0: जी,
1: और सिरपुर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा नदी के किनारे पर उन्होंने एक नया शहर बसाया
0: जी।
1: सबसे पहले यहाँ पर एक किला बनाया
0: जी,
1: और इस जगह को सुरक्षित कर दिया, तो इस शहर का नाम पड़ा बल्लार शाह।
0: तो क्या ये वही बल्लार शाह है जो कि नागपुर और हैदराबाद के बीच पड़ता है और चंद्रपुर के बिल्कुल नजदीक?
1: जी हाँ, ये वही बल्लार शाह स्टेशन है।
0: अच्छा,
1: आप कभी दक्षिण की तरफ जा रहे हो
0: जी, जी,
1: तो ट्रेन यहाँ बड़े लंबे समय तक हॉल्ट करती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: वो आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अगर आप सिकंदराबाद जाना चाहते हैं
0: जी, जी,
1: तो उसके लिए एक रूट है, अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो दूसरा रूट है, और केरल और कर्नाटक के लिए भी रूट है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो आज भी यहाँ पर एक जंक्शन जैसा है
0: जी।
1: तो बल्लार शाह इस जगह के महत्व को 600-700 साल पहले भी समझ पाए थे
0: जी,
1: और उन्होंने यहाँ राजधानी स्थानांतरित कर ली। तो उस जमाने में भी जो पैदल मार्ग था वो यहीं से होकर गुजरता था, और बल्लार शाह उस समय भी एक जंक्शन की तरह था
0: जी।
1: जब यहाँ राजधानी स्थानांतरित हो गई तो धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी
0: जी।
1: और दूर दूर से आकर लोग यहाँ पर व्यापारी बसने भी लगे
0: जी।
1: तो ये घनी आबादी वाला एक शहर हो गया जहाँ पर विभिन्न स्थानों से आए हुए लोग बस गए थे।
0: तो श्रोताओं देखिए, पूजा जी हमें इतनी अच्छी जानकारियां देती कि हमें हमारे सोचने का जो नजरिया है वो भी कितना विस्तृत होता चला जा रहा है कि हमारे पूर्वज इतने पहले भी उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि वो जानते थे कि यदि किसी जगह से, आज तो हम ये निश्चित रूप से जानते हैं कि वो एक जंक्शन है, वहां से ट्रेनें विभिन्न मार्गों की होकर के गुजरती हैं, लेकिन तब उन्हें ये मालूम था कि दक्षिण जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। तो उत्तर और दक्षिण के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु था और व्यापारिक स्थल बनाया, तो क्या खूब है ये बात जी। पूजा जी आगे चलते हैं।
1: इसके बाद उनका पोता हुआ हीर सिंह।
0: अच्छा।
1: और हीर सिंह ने जब शासन व्यवस्था संभाली तो उसने अपने अच्छे राजनीतिज्ञ होने का और युद्ध कौशल में पारंगत होने के बहुत से प्रमाण दिए। उसका शासनकाल भी बहुत अच्छी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: खास बात जो हीर सिंह की थी वो ये थी कि उन्होंने कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सब जानते हैं कि जो गोंड जनजाति है
0: जी,
1: उसका कृषि का अपना एक परंपरागत तरीका है
0: जी, जी,
1: वह जंगल में ही कृषि करते हैं और एक स्थान पर करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर करते हैं, तब तक वहां जंगल उगता है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये वो समय था जब वास्तव में समय बदल रहा था और कृषि के आधुनिक तरीकों को भी अपनाना आवश्यक था
0: जी।
1: क्योंकि बहुत से लोग अब वनों को छोड़कर नगर में बस गए थे या नगरों के पास जो ग्राम थे उनमें बस गए थे, तो अब खेती की तकनीकों में अंतर लाना समय की मांग थी। तो हीर सिंह ने समय की इस मांग को समझा और उन्होंने कृषि में क्या आधुनिकता लाई जा सकती है, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, इस पर बहुत काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय का जो गोंड समाज था उसकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ, जो अब नगरों में आकर रहने लगा था या ग्रामों में आकर रहने लगा था।
0: तो पूजा जी, किस तरह के सुधार किए, किस तरह की आधुनिकता की आप बात कर रही हैं?
1: जी हाँ, गोंड काल में जो कृषि में सुधार हुए उसमें बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
0: जी।
1: जैसे कि हम देखते हैं कि गोंड राजवंश में ही एक और राजा हुए हैं, राजा धुंडिया राम शाह।
0: अच्छा।
1: जिनका समय है 16वीं सदी में, 1597 से लेकर 1622 तक। तो इनके समय में हमें दिखता है कि बहुत से जो शैव लिंगायत थे वो आकर चंद्रपुर राज्य में बस गए थे
0: जी।
1: तो वे लोग खेती के अच्छे जानकार थे
0: जी।
1: राम शाह धुंडिया ने इनको भी खेती के कार्यों में कैसे और अधिक आधुनिकता लाई जा सके इस काम पर लगाया
0: जी।
1: और लगातार जो चंद्रपुर राज्य था वो फिर कृषि के आधार पर बहुत प्रगति करता चला गया। इसके साथ ही एक और जो हमको इनका कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है वो ये कि बहुत से तालाबों का निर्माण हुआ। कृषि के लिए जल आपूर्ति की तो आवश्यकता होगी ही,
0: और साथ ही वो जो क्षेत्र है वहाँ जल की कमी भी हमेशा बनी रहती, काफी गर्म जगह
1: जी हाँ। और हमने देखा था ना कि जब गढ़ा मंडला की बात हुई थी तब भी रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया था, और उस समय भी हमने बात की थी कि जो गोंड है उनको जल प्रबंधन का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है। और यहाँ पर क्योंकि आपने जैसे कहा कि पानी की बहुत कमी है, तो कुछ नई तकनीक भी हमको देखने को मिलती हैं कि कम से कम निर्माण में अधिक से अधिक पानी कैसे संग्रहित किया जा सकता है प्राकृतिक रूप से तालाबों में। उसके भी कई सारे उदाहरण हमको यहाँ दिखाई देते हैं। तो जैसे कि चंद्रपुर है, चंद्रपुर के आसपास जो है एक हमको रामाला तालाब दिखाई देता है और इसका निर्माण भी खांडक्या बल्लाल शाह ने कराया था।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा उनके जो वंशज हैं राम शाह, उन्होंने भी तालाब को आगे और सुदृढ़ किया, तो फिर नाम कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर रामाला पड़ गया था।
0: अच्छा।
1: जी हाँ। और हीर शाह जो हुए उन्होंने भी कोमटी नाम का एक तालाब बनाया, और उन्होंने ही नहीं उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी एक घुटकला नाम का एक तालाब बनाया। इस तरीके से हमको चंद्रपुर में ही 6 तालाब मिल जाते हैं। तो अनेक तालाब बनाए गए और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी जगह हैं उन पर भी हमको बहुत से तालाब चंद्रपुर राज्य में मिलते हैं जो राजाओं ने ही नहीं बल्कि आम जनता ने भी बनवाए हैं। ऐसे तालाबों में जैसे एक नाम आता है गढ़चिरौली का कुनघाड़ा तालाब है, इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं जो इस जगह में हमको मिलते हैं तालाबों के।
0: जहां भी पानी उपलब्ध होता है वहां जाकर लोग बसते आए हैं, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन जो हमारे पूर्ववर्ती राजा थे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें सुदीर्घ शासन करना है तो उस जगह पर जल व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर समुचित पानी होना चाहिए। और इसलिए देखिए हमारे राजाओं ने सबसे ज्यादा जो काम किया है वो पानी की उपलब्धता को लेकर किया है, तालाब खुदवाए।
1: चंद्रपुर के गोंड राजा थे हीरशा
0: जी,
1: और उनका तो एक उदाहरण बड़ा सुनने लायक है
0: जी।
1: और कैसे उन्होंने समृद्ध किया देखिए, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक आदेश दिया कि जो किसान तालाब खोदेंगे और उसके जल का उपयोग कृषि के लिए करेंगे तो जितनी वो भूमि सिंचित करेंगे वो भूमि उसी किसान की हो जाएगी।
0: अरे वाह।
1: तो इससे कृषि को बड़ा प्रोत्साहन मिला।
0: भी।
1: कुछ लोग मिलकर अपना तालाब खोदते और फिर उस पानी से कृषि करते थे। तो इसके साथ ये भी डर था कि अगर लोग इस तरीके से कृषि भूमि ले लेंगे और मान लीजिए फिर उस पर कृषि नहीं की तो फिर स्वामित्व तो उनका हो गया, अब क्या होगा। तो राजा ने एक और आदेश पारित किया और उसमें ये सुनिश्चित किया कि यदि किसी किसान ने उस कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया, उसे यूं ही छोड़ दिया साल भर के लिए, तो फिर वो कृषि भूमि राजा वापस भी ले लेगा। तो इस तरीके से कृषि को बहुत प्रोत्साहन दिया, तालाबों के निर्माण के लिए भी बहुत प्रोत्साहन मिला
0: जी। पूजा जी, जब भी चंद्रपुर के गोंड शासन की बात आती है तो वहाँ के की एक रानी के भी शासन की चर्चा होती है, तो कौन थी वो रानी, किस तरह का था उनका राज्य?
1: जो अभी हमने हीरशा की बात की
0: जी,
1: जिन्होंने अनेक तालाबों का निर्माण कराया, कृषि भूमि तैयार कराई, तो ये जो हीरशा थे ये निसंतान थे।
0: अच्छा।
1: और इनकी पत्नी थी रानी हीराई। राजा की मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई तो रानी ने उनकी मृत्यु के उपरांत एक बालक को गोद लिया
0: जी।
1: लेकिन वो भी वयस्क हो पाता उससे पहले उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर रानी ने एक और गोंड बालक गोद लिया जिसका नाम अकवा था, वो बाद में फिर राजा भी बना
0: जी।
1: लेकिन अगर हम चंद्रपुर के गोंड इतिहास में देखें तो हम देखते हैं कि जो रानी हिराई है उनका स्थान तो राजमाता का है और लोग तो उन्हें सनातन की प्रतिमूर्ति भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया, मेले लगवाए
0: जी,
1: बहुत कुछ काम किया। तो इसलिए हीराई जो है वो राजमाता चंद्रपुर के नाम से जानी जाती है।
0: तो पूजा जी, क्या जो रानी हीराई ने उस वक्त जो वहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया चंद्रपुर में, क्या वो आज भी देखे जा सकते हैं?
1: जी हाँ, बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे।
0: अच्छा।
1: और बड़े सुप्रसिद्ध हैं, जैसे एक महाकाली का मंदिर है
0: जी,
1: बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। एक और मंदिर है जिसका नाम एक वीरा मंदिर है और अचलेश्वर का मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है
0: जी।
1: ये सारे मंदिर राजमाता हीराई के द्वारा बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक जुनोना नाम की जगह है, वहां पर एक किला है, उसकी भी नींव जो है वो राजमाता हीराई ने रखी।
0: अच्छा।
1: और उसकी जो परकोटे की दीवार है उसका भी काफी हद तक निर्माण जो है रानी हीराई के शासनकाल में ही हो चुका था।
0: अच्छा।
1: इसी तरह चंदनखेड़ा का किला भी रानी हीराई ने ही बनवाया। और रानी हीराई का जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम माना जाता है वो ये है, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि महाकाली का मंदिर रानी हीराई ने बनवाया था, तो वहां उन्होंने एक और परंपरा डाली, एक मेले का आरंभ करवाया
0: जी।
1: ये मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है।
0: अच्छा।
1: और आज भी लगता है, इतने 100 साल के बाद भी वहां लगता है
0: जी।
1: और इस मेले ने उस समय भी और आज भी बहुत सा परिवर्तन लाया
0: जी जी,
1: जैसे कि धर्म, व्यापार, सांस्कृतिक विनिमय को बहुत प्रोत्साहन मिला। और आज भी ये बड़े धूमधाम से ये मेला लगता है, हजारों लाखों लोग वहां पर जाते हैं
0: जी, जी।
1: चैत्र की पूर्णिमा पर। फिर यहाँ जब ये मेला लगता है इससे पहले कुछ यात्राएं भी होती हैं, परिक्रमाएं भी होती हैं, उससे भी बहुत सारे जन समुदाय आज तक इस क्षेत्र में जुड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक और योगदान है जो राजमाता हीराई का है, वो ये है कि जब उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया तो उन्होंने विद्वानों को, लोक गीतकारों को, कवियों को बहुत प्रश्रय दिया।
0: अच्छा।
1: और आप मराठी के जो कई भजन सुनते हैं, कई गीत सुनते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, यहाँ तक कि बहुत सी मराठी की आरतियां भी जो हैं
0: जी जी,
1: वो भी राजमाता हीराई के समय की हैं।
0: अरे वाह,
1: जो उन्होंने उस समय विद्वानों को प्रश्रय देकर लिखवाई और उनका प्रचलन आज भी हमको जगह जगह सुनाई देता है।
0: तो देखिए कितनी अच्छी परंपरा जो चैत्र पूर्णिमा का मेला रानी हीराई ने वहां पर शुरू कराया, वो न सिर्फ परंपरा के रूप में, आस्था के रूप में या धर्म का प्रतीक है, बल्कि आज तक वो पूरे क्षेत्र को लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का भी केंद्र हो गया, क्योंकि पहले यात्राएं निकलती हैं, फिर इतने वक्त तक तो व्यापार का भी हो गया और साथ ही साथ मनोरंजन का तो है ही। तो पूजा जी, राजमाता हीराई के बाद चंद्रपुर में किसने शासन किया?
1: चंद्रपुर में अनेक राजा हुए, पर जो उल्लेखनीय राजा हैं वो हैं कर्ण शाह।
0: अच्छा।
1: और उनका समय है 1547 से लेके 1572 तक।
0: जी।
1: ये अकवा के पुत्र थे जिनकी अभी हमने बात की।
0: जी जी जी।
1: और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत न्यायप्रिय थे और इन्होंने गोंड राज्य का बहुत विस्तार भी किया।
0: जी।
1: और इनके समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना ये है कि जैसे हमने गढ़ामंडला में भी देखा था कि ये वो समय था जब तेलंगाना में बहमनियों का शासन था।
0: अच्छा।
1: और उस समय जो तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे उनका बड़ा उत्पीड़न हो रहा था।
0: जी।
1: और हमने जैसा पहले सुना भी था कि गढ़ामंडला में रानी दुर्गावती ने भी उनको प्रश्रय दिया था तेलुगु ब्राह्मणों को, तो उसी प्रकार से कर्ण शाह ने भी उनको प्रश्रय दिया। और केवल प्रश्रय ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने बहुत सारी जमीनें भी उनको
0: अच्छा,
1: दान में दी, जिससे कि वे वहां पर अध्ययन अध्यापन कर सकें और राज्य के प्रगति में काम आ सकें।
0: जी जी।
1: तो आपने एक जगह सुनी होगी शायद बाबूपेठ के नाम से।
0: जी जी।
1: महाराष्ट्र में है।
0: जी।
1: यही चंद्रपुर के पास में। तो कहते हैं कि जब कर्ण शाह ने तेलुगु ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाया तो सबसे पहले उन्होंने उनको अपने चंद्रपुर किले के अंदर ही बसाया।
0: अच्छा।
1: किले की जो बाहरी दीवार होती है उसके अंदर का जो परिसर होता है वहां पर उनको बसाया।
0: जी।
1: तो इतनी बड़ी संख्या में तेलुगु ब्राह्मण वहां से उत्पीड़ित होकर आए थे कि वह जगह छोटी पड़ गई।
0: अच्छा।
1: और जो परकोटा था किले का उसके बाहर बबूल के पेड़ों का जंगल था।
0: जी।
1: तो इतनी बड़ी संख्या में ये ब्राह्मण आए थे कि उन्हें परकोटे के बाहर बबूल के पेड़ों को की सफाई करके भी रहना पड़ा।
0: अच्छा।
1: तो ये जगह का नाम पड़ा परकोटे के बाहर की जो जगह थी बबूलपेठ।
0: अच्छा, अच्छा।
1: आजकल ये जगह बाबूपेठ के नाम से जानी जाती है।
0: तो बबूलपेठ से बाबूपेठ हो गया।
1: हाँ जी।
0: बोलते बोलते अपभ्रंश हुआ। तो जो कर्ण शाह थे पूजा जी, इनका क्या क्या योगदान था, इन्होंने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया?
1: इन्होंने अपने पहले तो राज्य का विस्तार किया, इनका राज्य अब उमरेड, पटपवनी, चीचगढ़ यहाँ तक फैल चुका था।
0: अच्छा।
1: और फिर अनेक निर्माण कार्य भी कराए। तो चांदा में एक पुराना शिव मंदिर है।
0: जी।
1: वो भी इनका बनाया हुआ है। इसके अलावा एक गुफा है।
0: अच्छा।
1: उसको भी इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो कर्ण शाह ने काफी काम कराए और जो उमरेड का दुर्ग है वो भी कर्ण शाह के काल का ही है। कर्ण शाह के बाद फिर बाबा जी बल्लाल शाह का राजत्व काल आरंभ हुआ 1572 से लेकर 1597 तक।
0: जी।
1: तो इस समय जो है वो बहमनियों ने चंद्रपुर पर आक्रमण किया और बाबा जी बल्लाल शाह को उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। लेकिन एक यहाँ एक कहानी भी है। वो कहानी ये है कि जो चंद्रपुर के गोंड राजा थे
0: जी,
1: उन्होंने भी संगीत को बड़ा अपनाया, बड़े अच्छे संगीतकार हुए इनके भी।
0: जी जी।
1: और कहते हैं कि जब इनको जेल में डाल दिया गया बहमनियों द्वारा
0: जी,
1: तो एक सुबह बाबा जी ने एक गीत गाया।
0: अच्छा।
1: जो बहमनी शासक थे उनकी जो रानी थी उन्होंने सुना
0: जी,
1: और वो इससे इतनी प्रभावित हुई कि फिर उन्होंने उन्हें उसी दिन कैद से छोड़ दिया और इतना ही नहीं उनका राज्य भी वापस कर दिया।
0: अरे वाह।
1: हाँ। और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि चंद्रपुर के गोंड राज्य से अनेक राजा लखनऊ जाते थे शास्त्रीय संगीत सीखने।
0: वाह।
1: तो इतनी संगीत की परंपरा,
0: लगाव था और परंपरा थी। जी।
1: आदिया बल्लाल शाह ने बर्दा नदी के पूर्वी किनारे पर ये किला बनवाया और इस किले के निर्माण में काले पत्थर का उपयोग किया गया। ये किला लगभग 6 एकड़ में फैला है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व की तरफ है। तो सबसे पहले जब हम इस किले में प्रवेश करते हैं तो केशवनाथ का मंदिर आता है और कहते हैं कि पहले जो केशवनाथ के मंदिर में प्रतिमा रखी थी उस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, यानी
0: जी
1: सोने की परत चढ़ी
0: जी
1: हुई
0: जी
1: थी। बाद में फिर कभी 1818 ईस्वी में के आसपास ये मूर्ति चोरी हो गई।
0: अच्छा
1: तो अब फिर जो भोंसले आए, जब मराठा शासन काल आया,
0: जी
1: तो एक पुजारी थे पाटिल मोरे, उन्होंने फिर एक नई शिला की एक नई मूर्ति वहां पर रखवा दी,
0: अच्छा
1: जिसके दर्शन आज भी होते हैं। इसके अलावा दुर्ग में अगर हम अंदर जाएं तो वहां पर जो राजा का महल है
0: जी
1: वो भी हमें दिखाई देता है। उसमें कई सारे अंडरग्राउंड कमरे भी हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, अंडरग्राउंड कमरों का भी बहुत सा उपयोग है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया
0: सुरक्षा
1: था।
0: व्यवस्था के लिए
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: बहुत महत्वपूर्ण है
1: हाँ ये एक और बात है कि जो ये अंडरग्राउंड कमरे हुआ करते हैं,
0: जी
1: इसमें कई बार तो जैसे दुश्मनों को कैद किया जाता है ना,
0: जी
1: तो उसके भी उपयोग आ जाते हैं कि नीचे के कमरों में उनको कैद करके रख लिया
0: जी
1: और ऊपर आप रह रहे हो।
0: जी
1: इस
0: बिल्कुल
1: तरीके के भी प्रमाण मिलते हैं इतिहास में।
0: जी
1: तो इस दुर्ग का जो परकोटा है लगभग 12 मीटर चौड़ा है और काफी दूर तक ये इसकी परिधि है। इस दुर्ग में अस्तबल भी है। अस्तबल के साथ में कुछ और कमरे भी हैं जो वहां के जो कर्मचारी हुआ करते
0: जी
1: होंगे उनके वो रहने के लिए। इसके साथ ही किले के चारों तरफ खाई भी है
0: अच्छा
1: जो कि सुरक्षा व्यवस्था के काम आती थी। किले के अंदर कचहरी है, बहुत सारे निर्माण कार्य हैं, एक बावड़ी भी है। तो ये जो किला है ये आज एक पर्यटन स्थल के रूप में
0: बिल्कुल
1: जाना जाता है।
0: जी
1: और किले की एक बड़ी और खास बात भी है कि ये जो पहाड़ी है जिस पर किले का निर्माण हुआ है, एक और हीरे की खदान भी है। बल्लालपुर की तरह ही एक और किला है चंद्रपुर राज्य का,
0: जी
1: जो कि गढ़चिरौली जिले में है।
0: अच्छा
1: और ये किला तो चांदा से उत्तर पूर्व दिशा में है और 150 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग।
0: अच्छा
1: ये भी एक पर्यटन स्थल है। एक मरुम गांव नाम का स्थान आता है,
0: अच्छा
1: वहां से फिर आप मुड़ेंगे तो फिर ये किला आ जाता है। ये जो किला है ये भी पहाड़ी पर है और जो इसकी योजना है वो वर्गाकार है
0: अच्छा
1: और ये लगभग 960 मीटर लंबा, 960 मीटर चौड़ा, इस तरीके से लगभग 2 मील क्षेत्रफल
0: ओहो
1: में फैला हुआ है।
0: जी
1: और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि दुर्ग में तो तालाब की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा गहरा तालाब है पहाड़ी के ऊपर।
0: जी
1: इसके साथ ही इसी पहाड़ी से एक नाला भी निकलता है
0: अच्छा
1: जिसको वेलोचना कहते हैं, और ये जाके आगे एक नदी बहती है खोबरागढ़ी नदी,
0: जी
1: उसमें मिल जाता है। और तो यहाँ से कई सारे इससे जुड़े हुए कई सारे अनुष्ठान भी हैं,
0: जी
1: मेले भी हैं, जो आज भी यहाँ पर लगातार कई 100 सालों से चलते आ रहे हैं।
0: जी
1: टीपागढ़ के इस किले के अवशेषों में कुछ भूमिगत कमरे भी हमको देखने को मिलते हैं।
0: जी और उनका जिक्र अभी कुछ देर पहले ही किया था हमने, चर्चा की थी कि वो किस काम में आते थे। पूजा जी ने हमें बताया कि दुश्मनों को कैद करने के लिए भी रखा जाता था ताकि राजा खुद ऊपर रहें और दुश्मन जो जो उनके कैदी हैं वो नीचे रहें और किसी भी तरह से गुंजाइश ना हो कि वो भाग सकें। तो देखिए बहुत अच्छी अच्छी इनकी योजनाएं थीं और हम हर जगह देख रहे हैं कि गोंड अपने किलों के अंदर पहाड़ियों में जल की बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे। वहां तालाब होते थे, तालाब खुदवाए जाते थे और बल्कि पाइपलाइंस तक की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। पिछले एपिसोड में तो पूजा जी ने हमें बताया कि वहां पर बाकायदा टॉयलेट्स का निर्माण किया गया था और मैला ढोने की परंपरा भी नहीं थी, जो मैला था उसे भी पाइप्स के जरिए किले के बाहर किया जाता था। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही। और जहां तक बात की, जहां पर पूजा जी ने बात समाप्त की कि अवशेष, तो निश्चित रूप से जो अवशेष हैं वो हमारे सुनहरे इतिहास की थाती हैं और हमें इन्हें सहेज कर रखना होगा, इन पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसी से हमें हमारा समृद्ध इतिहास पता चलता है। फिलहाल इतिहास के पन्नों से मैं आज इतना ही। अपने अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में भी बने रहने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से इतिहास

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, समय की हथेली पर ठहरा कोई भी क्षण कभी स्थायी नहीं होता। भोर की पहली किरण संध्या में ढल जाती है, फूलों की मुस्कान भी एक दिन मुरझा जाती है, उपवन की रंगत नीरवता बन जाती है और जीवन देखते ही देखते स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन जाता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो दिखाई देता है वो भी एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएगा। किंतु इस नश्वरता के बीच एक सत्य ऐसा भी है जो कभी क्षीण नहीं होता, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश। भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। इसमें बताया गया है कि संसार की क्षणभंगुरता भय का विषय नहीं बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो मोह के बंधनों से ऊपर उठकर शांति, विवेक और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद में आज इसी क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता विषय पर चर्चा करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में
1: जी,
0: और हम उस पृष्ठ पर हैं जहां क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर चर्चा है
1: जी।
0: तो मैं चाहती हूं कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इस संसार के प्रति आकर्षित चित्त को कहीं भी विश्राम क्यों नहीं मिलता है?
1: इसलिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु से कि तात इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी दृष्टि में चित्त को विश्राम प्रदान करे। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल क्रीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, युवा अवस्था में मन विषयों की तरफ भागता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है उस समय सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। राम जी कह रहे हैं कि ये प्राण भी छोड़ करके शरीर को दूर चला जाता है और मनुष्य इस संसार सरोवर में सिर्फ शुष्कता को प्राप्त होता है
0: जी।
1: उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो ये जो चित्त है, चित्त को ठहरने की स्थिति संसार में कहीं नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, क्षण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम विषयों से आसक्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक हमारे चित्त को शांति देगा। हम अपने अनुभव में भी अगर ध्यान दें, थोड़ी सावधानी से देखें उसे
0: जी,
1: तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जिन विषयों में बहुत सुख और शांति की कल्पना करते थे उनकी प्राप्ति के बाद हम सुखी और शांत नहीं हुए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये राम जी चूंकि उस समय उत्कट वैराग्य उनको हुआ है विवेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्षणिक मिलता है विश्राम, लेकिन आत्यंतिक विश्राम नहीं मिलता जहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति हो सके।
0: जी जी
1: जी।
0: अच्छा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो संतोष है वो परम सुख है, उसे ही सबसे बड़ा धन भी कहा गया है
1: जी।
0: तो मनुष्य इससे वंचित क्यों होता? कौन है जो मनुष्य को संतोष से वंचित कर देता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी कहते हैं कि इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तृष्णा जो है आपको किसी भी पदार्थ के साथ सुखी नहीं होने देगी। जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति होगी फिर तृष्णा किसी और की होगी
0: जी।
1: तो ऐसे में तृष्णा रूपी नदी संसार में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए जो संतोष को परम सुख माना ऋषियों ने
0: जी,
1: वो इसलिए कहा। जबकि आज के समय में आप देखें तो संतोष की अवहेलना करने की बात की जाती है कि संतोष करने का मतलब हुआ कि आप तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे, विकास करना है तो आपको लगातार तृष्णा की नदी में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी अवधारणा ही बड़ी अलग है। चूंकि ये वैराग्य प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण से हम कह सकते हैं कि संसार के सत्य का अन्वेषण करते हैं या संसार के सत्य को देख पाते हैं। और जब संसार में कभी असफलता लोगों को प्राप्त होती है तो भी लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग्य एक प्रकार का पलायन उत्पन्न करता है, वो रोग का रूप ले लेता है। लेकिन ये विवेक से जो उत्पन्न जो वैराग्य है वो संसार में चित्त में जो राग और द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति है उसको शांत करता है। तो विवेक का जो वैराग्य है वो स्वीकार्य है, लेकिन अज्ञानता में उत्पन्न वैराग्य मानसिक रोग का कारण बन सकता है।
0: अच्छा, एक बड़ी रोचक सी बात आपने कही कि एक उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है कि अब छलांग लगाइए तृष्णा की नदी में है।
1: जी।
0: ये बात सही है कि खूब सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, ये बात बहुत होती है इन दिनों।
1: जी जी।
0: तो जो मनुष्य है वो जीवन में सपने देखना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता?
1: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया।
0: दृष्टि कैसी हो?
1: दृष्टि ऐसी हो कि संतोष हो। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी नदी है इसको हम समझें कि हम तृष्णा के वशीभूत ना हो जाएं। वो कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी नदी जो है ये संतोष रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, यानी संतोष की जड़ को खोद देगी ये, और जब संतोष की जड़ खुद जाएगा तो फिर सुख से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सुख शास्त्रों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋषियों की दृष्टि में संतोष को परम सुख का कारण माना गया। संतोष में सुख होता है, योग में कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोष ही परम सुख है। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, लेकिन यहाँ पर तृष्णा की नदी में तो संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि ये नदी संतोष के वृक्ष के जड़ को खोद डालेगी। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से हिलती डुलती रहती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि शरीर में क्षुधा पिपासा ही उत्पन्न होती है जिसकी वजह से जीव हिलता डुलता है। और कहते हैं पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह है, इसको इंद्रियों से जो हम सुख लेने की बात करते हैं उस इंद्रियों को ग्राह की संज्ञा दी गई है जिसने उस हाथी को या कह सकते हैं पकड़ रखा है। तो ग्राह है ये, लगातार इसे टक्कर मारकर डुबोने में लगा रहता है। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव ही बैठे रह सकते हैं और वो विवेकी ही अपने आप को संभाल सकते हैं। जहाँ तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार के वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर वृक्षों की शाखाओं पर भटकते रहेंगे, मरकट की भांति कूदते रहेंगे इस डाल से उस डाल।
0: अच्छा, ये बताइए कि संसार में किस प्रकार के महात्मा दुर्लभ हैं?
1: इसके लिए श्री राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, ऐसे महात्मा इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जरा देखिए, कह रहे हैं राम जी की दुख और मोह से जो अपने आप को हमेशा दूर रखता है। जब भी आपत्तियां आती हैं तो आप देखें तो व्यक्ति आपत्तियों से दुखी होता है, और आपत्तियों के आने का मूल कारण होता है मोह, क्योंकि मोह अगर ग्रस्त आप नहीं हैं तो आप आपत्ति का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है संसार में। आमतौर पर आपत्ति आने पर लोग दुखी होते हैं या फिर मोहग्रस्त होते हैं संसार के विषयों से, या फिर न भी विषयों से तो अपने कार्य जो नित्य कर्म है उसके प्रति भी कई बार व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और संपत्ति पर जिसको अहंकार शून्यता ना हो। आमतौर पर स्वास्थ्य और संपत्ति को लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ कोई उपलब्धि है, और अहंकार में आदमी सोचता ही है कि ये तो हमने नियमित जीवनचर्या अपना रखी है, इस नाते मैं स्वस्थ हूँ। सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर यहाँ पर भी आप अहंकार शून्य हैं, यहाँ पर भी आपके अंदर उस कहते हैं परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है इस समय खोज पाना। तो क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि अहंकार से युक्त भी लोग दिखाई देते हैं, महात्मा
0: एक तरह
1: लोग
0: से वो ये बता रहे हैं कि महात्मा को कैसा होना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं। महात्मा जो होगा वो अहंकार शून्य होगा, वो कभी भी किसी भी विषय से चाहे अपने त्याग और तपस्या को लेकर के भी अहंकार से ग्रसित नहीं होगा।
0: अच्छा, श्री राम जो कुछ देख रहे हैं उसमें वो शूरवीर भी देख रहे हैं, तो किसे वो कह रहे हैं कि संसार में शूरवीर कौन है?
1: राम जी कहते हैं कि इस संसार में मैं शूरवीर उसे मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। यानी जो मन आपको विवेक वैराग्य से दूर ले जाएगा, यानी वो तृष्णा की नदी में आपको बहाना चाहेगा, संतोष रूपी वृक्ष की जड़ों को खोदना चाहेगा, फिर ऐसे में जो लोग विवेक और वैराग्य के द्वारा इसको लांघ जाते हैं, यानी मन रूपी तरंगों के पार चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तरंगों के पार जाने का मतलब हुआ, ये संकेत समझें कि जहां जल शांत है वहां कोई उस लहर नहीं है, उसमें
0: कोई उथल पुथल,
1: उथल पुथल नहीं है। तो ऐसे लोग को मैं सूरवीर मानता हूं जो उस शांति को अनुभव कर रहे हैं। इस संसार में अशांत चित्त नहीं है, क्योंकि जब तरंगे उठेंगी
0: तो उनके हिसाब से सूरवीर वो है जिसका चित्त शांत हो, चित्त
1: शांत हो, बिल्कुल ठीक है,
0: वो
1: वीर है। अन्यथा तो संसार में कई बार आदमी अपने पुण्य को लेकर के बहुत आह्लादित होता है,
0: जी,
1: कई बार अपने पाप को लेकर बहुत भयभीत होता है। तो ऐसे में इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, करणीय और अकरणीय के भेद में वो भेद बुद्धि से उलझा हुआ है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग सूरवीर नहीं है, सूरवीर वो है जहां तरंगे शांत हो गई हो और चित्त बिल्कुल शांत हो, यानी मन रूपी उत्ताल तरंगों को जो पार कर गए हों। और वो पार आप कर सकते हैं विवेक और वैराग्य से, राग और बुद्धि से पार नहीं किया जा सकता।
0: अच्छा, संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की कामना सभी को है
1: जी।
0: तो क्या कहते

0: हुए हैं, उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है, तो लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित होती हैं और जाकर के वरमाला उनके गले में डाल देती हैं। तो ऐसे में विष्णु जी का जो चरित्र है वो क्षमा, विनय, शांत, उदारता का है। तो लक्ष्मी इसी सात्विक बल से परिपूर्णता प्रदान करती हैं। अन्यथा लक्ष्मी को प्राप्त करके कभी कोई संतोष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, यानी लक्ष्मी जब अकेले होती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं वो, और वो जब विष्णु के साथ होती हैं तो गरुड़ की सवारी करती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मी सेवा करती विष्णु की नजर आती हैं, बाकी सब लोग लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रतीक बताया गया है कि सात्विक बल ही है जो लक्ष्मी को प्राप्त करके परिपूर्णता की अनुभूति कराता है। अगर ये बल आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी असंतोष और बेचैनी का कारण बनेगी।
1: तो बहुत रोचक सी बात है कि लक्ष्मी की कामना हो लेकिन मन फिर कैसा हो विष्णु जी,
0: सात्विक बल के साथ हो। जी जी। आप राजसी होकर के लक्ष्मी के साथ स्थिर नहीं हो सकते।
1: योग वासिष्ठ में मुझे नजर आ रहा था कि संपत्ति और विपत्ति के जो कारण हैं कुछ बताए गए हैं। मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप बता दें कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्यों आते हैं, क्या कारण है इसका।
0: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्ति विपत्ति को हटाना चाहता है, संपत्ति को पाना चाहता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है, राम जी ये कह रहे हैं कि ये किसी के चाहने से नहीं होता। आप चाहें कि आपके जीवन में दुख ना आए तो ये आपके चाहने से नहीं होगा, बल्कि कई बार तो हम नहीं चाहने की वजह से उन चीजों को आकर्षित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं बार बार उसे याद करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ये संपत्ति और विपत्ति जो है वो प्रारब्ध कर्म से आती है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व का कर्म है जिसकी वजह से जीव देह धारण करता है, और जब देह धारण करता है तो देह के भोग भी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों उसे मिलते हैं। प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर है जो निकल पड़ा है और उसे भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। कोई चाहे कि प्रारब्ध से अपने आप को हम बचा लें, और बचाने के लिए अगर प्रयास करके बचा भी ले तो भी उसे फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोग उसका है। इसीलिए ये मानव जो तन है या मानव योनि है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ऐसी योनि है कि आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करके अपने क्रियमाण, जो कर्म आप कर रहे हैं और जो उस कर्म का फल संचित हो रहा है, इन दोनों को आप रोक सकते हैं और प्रारब्ध को भोग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़े हैं। और भगवान के अवतारों की कथा देखें तो वो प्रारब्ध बस पूर्व के कर्म का वो परिणाम ही तो भोगने आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए, प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध कर्म का वो हेतु बनता है।
1: जी अच्छा, असावधान मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो संसार को किस तरह से देखती, कैसा दिखता है उसको संसार।
0: असावधान मनुष्यों की बुद्धि में यह संसार चिरस्थायिता की प्रतीति कराता है। तो जब इस संसार में हम किसी चीज को स्थायी देखते हैं तो इससे ये समझ लें कि हमने सावधानी पूर्वक संसार को नहीं देखा
1: नहीं
0: है
1: देखा।
0: अगर सावधानी पूर्वक देखें तो यहाँ पर सारी चीजें क्षण में नष्ट हो रही हैं। महात्मा बुद्ध ने जो क्षणभंगवाद उन्होंने बताया कि ये संसार में हर चीज क्षण में भंग हो रही है, उन्होंने सावधानी के साथ इस चीज को जाना। इसीलिए आप देखते होंगे कि बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस उनकी एक मेडिटेशन टेक्निक है, कि आप इतने सजग रहें कि जहां पर आपको संसार के सत्य से कभी भी वंचित ना होना पड़े। यानी सत्य संसार का क्या है, क्षणभंगुरता, तो वो क्षणभंगुरता आपको निरंतर दिखाई दे, लिहाजा आप संसार में कभी भी राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे, आपका चित्त शांत होगा। क्योंकि जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो भी क्षण में मिट जाएगा, और जिसके प्रति आपको राग है वो भी, उसकी भी अवधि क्षण भर की है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके चित्त में जो राग देशात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी शांति आनी चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। ये तब होगा जब आप सावधान होकर के इस संसार को देखेंगे। तो संसार को सावधानी से देखने के बाद यहाँ संसार में स्थायित्व तो नहीं दिखता, और असावधानी पूर्वक जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं या संसार में जो भोगों में संलग्न हैं उनको संसार में चिरस्थायिता की प्रतीति हो रही है।
1: अच्छा, इसमें मनुष्य को अपराधी और उपकार शून्य प्राणी कहा,
0: जी
1: ऐसा क्यों कहा।
0: ऐसा इसलिए कहा कि अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेम की बात राम जी करते हैं
1: जी।
0: कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसा है, ये मतलब कहते हैं कि दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा वो मानता है अपने आप को। ऐसा विश्वास करने का कारण क्या है कि जब इस संसार में श्वास को देने वाला पेड़, कहते हैं कि श्वास जगत में सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि जीवन का संबंध श्वासों से है और उन श्वासों का प्रदाता वो वृक्ष है जो मनुष्य अपने भोग या अपनी आवश्यकता के लिए उसको भी काट देता है। तो कहते हैं ऐसा उपकार शून्य प्राणी इस संसार में सदा जीवित रहेगा, ये कैसे भरोसा करने की बात है जब वो पेड़ों के उपकार को भूल करके उसे भी काट दे रहा है।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: एक
1: जी,
0: दिन वो भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा।
1: तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात भी यहां आती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि चित्त को शांत स्थिर करने की बात थी, लगातार हम सुन रहे हैं लक्ष्मी के संदर्भ में आपने ये कहा कि जिसके चित्त में उद्वेलन न हो लक्ष्मी उस तरफ आकर्षित होती है। अशांत कौन रहता है?
0: अशांत रहता है विषयासक्त मनुष्य। आंतरिक अशांति के विघात के लिए ये जो विषय की आसक्ति है ये हमेशा तैयार रहती है। यानी आपके जीवन में अशांति का अनुभव तभी होता है जब किसी विषय के प्रति आपके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए। और विषय क्या करते हैं, राग द्वेष आपके जो अनुभव हुए हैं उस विषय के साथ, उस अनुभव के आधार पर राग द्वेषात्मक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। राम जी कहते हैं कि विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। विषय जो है विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है और दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक अशांति के विघात के लिए तैयार है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। विषयासक्त व्यक्ति तत्काल मूर्ता या मूर्छित हो जाएगा विषयों के प्रभाव में। तो जब मूर्छित होगा तो वो अपने चित्त की शांति को जान नहीं पाएगा
1: जी।
0: और राम जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिसमें दोष नहीं है, वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है, वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है, और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है, बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। सोचिए ब्रह्मलोक में जो मतलब निवासी हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है, वो कहते हैं कि रुद्र और विष्णु के दृष्टि में वो क्षण है वो कल्प।
1: अच्छा, तो चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बात है वो यही है, तो इसकी अवधारणा को मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें
0: जी। इसको ऐसे देखें कि ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व जिसे चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बुद्धि है ये दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य है। ये भी सत्य नहीं है राम जी कह रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि चिरजीवी हैं ये, तो कहते हैं ये भी दृष्टा की बुद्धि में की कल्पना है। जो दृष्टा इस जगत को देख रहा है, जगत के दृश्यों को देख रहा है, इस कारण से वो दृष्टा है। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि की कल्पना के कारण ये चिरजीवन और क्षण जीवन की अवधारणा उत्पन्न हो रही है। जबकि ये कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है तो ये कल्पना असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उसमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, कास्ट के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेतों के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जो ये भी एक दृष्टा की कल्पना है, इस नाते ये असत्य है। इसका भी कोई जो अवधारणा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राम जी के वैराग्य का प्रकरण है। राम जी ये कह रहे हैं कि उनके समय में भी ये बात रही होगी चिरजीवन और क्षण जीवन की, तो उन्होंने कहा ये भी मेरी दृष्टि में असत्य है क्योंकि ये दृष्टा की कल्पना मात्र है।
1: अच्छा, श्रेष्ठ पुरुषों के पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य की गति पर भी उन्होंने चर्चा की है, तो क्या कहते हैं वो?
0: वो कहते हैं कि जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, पद का अर्थ स्थान, धन, वैभव आदि की जो कल्पना लोग करते हैं को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है, क्योंकि वो चित्त के द्वारा मारा जा रहा है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का पद चाहते हैं तो आपको उसमें राग हो गया है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ये आपके चित्त को गिरा देगा और गिरने के कारण निश्चित ही आप गर्त में गिरेंगे। जैसे पशु पक्षी हरी लताओं को खाने के लिए गिर पड़ते हैं पहाड़ों के खाई में, उसी प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के पद को पाने की चेष्टा में अपने चित्त को संसार के विषयों या उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद प्रतिष्ठा में अपने को गिरा देता है, बजाय अपने स्वरूप को जानने या अपने विवेक को जागृत करने के।
1: जी जी, तो क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं चाहती हूँ कि चलते चलते बहुत संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा का जो सार है वो रख दें।
0: मैं इस चर्चा का सार यही कहूंगा कि इस संसार में सावधानी पूर्वक अगर हम व्यवहार करना सीखें और संसार को सावधानी पूर्वक देखें तो निश्चित ही इस संसार में जो तृष्णा की नदी बह रही है और जिसने संतोष रूपी धन को कह सकते हैं कि मतलब समाप्त कर रखा है और व्यक्ति ऐसे धन की प्राप्ति के पीछे लगातार भाग रहा है जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को बढ़ा रही है। क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करके चित्त की परिपूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपके पास सात्विक बल हो। सात्विक बल में क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके पास अगर शक्ति आती है तो इस शक्ति से आप अपने आसपास के वातावरण को पोषित करें, क्योंकि सात्विक बल पोषण का काम करता है और ये बल विष्णु जी के पास है। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने के देवता हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं, तो ऐसे में पालन का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है। तो जब पालन वाला बल आपके अंदर आएगा तो उस बल से आप लक्ष्मी के साथ परिपूर्णता की अनुभूति करेंगे, अन्यथा लक्ष्मी के पीछे भागते हुए तो सारे लोग दिखाई देंगे और कभी भी वो यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, उसमें संतोष नहीं आना है, क्योंकि संतोष सुख की प्राप्ति सात्विक बल से ही हो सकती है।
1: बहुत अच्छी चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता के विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित थे इस बातचीत के लिए योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूं मनीषा।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम भारत विभूति में बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत, हिंदी कहानी के जनक माधवराव सप्रे की।
2: किसी भी महापुरुष को समझने के लिए उस युग को समझना आवश्यक है जिसमें उसने जन्म लिया और अपना जीवन जिया। माधव राव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ। वो काल जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कठोर पकड़ में जकड़ा हुआ था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद ब्रिटिश शासन और भी निरंकुश हो गया था। भारतीय समाज में एक और रूढ़िवाद, जाति भेद और अशिक्षा का अंधेरा था। दूसरी ओर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से एक नई जागृति की लहर धीरे धीरे उठ रही थी।
1: हिंदी साहित्य उस काल में अपनी शैशवावस्था में था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य साहित्य को एक दिशा दी थी, किंतु हिंदी पत्रकारिता और कथा साहित्य अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मराठी, बंगाली और गुजराती में साहित्य और पत्रकारिता अपेक्षाकृत अधिक विकसित थी। हिंदी को एक ऐसे रचनाकार की आवश्यकता थी जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाए, और माधव राव सप्रे को उसी भूमिका के लिए नियति ने चुना था।
2: छत्तीसगढ़ का क्षेत्र उस काल में और भी पिछड़ा था। मध्य प्रांत के अंतर्गत ये क्षेत्र शिक्षा, उद्योग और राजनीतिक चेतना सभी दृष्टियों से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। ऐसे में वहां से हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका निकालना और हिंदी कहानी की नींव रखना ये एक असाधारण साहस और दूरदर्शिता का प्रमाण था।
1: श्रोताओं, माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के पथरिया ग्राम में हुआ। उनका मूल परिवार महाराष्ट्र से आया हुआ मराठी ब्राह्मण परिवार था जो पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ की धरती पर बस गया था। पिता श्री दुर्गा प्रसाद सप्रे एक सात्विक और संस्कारी व्यक्ति थे। परिवार में संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन नियमित रूप से होता था।
2: दोस्तों, बालक माधव अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। गांव की छोटी सी पाठशाला में उन्होंने संस्कृत और हिंदी के साथ प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार पढ़ा हुआ पाठ उन्हें कंठस्थ हो जाता था। बचपन से ही उनमें पढ़ने की असाधारण लालसा थी। जो भी पुस्तक मिलती उसे वो अवश्य पढ़ते थे।
1: छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोकगीत, नदियाँ, जंगल और सामान्य जनजीवन ने उनके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी। इसलिए उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की धरती और वहाँ के लोगों के प्रति एक गहरी ममता और आत्मीयता दिखाई देती है। पथरिया के उस छोटे से गांव की माटी ने एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जो आगे चलकर हिंदी साहित्य का गौरव बना।
2: रायपुर से नागपुर तक प्रारंभिक शिक्षा के बाद माधव राव उच्च शिक्षा के लिए रायपुर आए। रायपुर उस काल में छत्तीसगढ़ का प्रमुख शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ के राजकीय हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। रायपुर में रहते हुए उनका संपर्क ऐसे शिक्षकों और विद्यार्थियों से हुआ जिनमें राष्ट्रीय चेतना का अंकुरण हो रहा था।
1: और इसके पश्चात वे नागपुर चले गए जो मध्य प्रांत की राजधानी थी और बौद्धिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र थी। नागपुर में उन्होंने उच्च शिक्षा जारी रखी। यहाँ उनकी भाषाई दक्षता और विस्तृत हुई। वे संस्कृत, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी चारों भाषाओं में पारंगत हो गए।
2: नागपुर में उनका परिचय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों और उनकी केसरी पत्रिका से हुआ। तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका उद्घोष उनके हृदय की गहराइयों में उतर गया। इसी दौरान उनकी रुचि पत्रकारिता की ओर भी जाने लगी। उन्होंने देखा कि मराठी में केसरी जैसी पत्रिका जनता को कितना जागृत कर सकती है और उनके मन में विचार आया कि हिंदी में भी एक ऐसी ही पत्रिका होनी चाहिए।
1: श्रोताओं, नागपुर में ही उन्होंने हिंदी और मराठी के साहित्यिक मंडलियों में भाग लेना शुरू किया। उस काल के अनेक विचारक और समाज सुधारक नागपुर में सक्रिय थे। इन सभी संपर्कों ने सप्रे जी की वैचारिक परिपक्वता को और गहरा किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे, एक सरकारी नौकरी का सुरक्षित मार्ग, दूसरा साहित्य और पत्रकारिता का कंटकाकीर्ण किंतु सार्थक मार्ग। उन्होंने बिना किसी संकोच के दूसरा मार्ग चुना। यही उनकी महानता की असली पहचान थी।
2: माधवराव सप्रे को समझने के लिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति, लोक संस्कृति और आदिवासी परंपराओं का अद्भुत समन्वय मिलता है।
1: यहां की मिट्टी में एक अलग ही रस है। यहां के लोगों में एक सहज सरलता और आत्मीयता है। सप्रे जी इसी माटी की संतान थे। उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की ये सरलता और आत्मीयता झलकती है। उनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जो विधवा स्त्री है, वो छत्तीसगढ़ के उसी सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती है जो निर्धन है, निरीह है, किंतु अपने मातृभूमि से अपने बच्चों की तरह जुड़ा है।
2: छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं, लोक गीतों और लोक परंपराओं ने सप्रे जी को एक ऐसी भाषाई संवेदना दी जो पोथियों में नहीं मिलती। उन्होंने जब हिंदी में लिखा तो उनकी भाषा में एक लोक लय थी, एक धरती की मिट्टी की गंध थी जो उन्हें अन्य लेखकों से अलग और विशेष बनाती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उस काल में जो सामाजिक विषमताएं थीं, भूस्वामियों और किसानों के बीच की खाई, जमींदारी प्रथा का अत्याचार, स्त्रियों की दुर्दशा, इन सब ने सप्रे जी के सामाजिक सरोकारों को जन्म दिया। वो केवल साहित्यिक लेखक नहीं थे, वो एक सामाजिक चेतना के वाहक भी थे।
1: दोस्तों, सन 1900 में माधवराव सप्रे ने अपने घनिष्ठ मित्र रामराव चिंचोलकर के सहयोग से बिलासपुर जिले के पेंड्रा नामक स्थान से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आरंभ किया। ये हिंदी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली उन प्रारंभिक पत्रिकाओं में से एक थी जिसका स्वरूप पूर्णतः साहित्यिक और वैचारिक था। पेंड्रा उस काल में एक अत्यंत छोटा और दुर्गम स्थान था। वहां ना तो उन्नत मुद्रण सुविधाएं थी, ना ही पर्याप्त संख्या में पाठक। डाक व्यवस्था भी अनियमित थी, कागज और स्याही की आपूर्ति अनिश्चित थी। इन सब बाधाओं के बावजूद सप्रे जी ने हार नहीं मानी।
2: छत्तीसगढ़ मित्र ये एक मासिक पत्रिका थी। इसमें साहित्य, इतिहास, दर्शन, समाज सुधार, राजनीति और विज्ञान विविध विषयों पर उच्च स्तर के लेख प्रकाशित होते थे। पत्रिका की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण थी ताकि सामान्य पाठक भी उसे समझ सके। इस पत्रिका ने पहली बार छत्तीसगढ़ के हिंदी पाठकों को एक ऐसा मंच दिया जहां वो अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और देश दुनिया की बातें जान सकते थे। ये केवल एक पत्रिका नहीं थी, ये एक आंदोलन था, हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान का आंदोलन।
1: छत्तीसगढ़ मित्र में केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं थी, इसमें समाज सुधार के लेख, भारत के इतिहास पर निबंध, किसानों और मजदूरों की दुर्दशा पर आलेख और राष्ट्रीय आंदोलन की खबरें भी प्रकाशित होती थीं। सप्रे जी चाहते थे कि पत्रिका केवल बुद्धिजीवियों तक सीमित ना रहे, वो आम पाठक तक भी पहुंचे। इसलिए उन्होंने भाषा को सरल रखा और विषयों को जीवन से जोड़ा।
2: पत्रिका में महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर भी लेख प्रकाशित होते थे, जो उस काल में अत्यंत साहसिक और प्रगतिशील कदम था। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के पुनरुद्धार पर भी सामग्री प्रकाशित होती थी।
1: श्रोताओं, आर्थिक कठिनाइयों और ग्राहकों की अपर्याप्त संख्या के कारण छत्तीसगढ़ मित्र केवल 3 वर्षों यानी 1900 से लेकर 1902 तक ही प्रकाशित हो सकी। ये सप्रे जी के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। वो पत्रिका जिसे उन्होंने अपने सपनों के बीज से उगाया था, संसाधनों के अभाव में मुरझा गई, किंतु जो बीज उन्होंने बोया था वो कभी नष्ट नहीं हुआ। उससे प्रेरणा लेकर आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा और कर्मवीर जैसी पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाया।
2: पत्रिका के बंद होने का एक और कारण था, पेंड्रा जैसा दूर दराज स्थान, यहाँ से पत्रिका वितरित करना बहुत कठिन काम था। उस काल में रेल मार्ग और डाक सेवाएं सीमित थी, पत्रिका पाठकों तक समय पर नहीं पहुंच पाती थी। इन सब व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद जो 3 वर्ष छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुई, वो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। छत्तीसगढ़ मित्र के 1901 के अंक में माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकार और विद्वान इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार करते हैं।
1: ये कहानी एक राजा और एक निर्धन विधवा की है। एक राजा के राज्य में एक निर्धन विधवा रहती है जिसकी छोटी सी झोपड़ी है। राजा उस भूमि को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। विधवा झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। बातचीत के दौरान विधवा राजा से कहती है कि वो जाने के लिए तैयार है, किंतु पहले उसे अपनी झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी दे दे, अपनी मातृभूमि की एक मुट्ठी माटी। राजा टोकरी भरवाता है, किंतु विधवा उस भरी हुई टोकरी को उठाने में असमर्थ हो जाती है। तब वो राजा से कहती है, यदि एक टोकरी भर मिट्टी का भार उठाना मेरे लिए इतना कठिन है, तो जिस राजा के ऊपर पूरी पृथ्वी का भार है, वो उसे कैसे उठा पाएगा?
2: बस ये कथन राजा को आत्मचिंतन पर विवश कर देता है और वो अपनी भूमि हत्याने का विचार छोड़ देता है। इस कहानी में मातृभूमि के प्रति प्रेम, सत्ता की निरंकुशता का विरोध, एक साधारण स्त्री की बुद्धिमता और नैतिक साहस जैसे गहरे विषय बड़े कौशल से उठाए गए हैं। भाषा सरल किंतु भावपूर्ण है, कथानक संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली है। शिल्प की दृष्टि से ये आधुनिक कहानी के सभी तत्वों को धारण करती है, एक केंद्रीय द्वंद, एक क्लाइमेक्स और एक अर्थपूर्ण अंत।
1: एक टोकरी भर मिट्टी एक स्वतंत्र, मौलिक, समकालीन यथार्थ से जुड़ी कहानी थी और इसलिए यह हिंदी कहानी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यदि हम एक टोकरी भर मिट्टी का साहित्यिक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इसमें आधुनिक कहानी के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हैं। ये कहानी उस काल की राजनीतिक परिस्थिति का भी रूपक है। जिस प्रकार राजा एक निर्धन विधवा की भूमि छीनना चाहता है, उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य भारत की भूमि, संसाधन और स्वाभिमान छीन रहा था। ये समानांतर पाठकों को स्पष्ट था और इसलिए कहानी का प्रभाव केवल साहित्यिक नहीं, राजनीतिक भी था।
2: एक टोकरी भर मिट्टी के अतिरिक्त माधव राव सप्रे ने हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं दी। उनका संपूर्ण साहित्यिक योगदान कई आयामों में फैला हुआ है। सप्रे जी के निबंध हिंदी गद्य साहित्य के अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति सभी विषयों पर गहन और विचारोत्तेजक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों की विशेषता यह थी कि वो केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं थे, उनमें एक व्यवहारिक संदेश होता था, एक आह्वान होता था जो पाठक को निष्क्रियता से जगाकर सक्रियता की ओर प्रेरित करता था।
1: उन्होंने भारतीय इतिहास पर भी महत्वपूर्ण लेख लिखे। मराठा इतिहास और शिवाजी महाराज पर उनके लेख अत्यंत शोधपरक और प्रेरणादायक थे। शिवाजी की वीरता और राष्ट्र निर्माण की भावना उन्हें विशेष प्रिय थी। सप्रे जी ने अनुवाद को एक गंभीर साहित्यिक कार्य के रूप में अपनाया। उस काल में अनुवाद को प्रायः द्वितीय श्रेणी का कार्य माना जाता था, किंतु सप्रे जी जानते थे कि एक अच्छा अनुवाद मूल की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए नई भाषा में नई जान फूंकता है। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद किए, वे सभी इस कसौटी पर खरे उतरे।
2: उनके संपादकीय और समाचार टिप्पणियां हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने पत्रकारिता में एक मानदंड स्थापित किया, तथ्यात्मक, निष्पक्षता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समन्वय। छत्तीसगढ़ मित्र बंद होने के बाद माधव राव सप्रे स्थायी रूप से नागपुर आ गए। यहाँ उन्होंने साहित्यिक और पत्रकारिता की गतिविधियों को नए सिरे से संगठित किया।
1: नागपुर में उन्होंने हिंदी ग्रंथमाला नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी में उच्च कोटि के साहित्यिक, वैचारिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रकाशन किया। उस काल में हिंदी में अच्छी पुस्तकों का घोर अभाव था। अंग्रेजी, मराठी और बंगाली में ज्ञान विज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध थे, किंतु हिंदी पाठक उनसे वंचित थे। सप्रे जी ने हिंदी ग्रंथमाला के अंतर्गत न केवल मौलिक रचनाएं प्रकाशित की बल्कि अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों के हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किए। इस प्रकार उन्होंने हिंदी पाठकों को भारतीय और विश्व विचार की मुख्य धारा से जोड़ा।
2: हिंदी ग्रंथमाला के अंतर्गत उन्होंने इतिहास, दर्शन, विज्ञान और राजनीति सभी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की। इसके माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया कि हिंदी केवल काव्य और कथा की भाषा नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान की भी भाषा हो सकती है और होनी चाहिए। ये उनकी एक दूरदर्शी सोच थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। नागपुर में रहते हुए सप्रे जी ने हिंदी केसरी का संपादन किया। ये पत्रिका लोकमान्य तिलक की मराठी केसरी से भी प्रेरित थी और उसी राष्ट्रवादी चेतना की संवाहक थी। हिंदी केसरी में सप्रे जी ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया और जनता को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया।
1: दोस्तों, इस पत्रिका के संपादकीय लेख अत्यंत तर्कपूर्ण, ओजस्वी और प्रभावशाली होते थे। वो पाठकों को न केवल सूचित करते थे बल्कि उनके भीतर एक आंदोलन की भावना जगाते थे। गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद एक महाकार्य माना जाता है। माधवराव सप्रे के अनुवाद कार्य में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की अमर कृति श्रीमद् भगवत गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद।
2: गीता रहस्य तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कारावास की सजा दी थी। ये ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की एक क्रांतिकारी व्याख्या है जिसमें तिलक जी ने यह सिद्ध किया कि गीता केवल वैराग्य और संन्यास का उपदेश नहीं देती बल्कि कर्मयोग, सक्रिय और निर्भीक कर्म का संदेश देती है। ये व्याख्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान करती थी।
1: ये ग्रंथ मराठी में था। सप्रे जी ने इसका अनुवाद हिंदी में किया ताकि हिंदी क्षेत्र के पाठक भी इस महान विचार से लाभान्वित हो सकें। यह अनुवाद कार्य अत्यंत श्रमसाध्य था क्योंकि ग्रंथ में दार्शनिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर गहन विचार विमर्श था, किंतु सप्रे जी की भाषाई दक्षता और वैचारिक गहराई ने इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस अनुवाद ने उत्तर भारत के हिंदी भाषी पाठकों तक तिलक जी के विचारों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: लोकमान्य तिलक और माधवराव सप्रे के बीच का संबंध केवल एक लेखक और उसके प्रेरणा स्रोत का संबंध नहीं था। ये दो समान विचार मनुष्यों के बीच का एक गहरा वैचारिक और भावनात्मक रिश्ता था। तिलक जी मराठी के माध्यम से जो काम कर रहे थे, सप्रे जी हिंदी के माध्यम से वही करना चाहते थे। जब तिलक जी जेल में थे तब भी सप्रे जी की कलम उनके विचारों की संवाहक बनी रही। गीता रहस्य का अनुवाद करना सप्रे जी के लिए केवल एक साहित्यिक कार्य नहीं था, ये उनकी श्रद्धा का, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का और उनके विचारों को हिंदी भाषी जनता तक पहुंचाने के संकल्प का भी प्रतीक था।
1: श्रोताओं, 1920 में तिलक जी की मृत्यु ने सप्रे जी को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने हिंदी केसरी में तिलक जी पर एक अत्यंत मार्मिक श्रद्धांजलि लेख लिखा जिसमें उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति दोनों की अभिव्यक्ति थी। माधवराव सप्रे केवल कलम के योद्धा नहीं थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यावहारिक रूप से भी सक्रिय थे।
2: लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर सप्रे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के समर्थक बन गए। वे नरम दल की नीतियों से असंतुष्ट थे और मानते थे कि ब्रिटिश शासन से केवल विनम्र याचना से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसके लिए जन जागृति, असहयोग और दृढ़ संघर्ष आवश्यक है।
1: 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का सप्रे जी ने खुलकर समर्थन किया। उनकी पत्रिकाओं में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरक लेख प्रकाशित होते थे। वे स्वयं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे और अपने परिचितों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे।
2: बंगाल विभाजन पर सप्रे जी का कहना था कि ये विभाजन केवल एक प्रांत का विभाजन नहीं है, ये भारत की एकता को तोड़ने का षड्यंत्र है। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो इसका विरोध करे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के पाठकों को उस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जो मुख्यतः बंगाल और महाराष्ट्र में केंद्रित था।
1: सप्रे जी की राष्ट्रवादी लेखनी ने ब्रिटिश प्रशासन को बार बार नाराज किया। उनकी पत्रिकाओं पर निगरानी रखी जाती थी और उन पर दबाव डाला जाता था, किंतु वो कभी झुके नहीं। वे कहते थे कि अन्याय के सामने मौन रहना सबसे बड़ा कायरपन है। उन्होंने एक बार कहा था, हम कलम उठाते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि लिखना हमारा काम है, हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि चुप रहना गुनाह होगा। ये वाक्य उनके पत्रकारिता दर्शन का सार है।
2: माधवराव सप्रे और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बीच का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत प्रेरणादायक अध्याय है। माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे, सप्रे जी को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। सप्रे जी ने माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिभा को बहुत प्रारंभ में ही पहचान लिया था। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनकी रचनाएं अपनी पत्रिकाओं में प्रकाशित की और उन्हें हिंदी साहित्य की मुख्य धारा से जोड़ा। माखनलाल जी की पुष्प की अभिलाषा जैसी कालजयी कविताओं के पीछे सप्रे जी जैसे गुरु का आशीर्वाद था।
1: दोस्तों, इस संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, दोनों एक ही स्वप्न के सहयात्री थे। दोनों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे और दोनों साहित्य को स्वतंत्रता संग्राम का अस्त्र मानते थे। सप्रे जी हिंदी को केवल एक भाषा नहीं, राष्ट्रीय एकता का सूत्र मानते थे। उनका तर्क था कि भारत की विविधता में एकता लाने के लिए एक ऐसी भाषा आवश्यक है जो सर्वाधिक लोगों द्वारा समझी और बोली जाए, और वो भाषा हिंदी ही है। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलनों में और विभिन्न मंचों पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की।
2: सप्रे जी चाहते थे कि हिंदी की भाषा सरल, सहज और जनउपयोगी हो। वे संस्कृत की क्लिष्ट शब्दावली से लदी भाषा के विरोधी थे। उनका मानना था, जो भाषा आम आदमी की समझ में ना आए, वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। इसलिए उनके अपने लेखन में एक अद्भुत सरलता और स्पष्टता मिलती है। वे हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं का प्रतिद्वंदी नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल सभी भाषाएं एक ही सांस्कृतिक परिवार की अलग अलग शाखाएं हैं। इसलिए उन्होंने मराठी से हिंदी में अनुवाद किए और मराठी साहित्यकारों से प्रेरणा भी ली।
1: सप्रे जी ने पत्रकारिता की भाषा को एक नया आयाम दिया। उन्होंने दिखाया कि पत्रकारिता की भाषा साहित्यिक भाषा से कम प्रभावशाली नहीं हो सकती, बशर्ते उसमें स्पष्टता हो, तर्क हो और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हो। उनके संपादकीय लेख आज भी हिंदी पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन योग्य हैं। माधवराव सप्रे की पत्रकारिता केवल एक व्यवसाय नहीं थी, ये एक मिशन था, एक धर्म था। उनके पत्रकारिता दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत थे जो उनके समस्त लेखन और संपादन में परिलक्षित होते हैं।
2: श्रोताओं, सप्रे जी हमेशा मानते थे कि पत्रकार का पहला धर्म सत्य है। किसी भी दबाव में, किसी भी प्रलोभन में सत्य से समझौता नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि में समाचार वो है जो सत्य हो, न कि वो जो किसी को प्रसन्न करे। उनके लिए पत्रिका एक सामाजिक दायित्व था। पाठक केवल ग्राहक नहीं थे, वो उनके बंधु थे, उनके देशवासी थे। उनके प्रति उनकी एक जवाबदेही थी। पाठक को सूचित करना, शिक्षित करना और प्रेरित करना, ये तीनों संपादक के दायित्व थे।
1: प्रत्येक समाचार और लेख को वे राष्ट्रीय हित की कसौटी पर परखते थे। क्या ये देश की सेवा करेगा, क्या ये जनता को जागृत करेगा, यही उनका मापदंड था। स्वतंत्र और निर्भीक अभिव्यक्ति वे किसी के दबाव में नहीं आते थे, न सरकार का, न धनिक वर्ग का, न रियासतों का। उनकी कलम स्वतंत्र थी और वे इसे सदैव स्वतंत्र रखना चाहते थे।
2: माधवराव सप्रे एक जागरूक सामाजिक चिंतक भी थे। वो जाति प्रथा और अस्पृश्यता को भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक मानते थे। उन्होंने अपने लेखों में इस विषय पर और अधिक स्पष्ट और निर्भीक रूप से लिखा। उनका कहना था कि जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता संभव नहीं है और स्वतंत्रता का स्वप्न अधूरा रहेगा।
1: दोस्तों, सप्रे जी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि स्त्री की शिक्षा का सीधा संबंध राष्ट्र के भविष्य से है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को संस्कारवान और देशभक्त बना सकती है। उन्होंने अपने लेखन में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बार बार आग्रह किया।
2: साहित्यिक दृष्टि से माधव राव सप्रे का योगदान केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं था, उनका गद्य शिल्प भी अत्यंत परिष्कृत था। उनकी भाषा में एक विशेष ओज और तेजस्विता थी। वाक्य विन्यास सुगठित और अर्थपूर्ण होते थे। वो अनावश्यक शब्दों के उपयोग से बचते थे। प्रत्येक शब्द अपना भार उठाता था और उनकी भाषा में मराठी और संस्कृत का सुंदर समन्वय भी मिलता था।
1: उनके निबंधों में तर्क, भाव और उदाहरण का अद्भुत संयोग मिलता है। वे किसी भी विषय को केवल सैद्धांतिक स्तर पर नहीं छोड़ते थे, उसे व्यावहारिक उदाहरणों और तर्कों से जीवंत बना देते थे। उनके संपादकीय लेख अत्यंत प्रभावशाली होते थे। वे पाठक की बुद्धि और भावना दोनों को एक साथ छूते थे। उनके संपादकीयों में एक सुनिश्चित राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण था, जो पाठक को सोचने और कुछ करने के लिए प्रेरित करता था।
2: माधवराव सप्रे का निजी जीवन अत्यंत सादा और संघर्षपूर्ण था। साहित्य और पत्रकारिता के लिए समर्पण का अर्थ था आर्थिक सुरक्षा का त्याग। पत्रिकाओं के प्रकाशन में निरंतर आर्थिक घाटा होता था। ग्राहकों की संख्या अपेक्षित नहीं बढ़ती थी। विज्ञापन की संभावनाएं नगण्य थी। मुद्रण व्यय बढ़ता जा रहा था। ऐसे में घर का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता था।
1: किंतु सप्रे जी ने कभी अपनी कलम को बेचा नहीं। उन्होंने कभी किसी रियासत या धनिक वर्ग का पक्ष लेने के बदले आर्थिक सहायता नहीं ली। वे कहते थे, जो कलम बिक जाए वो कलम नहीं व्यापार है। ये उनके चरित्र की महानता थी। उनके परिवार ने भी उनकी साधना में निरंतर साथ दिया। उनकी पत्नी ने परिवार को कठिन परिस्थितियों में भी संभाला और सप्रे जी को अपने कार्य में लगे रहने का अवसर दिया।
2: माधवराव सप्रे का प्रभाव अपने समकालीन और परवर्ती साहित्यकारों पर बहुत गहरा था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उनके सबसे प्रमुख शिष्य और अनुयायी थे। चतुर्वेदी जी ने स्वयं कहा कि सप्रे जी ने उन्हें न केवल साहित्य में बल्कि जीवन दर्शन में भी मार्गदर्शन दिया। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय के अभिलेखों से पता चलता है कि अनेक हिंदी पत्रकार और साहित्यकार उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनके पास आते थे।
1: दोस्तों, उनकी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक पूरी पीढ़ी को हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया। उस पत्रिका को पढ़कर जो बालक बड़े हुए, उनमें से अनेक आगे चलकर हिंदी के लेखक, पत्रकार और शिक्षक बने। जीवन के अंतिम वर्षों में माधवराव सप्रे का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। वर्षों की अथक मेहनत, अनिद्रा, आर्थिक तनाव और राष्ट्रीय चिंताओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, किंतु उनकी जिजीविषा और कर्मनिष्ठा अंत तक बनी रही। अस्वस्थ होने पर भी वे लिखते रहे, सोचते रहे और हिंदी के भविष्य की चिंता करते रहे। उनके अंतिम दिनों में उनके निकट जो लोग थे, उन्होंने बताया है कि वे अंत तक हिंदी और भारत की स्वतंत्रता की चर्चा करते रहते थे।
2: अट्ठाईस अप्रैल 1926 को नागपुर में उनका निधन हो गया। वो मात्र 54 वर्ष की आयु में संसार से चले गए। उनके जाने से हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जब वो गए तो उनके पास भौतिक संपत्ति नाम मात्र को भी नहीं थी, किंतु उन्होंने हिंदी साहित्य को जो अमूल्य विरासत दी वो अनंत काल तक अक्षुण्य रहेगी।
1: सप्रे जी के निधन की सूचना मिलते ही हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने उनके निधन पर जो शब्द लिखे, वे आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देते हैं। उन्होंने कहा था, सप्रे जी चले गए, हिंदी की एक मशाल बुझ गई, किंतु जो प्रकाश उन्होंने फैलाया वो कभी नहीं बुझेगा।
2: अनेक हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने उनके निधन पर विशेष अंक निकाले और उनके जीवन कार्य को श्रद्धांजलि दी। ये इस बात का प्रमाण था कि जिस हिंदी साहित्य की सेवा में सप्रे जी ने अपना जीवन अर्पित किया था, वो साहित्य जगत उनके महत्व को भली भांति जानता और मानता था। सप्रे जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान की स्थापना की गई। ये संग्रहालय हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का एक अनमोल संरक्षण केंद्र है।
1: दोस्तों, प्रतिवर्ष 19 जून को सप्रे जी की जन्म जयंती पर यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को माधवराव सप्रे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में माधवराव सप्रे का स्थान कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है।
2: हिंदी साहित्य के इतिहासकार प्रायः भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच के संक्रमण काल में माधवराव सप्रे को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद ने जो नींव रखी थी, उसे आगे बढ़ाने में सप्रे जी जैसे लेखकों की अहम भूमिका थी।
1: महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को जो मानक स्वरूप दिया था, उस दिशा में सप्रे जी छत्तीसगढ़ मित्र से पहले ही काम कर रहे थे। इस अर्थ में सप्रे जी एक अग्रदूत थे जिन्होंने द्विवेदी युग की जमीन तैयार करने में योगदान दिया।
2: जब हम हिंदी कहानी का इतिहास लिखते हैं तो प्रायः प्रेमचंद से शुरुआत की जाती है, किंतु प्रेमचंद से पहले सप्रे जी ने जो बीज बोया था उसकी अनदेखी नहीं होना चाहिए। एक टोकरी भर मिट्टी और प्रेमचंद की पहली कहानी सौथ के बीच 6 वर्षों का अंतर है। यह अंतर बताता है कि सप्रे जी प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानी की जमीन तैयार कर रहे थे।
1: और दोनों में एक समानता भी है, दोनों ने अपनी कहानियों में सामान्य जन की पीड़ा और संघर्ष को केंद्र में रखा। दोनों ने साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम माना। इस दृष्टि से सप्रे जी को प्रेमचंद के पूर्वज और पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: माधवराव सप्रे ने न केवल हिंदी साहित्य को बल्कि छत्तीसगढ़ को भी एक साहित्यिक पहचान दी। उनसे पहले छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य के मानचित्र पर लगभग अदृश्य था। छत्तीसगढ़ मित्र ने इस क्षेत्र को हिंदी साहित्य का एक सक्रिय केंद्र बनाया। आज छत्तीसगढ़ में जो समृद्ध हिंदी साहित्य परंपरा है उसके मूल में सप्रे जी का ही योगदान है। माधवराव सप्रे जी की जयंती को आज के डिजिटल और व्यावसायिक पत्रकारिता के युग में और भी प्रासंगिक रूप में देखा जाना चाहिए।
1: सप्रे जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि पत्रकारिता एक मिशन है, एक व्यापार नहीं। उन्होंने पत्रकारिता को सत्य, न्याय और जनसेवा के साधन के रूप में देखा और इस दृष्टि से कभी विचलित नहीं हुए। हिंदी के संदर्भ में भी उनकी दृष्टि आज प्रासंगिक है, जब हिंदी पर अंग्रेजी के वर्चस्व का खतरा बना हुआ है और हिंदी का व्यवसायीकरण हो रहा है, तब सप्रे जी की वो दृष्टि याद आती है जो हिंदी को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दायित्व मानती थी।
2: माधवराव सप्रे जी का जीवन हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के एक तपोवन की कथा है। वो एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने सुख, सुविधा, यश की परिवाह किए बिना अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य और राष्ट्र सेवा को अर्पित कर दिया। उन्होंने पत्रकारिता को सत्य की खोज का माध्यम बनाया। एक छोटे से गांव पथरिया से निकलकर उन्होंने हिंदी साहित्य के आकाश में जो नक्षत्र स्थापित किया, वो आज भी आने वाली शताब्दियों में भी अपनी आभा बिखेरता रहेगा।
1: दोस्तों, माधवराव सप्रे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक युग थे, एक चेतना थे, एक आंदोलन थे। हिंदी की प्रथम कहानी का जो बीज उन्होंने 1901 में बोया था वो आज वट वृक्ष बन चुका है और उसकी छाया में हिंदी साहित्य की अनंत शाखाएं फल फूल रही हैं।
2: हिंदी भाषा और साहित्य के प्रत्येक अनुरागी को इस महान विभूति के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हिंदी का आज का रूप संभव नहीं था। पथरिया की उस माटी को प्रणाम जिसने ऐसा रत्न दिया, उस कलम को प्रणाम जो जीवन भर अडिग रही, उस दृष्टि को प्रणाम जो एक खंडित और पराधीन भारत में भी स्वतंत्र और विकसित हिंदी का भी स्वप्न देखती रही। माधवराव सप्रे अमर हैं, उनकी कलम अमर है, उनकी दृष्टि अमर है और उनका स्वप्न अमर है।
1: तो श्रोताओं, आज हमने बात की है माधवराव सप्रे की। कार्यक्रम भारत विभूति में आज अपना सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर किसी भारत विभूति के बारे में आपको बताएंगे, उनके जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपसे इजाजत लेने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा का, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा
2: और मनीषा।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ मैं हूं फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां 9 जुलाई की शाम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन में।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है हितैषी जी की कविता, उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा।

तो ये था गीत, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। आज जब हम आजाद भारत में अपना स्वाधीन जीवन जी रहे हैं, तब इस बात का अनुमान लगाना भी कठिन है कि पिछली शताब्दी के शुरू में कवि इसी स्वाधीनता के स्वप्न देख रहे थे। इसी सपने को आगे बढ़ाया मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। वे बचपन में स्वर्णलता के नाम से छपाई लिखते थे, फिर किशोर अवस्था में ऋषिकेश के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधु के नाम से किया और भारती तथा नित्यानंद के नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। 1912 में आई उनकी कृति भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा। गुप्त जी हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के पहले महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया और संस्कृत छंदों में कविता लिखी। राष्ट्र चेतना और मानवीय उत्थान उनकी कविता के मूल में है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की। 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और अनेक गद्य कृतियां उनकी उपलब्ध हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है साकेत।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: कहते हैं कि जलियांवाला बाग की मिट्टी पर गिरने वाला खून उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता था जिनके सीने में आजादी की तमन्ना आग की तरह रोशन थी। 12 साल के एक बालक ने भी उस बाग से मिट्टी उठाकर अंग्रेजों से बदला लेने की सौगंध खाई थी। उस बालक का नाम था भगत सिंह। इंकलाबी परिवार से नाता रखने वाले सरदार भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी थी बल्कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। भगत सिंह समय से आगे की सोच रखने वाले क्रांतिकारी थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा का निर्माण करके पंजाब में क्रांति का आह्वान किया था। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी संघ का निर्माण किया और सशस्त्र क्रांति के द्वारा देश को स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में देखने का ख्वाब देखा था। अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और सांडर्स का वध कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंके। बम फेंकने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत को यह पता चला कि भगत सिंह सांडर्स की हत्या में शामिल थे तो उन पर फिर मुकदमा चलाया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान भगत सिंह ने अपने बयानों और 61 दिन के आमरण व्रत से मुकदमे को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वे रातों रात करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंख का तारा बन गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह की शहादत ने लोगों के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि शहीद शब्द उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया।

0: क्या बात है, आज बच्चा पार्टी बड़ी उधम मचा रही है।
1: एग्जाम जो खत्म हो गई है।
0: ओ, तब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं अब हैं?
2: दादाजी आज हमको बाहर ले चलो।
0: अरे नहीं भाई, आज तो मुझे बहुत काम है। ऐसा करते हैं अपन परसों चलते हैं। ओहो, अब तुम लोग मानने वाले तो हो नहीं हैं? चलो ठीक है, गजबीय काका के ढाबे चलते हैं।
2: दादाजी आज एक बात बताना तो भूल ही गई।
0: वो क्या?
2: इसको आज प्राइज मिला है।
0: ओ, किस लिए मिला है?
3: इसने देशभक्ति गीत गाया था।
0: चलो चलो, हमको भी सुनाओ बेटा।
2: चलो, चलो।

वाह वाह बच्चों, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। पता है तुम्हें, ये गीत राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है और भगत सिंह और उसके साथी इसे बहुत गाया करते थे।

0: लो ढावा भी आ गया बात करते करते।
1: चलो चलो चलो बच्चों, हाँ धीरे धीरे गाड़ी से उतरो, हाँ हाँ धीरे धीरे।
0: अरे छोटू उस्ताद।
2: हाँ मालिक, आया आया आया।
0: अरे भाई ये गजबीय काका नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं?
2: अरे गजबीय काका गए हैं, 2-3 दिन हो गए ना, गांव गए ना अपने।
0: ओ फिर तो तुम्हारे मजे मजे होंगे।
2: हाँ मालिक, हाँ हम लोग के काय के मजे, हमारी तो कोई छुट्टी।
0: अच्छा सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना?
2: एकदम एकदम ठीक।
0: चलो ये ठीक है। अच्छा बच्चा पार्टी, तुम लोग क्या क्या खाओगे?
3: दाल तड़का, पनीर की सब्जी, खीर।
2: अरे वाह, तुम लोग की परीक्षा खत्म हो गई क्या? तभी
0: अच्छा छोटू उस्ताद इनका ऑर्डर ले ले भाई, हैं जल्दी लगवा दे।
3: दादाजी हमें भगत सिंह के बारे में बताओ ना।
0: हाँ बच्चा पार्टी, मैं तो जानता था तुम लोग मानने वाले नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें भगत सिंह के बारे में बताता हूँ। अरे बच्चों, जैसे तुम जिद कर रहे हो ना कहानी सुनाने के लिए, वैसे ही जब भगत सिंह छोटे थे तो वो भी जिद किया करते थे अपनी चाची से कहानी सुनाने के लिए, और खूब कहानियां सुना करते थे। लेकिन उनकी चाची देशभक्ति की कहानी सुनाया करती थी। कहानी सुनते सुनते भगत सिंह कहा करते थे कि मैं भी बड़ा होके अंग्रेजों का सफाया करूंगा।
4: भारतीय क्रांतिकारियों की प्रथम पंक्ति में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व हुए, जिनमें से एक थे भगत सिंह, शहीदों के शहीद भगत सिंह। 11 नवंबर 1907 को जिला लायलपुर में सरदार किशन सिंह जी के घर जन्मे भगत सिंह का उन्मुक्त बचपन घर के देशभक्तिपूर्ण वातावरण को आत्मसात करता रहा और उसके लक्षण भी दिखने लगे।
5: बेटा भगत, ये क्या कर रहे हो?
6: बंदूके बो रहा हूँ।
7: अरे पुत्र, बंदूके बो के तू क्या करेगा?
6: इनसे जो बंदूके होंगेगी उनसे मैं अंग्रेजों का सफाया करूँगा।
7: हाय मेरा पुत्र, इतनी चिंता करता है मेरी।
6: मैं बड़ा होकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा।
4: बचपन से ही मेधावी बुद्धि के मालिक भगत सिंह 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते देशभक्ति की भावना के रंग में इतने रंग चुके थे कि जलियांवाला बाग की घटना सुनकर स्कूल से सीधे अमृतसर घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां प्रतिज्ञा करके लौटे कि उन्हें देश की आजादी के लिए लड़ना है, और पिता को सूचित कर चल पड़े इस कठोर डगर पर। पहले सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया, फिर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई।
8: साइमन कमीशन,
9: गो बैक, गो बैक।
8: साइमन कमीशन,
9: गो बैक, गो बैक।
0: ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये।
10: हाँ हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

0: यू बड़े इंडियंस जरूर निकालोगे, आंदोलन करोगे, यू यू यू डॉट इंडियंस।
1: हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे। साथियों आगे बढ़ो,
2: आग जाओ वरना गोली चलाई जाएगी।
3: साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक।
2: चलाओ लाठियां।
4: जी साहब।
2: खदेड़ दो सबको, मारो।
3: साइमन कमीशन गो बैक।
5: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

0: जी आप ठीक है ना? लाला जी हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे। लाला जी
1: राजगुरु जल्दी आओ, लाला जी के सिर से खून बह रहा है।
0: भगत सिंह लाला जी के सर से खून बह रहा है। लाला जी, लाला जी आप ठीक है ना? हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे। लाला जी, लाला जी आप ठीक है? लाला जी,
2: आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
0: लाला जी,
1: लाला जी, लाला जी, लाला जी, क्या हो रहा है? लाला जी, लाला जी को अस्पताल जाना पड़ेगा जल्दी।
3: लाला जी।

0: जालिमों ने लाला जी की, ये राष्ट्र का घोर अपमान है।
1: हाँ, ये राष्ट्र का घोर अपमान है।
2: घोर अपमान है,
1: हम नहीं सहेंगे।
2: हम नहीं सहेंगे अब।
3: हाँ, पंडित जी ठीक कहते हैं।
1: हाँ, इन्होंने लाला जी ही नहीं 30 करोड़ भारतीयों पर लाठी बरसाई है। हम इन अत्याचारियों का दमन करेंगे।
0: हाँ भगत सिंह, हम इन अंग्रेजों को इस देश से निकाल कर रहेंगे।
1: हाँ, निकाल कर रहेंगे।
4: हाँ, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद।

0: लाला लाजपत राय की शहादत पर श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए भगत सिंह और साथियों ने जो प्रण किया उसे पूरा करने के लिए तयशुदा स्थान पर पहुंच गए।
1: अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना है राजगुरु। बस इशारा होते ही
2: गोली चलानी है।
1: बिल्कुल, और ध्यान रहे निशाना चूकना नहीं चाहिए।
2: भगत सिंह बिल्कुल नहीं चूकेगा।
1: तैयार तो है हम, बस निशाना सही लगे।
2: हाँ भगत सिंह, इशारा हो चुका है।
1: बिल्कुल हाँ ठीक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम ध्यान रखना। हाँ आगे बढ़ो, चलाओ गोली।
2: हाँ
1: चलाओ गोली, चलाओ राजगुरु, चलाओ गोली।
3: अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना है।
1: भागो राजगुरु, भागो सब यहाँ से।
2: हाँ भगत सिंह
1: जल्दी।
2: हाँ।
1: सब अलग अलग निकल जाओ।
2: हाँ। निकलो निकलो।
4: काम हुआ भगत सिंह?
1: हाँ पंडित जी, काम तमाम हो गया।
4: ये लो साइकिलें, थाने की तरफ हलचल बढ़ेगी। जल्दी इस तरफ को निकलो। भगत सिंह तुम दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता की रेल पकड़ो। भगवती चरण ने सब इंतजाम कर दिया है।
1: ठीक है
4: राजगुरु
2: जी।
4: तुम भी साथ जाओगे दोनों भेष बदल कर।
2: जी।
4: ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, वहीं मिलेंगे।
1: ठीक है पंडित जी।
2: जी।
0: स्वतंत्रता के आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जयदेव कपूर और सभी साथी सकुशल कलकत्ता पहुंचे और वहां अगले कदम पर विचार विमर्श हुआ।
1: पंडित जी, सांडर्स वध तो संपन्न हुआ, क्यों ना असेंबली में बम के धमाकों के साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए।
5: हम भी यही चाहते हैं।
4: हाँ भगत सिंह, यही ठीक रहेगा, पर सारी योजना क्या होगी ये बताओ।
1: असेंबली जाकर सरकारी नुमाइंदों के सामने बम फेंके जाएं, वहां पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के पर्चे बांटे जाएं।
4: बिल्कुल सही योजना है।
5: हाँ हम सब समर्थन करते हैं।
1: साथियों, देश हमारा है और हक कानून इन अंग्रेजों के, जमीन हमारी है और पैदावार इनकी, नदियां हमारी है और वाटर टैक्स ये ले, हमारे लिए न वकील न दलील और ना ही अपील। पंडित जी, हमारे कानों में हर पल ये गुलामी काली की तरह गूंजती रहती है।
4: भगत सिंह, सोने के प्याले में ढका हुआ सत्य है ये आजादी, विस्फोट करना ही होगा। सांप केंचली मारकर बैठा है हमारी आजादी पर।
2: पंडित जी, दुनिया के किसी ताकतवर ने आसानी से दी है कभी आजादी, उससे अधिक ताकतवर बनना ही पड़ता है।
4: ठीक कहते हो राजगुरु, हम काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को नहीं छुड़ा पाए, न हम साइमन कमीशन को वापस भेज पाए और लाला जी को भी खो बैठे।
1: लेकिन साथियों, हम कमजोर नहीं है, लाला जी की शहादत ने हमें और मजबूत किया है। असेंबली में बम फेंकना तय हुआ समझे,

0: मैं और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकेंगे असेंबली में। केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड सेफ्टी बिल दोनों पास नहीं हो पाए, तो वाइस रॉय के विशेष अधिकार से इसे पास कर दिया गया है। कितनी तानाशाही है सुखदेव।
1: हाँ भगत सिंह, और इसकी घोषणा 8 अप्रैल को होगी।
0: हाँ सुखदेव, यही दिन तय करते हैं, 8 अप्रैल।
2: और मैं एंट्री पास का बंदोबस्त करता हूँ।
1: स्थिति और स्थान का जायजा लेना भी बहुत जरूरी है जयदेव कपूर।
2: यह सब मेरे जिम्मे छोड़ दो।
0: तो तय रहा सब?
3: हाँ तय रहा।

8 अप्रैल 1929 का दिन था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया।

0: उन डरतलों को पकड़ के लाओ।
1: बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है।
2: हम किसी का नुकसान करने के इरादे से नहीं आए हैं। सरकार को इन धमाकों से भी कुछ समझ में ना आए तो ये पर्चे पढ़ लिए जाएं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की हत्या करना आसान है, मगर विचारों की नहीं। हम लाला जी की हत्या का और दोनों बिलों का विरोध करते हैं। हम देश की आजादी के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हैं। हम आजाद होकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये रहे हमारे हथियार, हमें शौक से गिरफ्तार करें।
3: भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारियां दे दी। इसके बाद 7 मई 1929 को भगत सिंह की मांग के मुताबिक जज साहब के सामने उनके बयान हुए।
4: भगत सिंह, क्या तुमने सड़न में बम फेंका?
5: सच है जज साहब, हमने बम फेंके।
4: सार्जेंट हैरी ने आपसे पिस्तौल छीनी?
5: असत्य, हमने भरी हुई पिस्तौल खुद टेबल पर रखी।
4: इट मींस तुम मानते हो कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया?
5: जी नहीं जज साहब, हमने कोई अपराध नहीं किया। ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य था और ना ऐसा कोई परिणाम हुआ। हमने सिर्फ अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है।
4: तो फिर तुमने बम क्यों फेंका?
5: जज साहब, अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए दहाड़े हैं हम। हमारे बमों से खाली बेंचों को नुकसान जरूर पहुंचा है, मगर किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। हमारे बम सिर्फ धमाका करने वाले थे। अगर हमारी नीयत मानव रक्त बहाने की होती तो हम उसमें और तीखे रसायन डालते और उन्हें खाली बेंचों की तरफ ना फेंकते। हमारे बमों ने अपने ध्येय से अधिक कुछ नहीं किया। सरकार को चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी थी, जिसे हमने पूरा किया। जज साहब, हम अपने कार्य के अनुसार दंड भुगतने को तैयार हैं, और हमने अपनी मर्जी से अपने आप को खुद सरकार के हवाले किया है।
4: क्या यही है आपकी क्रांति?
5: जी हाँ, यही है हमारी क्रांति। इसका उद्देश्य है साम्राज्यवाद का विनाश हो, सार्वभौमिक शक्ति का सूत्रपात हो, स्वतंत्रता और लोक प्रभुता की स्थापना हो। इनकलाब जिंदाबाद।

0: अपनी गिरफ्तारी का अंजाम जानते थे भगत सिंह और अपने बचाव के विरुद्ध भी थे, सो उन्होंने अदालत के कटघरे को ऐसा मंच बना लिया जहां से वे आजादी के संग्राम में कूद पड़ने के लिए देशवासियों का आह्वान कर सकें। जेल यात्राएं सहते हुए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल भी की। उसी दौरान उन पर सैंडर्स वध का मुकदमा चला तो उन्होंने सच्चाई के साथ इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। स्पेशल कोर्ट में भी मुकदमा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो स्पेशल ट्रिब्यूनल बना। पेश होने के लिए जब लारी में बिठाकर उन्हें लाया जा रहा था तो लारी में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे ले रही थी।
1: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
2: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
1: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
2: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले।
1: वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा,
2: वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
1: कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा,
2: उरूजे कामयाबी
3: ऑर्डर ऑर्डर
2: हिंदोस्ता होगा,
1: उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा,
2: उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा।
3: ऑर्डर ऑर्डर।

0: आशना होगा।
1: No need of nuisance here।
2: न्यायाधीश महोदय, आपको हमारा देश प्रेम न्यूसेंस लगता है क्या? आप अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करते? हो सकता है मातृभूमि आपके लिए मिट्टी पत्थरों के बेजान टुकड़े हों, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को माँ का दर्जा देते हैं। वंदे
0: मातरम,
2: वंदे
0: मातरम,
2: वंदे
0: मातरम।
2: जज साहब, ना आप हमारी भक्ति भावना को मार सकते हैं और ना हम इसे आपके पैरों तले रौंदता हुआ देख सकते हैं। नतीजा जल्द ही हमारे पक्ष में होगा जज साहब।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
0: नतीजा तो हमारे हक में ही होगा।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
3: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: ऑर्डर ऑर्डर।

0: जिंदाबाद। आपको हमारी देशभक्ति पर एतराज है तो हमें आपके फैसलों पर एतराज है। हम यह अदालती तमाशा हरगिज नहीं देखना चाहते। आज से हम अदालत का बहिष्कार करते हैं। इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद।
2: नारे की गूंज न्यायाधीशों को विचलित कर देती है। भगत सिंह के अदालत के पूर्ण बहिष्कार के फलस्वरूप बिना वकीलों, दलीलों और गवाहों के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया।
3: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दी जाती है।
4: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद,
5: इंकलाब जिंदाबाद,
6: इंकलाब जिंदाबाद,
7: इंकलाब जिंदाबाद,
8: इंकलाब।

0: सिंह से मिलने आए हैं शिव वर्मा।
1: अरे भगत सिंह, तुमसे मिलने को ही आया है भाई।
2: अरे शिव वर्मा, बेड़ियों के गीत बड़े मधुर सुनाई दिए, आओ गले मिलने।
3: अरे यार, गले मिलने ही तो आया हूँ भगत सिंह।
4: शायद आखिरी बार तुम सलाखों के बाहर बाहें फैला दो और मैं सलाखों के अंदर कर लेता हूँ बाहें,
3: पर मिलने की भूख तो रह ही जाएगी दोस्त।
2: हाँ शिव वर्मा, हमारे दिल भी एक साथ ना धड़के, सरकार को खतरा हो जाता है। ले जा रहे हैं ना तुमको दूसरी जेल में।
3: हाँ, चलो मिलने की इजाजत तो मिली।
2: सोचता था क्रांति का नारा देश के कोने कोने में गूंज उठे, और आज इस काल कोठरी में उसकी गूंज सुन रहा हूं। जीवन का कुछ तो मूल्य हुआ।
4: हाँ भाई, इनकलाब का भरपूर जवाब भी तो मिला है।
2: इस छोटे से जीवन का इससे बढ़कर मूल्य क्या होगा कि ये देश पर कुर्बान हो।
4: हाँ भगत, सही कहा तुमने।
2: सुनो शिव वर्मा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा कुछ ही दिनों में, लेकिन तुम सब इस राह में थक कर बैठ मत जाना। इस क्रांति की लौ को जलाए रखना जब तक देश में आजादी का उजाला ना फैल जाए।
4: हाँ भगत सिंह, मैं क्या, सारा देश याद रखेगा, सारा देश।
3: अच्छा दोस्त, चलूं।
0: 23 मार्च 1931 का दिन आजादी के दीवानों को फांसी पर चढ़ाया जाना था, पर भगत सिंह की निर्भीकता, प्रतिबद्धता और सहजता तो देखिए। भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ से लेनिन का जीवन चरित्र मंगवाया पढ़ने के लिए।
5: कैसे हो भगत सिंह?
2: वकील साहब, प्रसन्न हूं। पुस्तक लाया?
5: हाँ, ये लीजिए। भगत सिंह, क्या मैं आपकी आखिरी इच्छा पूछ सकता हूँ?
2: वकील साहब, जीवन में एक ही इच्छा थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए जीऊं और मर मिटूं। आखिरी इच्छा भी यही है, फिर जन्म लूं तो भी देश पर कुर्बान होने के लिए।

0: आएगी फसले बहार वकील साहब, जरूर आएगी। आजादी दूर नहीं है, उम्मीद रखिए।
1: भगत सिंह जी, फांसी का हुक्म हो चुका है, चलिए।
0: रुको, जरा रुको। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, चलिए।
1: हथकड़ियां लगाओ इन्हें।
2: जी साहब।
0: हमारे हाथों में हथकड़ियां ना लगाई जाएं, हम चेहरे भी नहीं ढकेंगे। हम आजादी के दीवाने मौत से खुद हाथ मिला रहे हैं। फांसी हमारे लिए सजा नहीं, आत्म बलिदान है। चलो। दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

ग्वालियर घराने की खासियत, तिरवट और तराने, वो प्रस्तुत करूँगी। और मैं शुरुआत भोपाली की तिरवट से करूँगी। तिरवट में लिटरली वर्ड्स नहीं रहते हैं, तबले और पखावज के बोलों से मिलकर तिरवट बनती है।

गुरुजी, मेरे बाबा ग्रैंडफादर पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट जी की धुन में भजन पेश करूंगी। मैं मोहन की

0: धन्यवाद।
1: पुनः जोरदार तालियां सुश्री प्रदीक्षणा भट्ट, श्री चैतन्य भट्ट और श्री तल्ली त्रिवेदी जी के लिए। बहुत ही सुरमयी और भावपूर्ण प्रस्तुति।
2: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे प्रदक्षिणा भट्ट का शास्त्रीय गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में रहते समय ज्ञान योग विषय पर कुछ प्रवचन दिए थे। उनकी शिष्या कुमारी वाल्डो ने उन प्रवचनों को लिपिबद्ध कर लिया था। स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी शारदानंद सन 1896 में जब वेदांत प्रचार के लिए अमेरिका गए थे, तब उन्होंने ये प्रवचन कुमारी वाल्डो की नोटबुक से लिख लिए थे।
1: स्वामी जी ने ज्ञान योग का विवेचन उपनिषद तथा भगवत गीता के आधार पर किया है और इस प्रकार इन प्रवचनों में उन्होंने स्पष्ट दर्शाया है कि ज्ञान योग साधक को किस प्रकार मुक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बड़े सरल ढंग से बतला दिया है कि ज्ञान योग के मार्ग में सफल होने के लिए किन गुणों तथा साधना की आवश्यकता है।
0: इस ज्ञान योग का अनुसरण कर आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होकर किस तरह शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, इसका मार्गदर्शन भी स्वामी जी ने बड़े सुंदर एवं युक्तिपूर्ण रूप से किया है।
2: योग का अर्थ है मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने की पद्धति। इतना समझ लेने के बाद आप ईश्वर और मनुष्य की अपनी परिभाषाओं के अनुसार चल सकते हैं और आप देखेंगे कि योग शब्द हर परिभाषा के साथ ठीक बैठ जाता है। सदा याद रखिए कि विभिन्न मानसों के लिए विभिन्न योग है और यदि एक आपके अनुकूल नहीं होता तो दूसरा हो सकता है। सभी धर्म सिद्धांत और व्यवहार दो भागों में विभक्त हैं। पाश्चात्य मानस ने सिद्धांत पक्ष को छोड़ दिया है और वो शुभ कर्म के रूप में धर्म के केवल व्यवहारिक भाग को ही ग्रहण करता है। योग धर्म का व्यवहारिक भाग है और ये प्रदर्शित करता है कि धर्म शुभ कर्मों के अतिरिक्त एक व्यवहारिक शक्ति भी है।
1: इसके बाद स्वामी जी ने समझाया कि जो भी कार्य करते हैं सुख प्राप्ति के लिए आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं।
2: सुख और दुख दोनों ही जंजीरें हैं, एक स्वर्णिम और दूसरी लौह, किंतु दोनों ही हमें बांधने के लिए एक समान दृढ़ है और अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार करने से हमें रोकती है। आत्मा दुख या सुख नहीं जानती, ये तो केवल स्थितियां हैं और स्थितियां अवश्य सदैव बदलती रहती हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद और अपरिवर्तनीय शांति है, हमें इसे पाना नहीं है, वो हमें प्राप्त है। आओ हम अपनी आंखों से कीचड़ खो डालें और उसे देखें। हमें आत्मा में सदैव प्रतिष्ठित रहकर पूर्ण शांति के साथ संसार की दृश्यावली को देखना चाहिए।
0: स्वामी जी ने समझाया, आनंद बाहरी वस्तु से नहीं अंदर से आना चाहिए।
2: इंद्रियों के या मन के भी सभी आनंद क्षणभंगुर हैं, किंतु हमारे अंदर में एक सच्चा असंबद्ध आनंद है जो किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह आत्मा का आनंद ही है जिसे संसार धर्म कहता है। जितना ही अधिक हमारा आनंद हमारे अंतर में होगा उतने ही अधिक हम आध्यात्मिक होंगे। हम आनंद के लिए संसार पर निर्भर ना हो।
1: उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया।
2: कुछ दीन मछुआ स्त्रियों ने भीषण तूफान में फंसकर एक संपन्न व्यक्ति के बगीचे में शरण पाई। उसने उनका दयापूर्वक स्वागत किया, उन्हें भोजन दिया और जिनके सुवास से वायुमंडल परिपूर्ण था ऐसे पुष्पों से घिरे हुए एक सुंदर ग्रीष्मवास में विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। स्त्रियां इस सुगंधित स्वर्ग में लेटी तो किंतु सो न सकी। उन्हें अपने जीवन से कुछ खोया हुआ सा जान पड़ा और उसके बिना वे सुखी ना हो सकी। अंत में एक स्त्री उठी और उस स्थान को गई जहां की वे अपनी मछलियों की टोकरियां छोड़ आई थी। वे उन्हें ग्रीष्मवास में ले आई और तब एक बार फिर परिचित गंध से सुखी होकर वे सब शीघ्र ही गहरी नींद में सो गई।
0: उन्होंने कहा, सभी मनुष्यों में सत्व रज और तमोगुण होते हैं। हाँ, उनके अनुपात अलग अलग होते हैं।
2: संसार मछली की हमारी वो टोकरी न बन जाए जिस पर हमें आनंद के लिए निर्भर होना पड़े। ये तामसिक या तीनों गुणों में से निम्नतम द्वारा बंधना है। इसके बाद वे अहमवादी आते हैं जो सदैव मैं की बातें करते हैं। कभी कभी वे अच्छा काम करते हैं और आध्यात्मिक बन सकते हैं। ये राजसिक या सक्रिय हैं। सर्वोच्च अंतर्मुख स्वभाव वाले सात्विक हैं, जो आत्मा में ही रहते हैं। ये तीन गुण हर मनुष्य में भिन्न अनुपात में हैं और विभिन्न गुण विभिन्न अवसरों पर प्रधानता प्राप्त करते हैं। हमें तमस और रजस को जीतने का और तब उन दोनों को सत्व में मिला देने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए।
1: उन्होंने समझाया, हम अपनी ही आत्मा की पूजा ईश्वर पूजन के रूप में करते हैं।
2: जब हम किसी ईश्वर को मानते हैं तो वास्तव में वो हमारी अपनी आत्मा ही होती है, जिसे हम अपने से पृथक कर देते हैं और उसकी इस प्रकार पूजा करते हैं जैसे कि वो हमसे बाहर हो, किंतु वो सदैव हमारी अपनी आत्मा ही होती है तथा वही एक और अद्वितीय ईश्वर है। पशु का स्वभाव जहां वो है वहीं रहने का है, मनुष्य का शुभ खोजने और अशुभ से बचने का, और ईश्वर का न तो खोजने का और न बचने का, अपितु सदैव आनंदमय रहने का है।
0: ईश्वर सभी में विद्यमान है, हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं।
2: आओ हम ईश्वर बने, हम अपने हृदय महासागर जैसे बनाएं, ताकि हम संसार की छोटी छोटी बातों से परे जा सकें और उसे केवल एक चित्र की भांति देखें। तब हम इससे बिना किसी प्रकार प्रभावित हुए इसका आनंद ले सकें। संसार में शुभ को क्यों खोजें? हम वहां क्या पा सकते हैं? सर्वोच्च वस्तुएं जो वो दे सकता है उन कांच की गोलियों के समान है जो बच्चे कीचड़ के पोखरे में खेलते हुए पा जाते हैं। वे उन्हें फिर खो देती हैं और तब नए सिरे से उन्हें अपनी खोज प्रारंभ करनी होती है। असीम शक्ति ही धर्म और ईश्वर है। यदि हम मुक्त हों तभी हम आत्मा हैं। अमरता केवल तभी है जब तक कि हम मुक्त हों, ईश्वर तभी है जब वो मुक्त हो।
1: अहम ही हमें स्वर्गीय आनंद से वंचित करता है, स्वामी जी ने कहा।
2: जब तक हम अहम भाव द्वारा निर्मित संसार का त्याग नहीं करते, हम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रविष्ट नहीं हो सकते। न तो कोई कभी प्रविष्ट हुआ, न कोई कभी होगा। संसार के त्याग का अर्थ है अहम भाव को पूर्णतया भूल जाना, उसे बिल्कुल न जानना, शरीर में रहना पर उसके द्वारा शासित न होना। इस दुष्ट अहम भाव को अवश्य ही मिटाना होगा,
0: अपने मैं को हटाना होगा, अहम को त्यागना होगा, तभी ईश्वर मिलेंगे।
2: मनुष्य जाति की सहायता करने की शक्ति उन शांत व्यक्तियों के हाथ में है जो केवल जीवित हैं और प्रेम करते हैं तथा जो अपना व्यक्तित्व पूर्णतः पीछे हटा लेते हैं। वे मेरा या मुझे कभी नहीं कहते। वे दूसरों की सहायता करने में उपकरण बनने में ही धन्य हैं। वे पूर्णतया ईश्वर से अभिन्न हैं, न तो कुछ मांगते हैं और ना सचेतन रूप से कोई काम करते हैं। वे सच्चे जीवन मुक्त हैं, पूर्णतः स्वार्थ रहित। उसका छोटा व्यक्तित्व पूर्णतया उड़ गया होता है, महत्वाकांक्षा का अस्तित्व नहीं रहता। वे व्यक्तित्व रहित पूर्णतया तत्व मात्र हैं। जितना अधिक हम छोटे से अहम को डुबाते हैं उतना ही अधिक ईश्वर आता है। आओ हम इस छोटे से अहम से छुटकारा दें और केवल बड़े अहम को अपने में रहने दें।
1: स्वामी जी ने कहा, अपने आप को मिटाकर ही मुक्ति मिलती है।
2: जब हम अपने को नाम और रूप से मुक्त कर लेते हैं, विशेषतया जब हमें अच्छे बुरे सूक्ष्म या स्थूल किसी भी प्रकार के शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, तभी हम बंधन से छुटकारा पाते हैं। शाश्वत प्रगति, शाश्वत बंधन होगी। हमें समस्त विभेदीकरण से परे होना ही होगा और शाश्वत एकत्व या एक रूपता अथवा ब्रह्म तक पहुंचना ही होगा। आत्मा सभी व्यक्तियों की एक है और अपरिवर्तनीय है, एक और अद्वितीय है। वो जीवन नहीं है, अपितु वो जीवन में रूपांतरित कर दी जाती है। वो जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ से परे है। वो निरपेक्ष एकता है।
0: दूसरों को ठेस पहुंचाकर अपनी मुक्ति ढूंढने को स्वामी जी पाप मानते थे। वे कहते थे,
2: नरक के बीच भी सत्य को खोजने का साहस करो। नाम और रूप की सापेक्ष की मुक्ति कभी यथार्थ नहीं हो सकती। कोई रूप नहीं कह सकता मैं रूप मुक्त हूं। जब तक रूप का संपूर्ण भाव नष्ट नहीं होता, मुक्ति नहीं आती। यदि हमारी मुक्ति दूसरों पर आघात करती है तो हम मुक्त नहीं है। हमें दूसरों को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वास्तविक अनुभव केवल एक होता है, किंतु सापेक्ष अनुभव अवश्य ही अनेक होते हैं।
1: सब कुछ हमारे सामने है, हम उसे बाहर क्यों ढूंढने जाते हैं?
2: समस्त ज्ञान का स्रोत हम में से प्रत्येक में है, चींटी में तथा सर्वोच्च देवदूत में। वास्तविक धर्म एक है। सारा झगड़ा रूपों का, प्रतीकों का और दृष्टांतों का है। सतयुग खोज लेने वालों के लिए सतयुग पहले से ही विद्यमान है। सत्य ये है कि हमने अपने को खो दिया है और संसार को खोया हुआ समझते हैं। मूर्ख, क्या तू ही सुनता है? तेरे अपने ही हृदय में रात दिन को शाश्वत संगीत हो रहा है। सच्चिदानंद सोहम सोहम सोहम सोहम।
0: प्रतिमा पूजा की परंपरा पर वे बोले,
2: भारत में प्रतिमाओं का प्रारंभ बुद्ध द्वारा एक वैयक्तिक ईश्वर के विरुद्ध किए गए अनवरत प्रचार का परिणाम है। वेदों में प्रतिमाओं की चर्चा भी नहीं है, किंतु सृष्टा और सखा के रूप में ईश्वर के लोभ की प्रतिक्रिया ने महान धर्मोपदेशकों की प्रतिमाएं निर्मित करने का मार्ग दिखलाया और बुद्ध स्वयं मूर्ति बन गए, जिनकी करोड़ों लोग पूजा करते हैं। सुधार के कठिन प्रयत्नों का अंत सदैव सच्चे सुधार को अवरुद्ध करने में होता है।
1: साधारण लोगों के लिए अमूर्त की पूजा करना कठिन है, इसीलिए उसे कोई न कोई मूर्त रूप की जरूरत पड़ती है।
2: उपासना करना हर मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित है। केवल उच्चतम दर्शन शास्त्र ही विशुद्ध अमूर्त विचार तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए मनुष्य उसे सदैव एक व्यक्ति का रूप देता रहेगा। जब तक प्रतीक की पूजा, वो चाहे जो कुछ हो, उसके पीछे स्थित ईश्वर के प्रतीक के रूप में होती है। सर्वोपरि हमें अपने को किसी बात पर केवल इसलिए कि वो ग्रंथों में है, विश्वास करने के अंधविश्वास से मुक्त करने की आवश्यकता है। हर वस्तु, विज्ञान, धर्म, दर्शन तथा अन्य सब को जो किसी पुस्तक में लिखा हो उसके समरूप बनाना एक भीषणतम अत्याचार है। ग्रंथ पूजा मूर्ति पूजा के निकृष्टतम रूप है।
0: उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा,
2: एक बारहसिंगा था, गर्वीला और स्वतंत्र। एक राजा के सदृश उसने अपने बच्चे से कहा, मेरी ओर देखो, मेरे शक्तिशाली सींग देखो, एक चोट से मैं आदमी मार सकता हूं। बारहसिंगा होना कितना अच्छा है। ठीक तभी आखेटक के बिगुल की ध्वनि दूर सुनाई पड़ी और बारहसिंगा अपने चकित बच्चे को लेकर एकदम भाग पड़ा। जब वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो बच्चे ने पूछा, हे मेरे पिता, जब तुम इतने बलवान और वीर हो तो तुम मनुष्य के सामने से क्यों भागते हो? बारहसिंगे ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैं बलवान और शक्तिशाली हूं, किंतु जब मैं वो ध्वनि सुनता हूं तो मुझ पर कुछ ऐसा छा जाता है जो मुझे भगाता है मैं चाहूं या ना चाहूं। ऐसा ही हमारे साथ है। हम ग्रंथों में वर्णित नियमों के बिगुल की ध्वनि सुनते हैं, आदतें और पुराने अंधविश्वास हमें जकड़े रहते हैं। इसका ज्ञान होने के पूर्व ही हम दृढ़ता से बंध जाते हैं और अपने वास्तविक रूप को भूल जाते हैं, जो कि मुक्ति है।
1: स्वामी जी ने कहा, ईश्वर प्राप्ति के लिए पवित्र हृदय का होना जरूरी है, क्योंकि
2: ज्ञान का अस्तित्व शाश्वत है। जो व्यक्ति किसी आध्यात्मिक सत्य को खोज लेता है, उसे हम ईश्वर प्रेरित कहते हैं, और जो कुछ वो संसार में लाता है वो दिव्य ज्ञान या श्रुति है। किंतु श्रुति भी शाश्वत है और उसका अंतिम रूप निर्धारित करके उसका अंधानुकरण नहीं किया जा सकता। दिव्य ज्ञान की उपलब्धि ऐसे हर व्यक्ति को हो सकती है जिसने अपने को उसे पाने के योग्य बना लिया हो। पूर्ण पवित्रता सबसे आवश्यक बात है, क्योंकि पवित्र हृदय वाला ही ईश्वर के दर्शन पा सकेगा।
0: उपासना करने के लिए हम ईश्वर के जिस रूप की कल्पना करते हैं, जिन गुणों से उन्हें सजाते हैं, वे मानवीय रूप और गुण हैं। एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाने पर हम ईश्वर के निर्गुण रूप और स्वरूप को पहचान पाते हैं।
2: समस्त प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च है और ये जगत सबसे महान, क्योंकि यहां मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की जो सर्वोच्च कल्पना हम कर सकते हैं वो मानवीय है। जो भी गुण हम उसमें आरोपित करते हैं वे मनुष्य में केवल अल्प परिमाण में। जब हम ऊंचे उठते हैं और ईश्वर की इस कल्पना से निकलना चाहते हैं, हमें शरीर मन और कल्पना के बाहर निकलना पड़ता है और इस जगत को दृष्टि से परे करना होता है।
1: ईश्वर के समीप पहुंचने पर हम तुच्छ सांसारिक घटना या वस्तु से विचलित नहीं होते, उन्होंने समझाया है।
2: जब हम ब्रह्म होने के लिए ऊंचे उठते हैं, हम संसार में नहीं रह जाते। सभी कुछ विषय रहित विषय ही हो जाता है। जिस एकमात्र संसार को हम जान सकते हैं, मनुष्य उसका शिखर है। जिन्होंने एकत्व या पूर्णता प्राप्त कर ली है, उनको ईश्वर में निवास करने वाला कहा जाता है। समस्त घृणा स्वयं का स्वयं द्वारा हनन है, अतः प्रेम ही जीवन का धर्म है। इस भूमिका तक उठना पूर्ण होना है, किंतु जितने ही अधिक पूर्ण हम होंगे उतना ही कम काम हम कर सकेंगे। सात्विक जानते हैं कि यह संसार केवल बच्चों का खेल है और उसके विषय में चिंता नहीं करते। जब हम दो बिल्लों को लड़ते और एक दूसरे को काटते हुए देखते हैं तो हम उद्विग्न नहीं होते। हम जानते हैं ये कोई गंभीर बात नहीं है। पूर्ण व्यक्ति जानता है ये संसार माया है।
0: आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त है। हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमानंद हैं। स्वामी जी ने कहा है,
2: जीवन को ही संसार कहा जाता है। वो हम पर क्रिया करने वाली परस्पर विरोधी शक्तियों का परिणाम है। भौतिकवाद कहता है मुक्ति की ध्वनि एक भ्रम मात्र है। आदर्शवाद कहता है जो ध्वनि बंधन के विषय में कहती है स्वप्न मात्र है। वेदांत कहता है हम ही साथ मुक्त हैं और मुक्त नहीं भी। इसका अर्थ ये होता है कि हम पार्थिव स्तर पर कभी मुक्त नहीं होते, किंतु आध्यात्मिक पक्ष में सदैव मुक्त हैं। आत्मा मुक्ति और बंधन दोनों से परे है। हम ब्रह्म हैं, हम अमर ज्ञान हैं, इंद्रियों से परे हैं, हम पूर्ण परमानंद हैं।
1: परम ब्रह्म हमारे अंदर ही निहित है, जरूरत है उन्हें अपने में महसूस करने की शक्ति की।
2: मनोकल्पना को वर्जित करके विचार करना असंभव को संभव बनाना है। हर विचार के दो भाग होते हैं, विचार और शब्द। हमें दोनों की आवश्यकता है। जगत की व्याख्या न तो आदर्शवादी कर पाते हैं न भौतिकवादी। इसके लिए हमें विचार और अभिव्यक्ति दोनों को लेना होगा। समस्त ज्ञान प्रतिबिंबित का ज्ञान है। जैसे हम अपने ही मुख को एक दर्पण में प्रतिबिंबित देखते हैं। अतः कोई अपनी आत्मा या ब्रह्म को नहीं जान सकता, किंतु प्रत्येक वही आत्मा है और उसे ज्ञान का विषय बनाने के लिए उसे उसको प्रतिबिंबित देखना आवश्यक है। अदृश्य तत्व के चित्रों का यह दर्शन ही तथा कथित मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। मूर्तियों या प्रतिमाओं का क्षेत्र जितना समझा जाता है उससे कहीं अधिक विस्तृत है। लकड़ी और पत्थर से लेकर वे ईसा बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों तक फैली है।
0: सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, ये संतुलन प्राप्त करने की एक क्रिया मात्र है। स्वामी जी कहते हैं,
2: सृष्टि कुछ बना देना नहीं है, वो तो सम संतुलन को पुनः प्राप्त करने का एक संघर्ष है। जैसे किसी कार के परमाणु एक जल पात्र की पेंदी में डाल दिए जाने पर वे पृथक पृथक और गुच्छों में ऊपर की ओर झपटते हैं, और जब सब ऊपर आ जाते हैं और सब संतुलन पुनः प्राप्त हो जाता है तो समस्त गति या जीवन एक हो जाता है। यही बात सृष्टि की है। यदि सम संतुलन प्राप्त हो जाए तो सब परिवर्तन रुक जाएंगे, जीवन नामधारी वस्तु समाप्त हो जाएगी, जीवन के साथ अशुभ अवश्य रहेगा, क्योंकि संतुलन पुनः प्राप्त हो जाने पर संसार अवश्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समत्व और नाश एक ही बात है। सदैव बिना दुख के आनंद ही पाने की कोई संभावना नहीं है, या बिना अशुभ के शुभ पाने की, क्योंकि जीवन स्वयं ही तो खोया हुआ समसंतुलन है। जो हम चाहते हैं वो मुक्ति है, जीवन आनंद या शुभ नहीं।
1: जीवन और मृत्यु ये एक तांता है, चलता ही रहता है, केवल आत्मा अनंत है।
2: सृष्टि शाश्वत है, अनादि अनंत, एक असीम सरोवर में सदैव गतिशील है। उसमें अब भी ऐसी गहराइयां हैं जहां कोई नहीं पहुंचा, और जहां वैसी निस्पंदता पुनः स्थापित हो गई है, किंतु लहर सदैव प्रगति कर रही है। संतुलन पुनः स्थापित करने का संघर्ष शाश्वत है। जीवन और मृत्यु उसी तथ्य के विभिन्न नाम है, वे एक सिक्के के दो पक्ष हैं, दोनों ही माया है। एक बिंदु पर जीवित रहने के प्रयत्न की अगम्य स्थिति और एक क्षण बाद मृत्यु, इस सबसे परे सच्चा स्वरूप है आत्मा। हम सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और तब वो हमारे लिए जीवंत हो जाती है। वस्तुएं स्वयं तो मृत हैं, केवल हम उन्हें जीवन देते हैं, और तब मूर्खों के सदृश हम घूमते हैं और या तो इतने डरते हैं या उनका उपभोग करते हैं। संसार ना तो सत्य है ना असत्य, वो सत्य की छाया है।
0: सत्य तो शाश्वत है, पर समय के अनुसार उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, नए रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है।
2: सत्य सदैव अपरिवर्तित रहता है, किंतु उसे एक आकार में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए समय समय पर सत्य को एक ऐसा रूप या अभिव्यक्ति दी जाती है जिससे मानव जाति अपनी प्रगति के फलस्वरूप ग्रहण करने में समर्थ होती है। प्रत्येक महान धर्मोपदेशक ये जानता है और उससे सावधान रहने का प्रयत्न करता है, किंतु साधारणतया मानव अदृष्टि की अपेक्षा दृष्टि की पूजा करने को अधिक उन्मुख रहता है। इसलिए व्यक्तित्व को पीछे निहित तत्व की ओर बारंबार इंगित करके और उसे समय के अनुरूप एक नया आवरण देने के लिए पैगंबरों की परंपरा संसार में चली आई है।
1: निंदा से डरो मत, वो हमारे अहम को दूर करता है, तभी स्वामी जी कहते हैं,
2: हमारा सर्वोच्च कार्य और प्रभाव तब होता है जब हम अहम के विचार मात्र से रहित हो जाते हैं। केवल निष्काम लोग ही बड़े बड़े परिणाम घटित करते हैं। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तो, वे झूठे अहम को निकाल बाहर करने में सहायता देकर कितनी भलाई कर रही है। यथार्थ आत्मा में दृढ़ता से स्थिर हो, केवल शुद्ध विचार रखो और तुम उपदेशकों की पूरी सेना से अधिक काम कर सकोगे। पवित्रता और मौन से शक्ति की वाणी निकलती है।
0: अंत में स्वामी जी ज्ञान योग को सहज भाव से समझाकर कहते हैं,
2: पहले ध्यान निषेधात्मक प्रकार का होना चाहिए। हर वस्तु को विचारों से निकाल बाहर करो। मन में आने वाली हर वस्तु का मात्र इच्छा की क्रिया द्वारा विश्लेषण करो। तदुपरांत आग्रह पूर्वक उसकी स्थापना करो। जो हम वस्तुतः हैं, सत, चित, आनंद और प्रेम, विषय और विषयी के एकीकरण का साधन है ध्यान करो।
1: स्वामी जी धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। कोई भी सांसारिक लीला उन्हें विचलित नहीं कर सकती।
2: ऊपर वो मुझसे परिपूर्ण है, नीचे वो मुझसे परिपूर्ण है, मध्य में वो मुझसे परिपूर्ण है। मैं सब प्राणियों में हूं और सब प्राणी मुझ में हैं। ओम तत् सत्, मैं वो हूं। मैं सत के ऊपर की सत्ता हूं। मैं मन के ऊपर की सत्ता हूं। मैं विश्व की एकात्मा हूं। मैं ना सुख हूं ना दुख। शरीर खाता है पीता है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं वो हूं। मैं द्रव्य हूं, मैं देखता जाता हूं। जब स्वास्थ्य आता है तब मैं दृष्टा होता हूं, जब रोग आता है तब भी मैं दृष्टा होता हूं। मैं ज्ञान का अमृत और सार तत्व हूं। चिरंतन काल तक मैं परिवर्तित नहीं होता। मैं शांत, दैदीप्यमान और अपरिवर्तनीय हूं। ओम तत् सत्।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आई श्रोताओं, आज की सभा समापन से पूर्व हम देते हैं आपको जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। कल प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। कल का शीर्षक होगा बुद्धिमान पुत्र। 7:10 का समय होगा कार्यक्रम अक्षय निधि का। इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन। 164वां सूक्त कल आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि में। भक्ति संगीत कार्यक्रम का समय होगा 7:20 पर। यही कार्यक्रम आप पुनः सुन सकेंगे 5:10 पर संध्या काल में। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे आप सुनेंगे प्रातः 8 बजे और संध्या 6 बजे। कल का आकर्षण होगा भगवती चरण बोहरा। भाषा की मर्यादा कार्यक्रम बाल सभा में आप सुनेंगे विषय। प्रसारण समय प्रातः 8:30। टेक गुरु कार्यक्रम में AI Part 1 आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे और संध्या काल में 7 बजे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से पूर्वाखली की चर्चा आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व में, कारगिल युद्ध का भाग 3 और एपिसोड 34वां आप सुनेंगे। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे। कल का विषय होगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। एपिसोड 14 का प्रसारण कल किया जाएगा। हिंदुस्तान हमारा, इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर केंद्रित कार्यक्रम। प्रसारण समय प्रातः 10:30 और पुनः प्रसारण रात्रि 8:30 पर। रेडियो रिपोर्ट और परिक्रमा कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे और पुनः रात्रि 9 बजे। 11:30 पर दिन में कल आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसमें रश्मि रथी का भाग 6 प्रसारित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे रात्रि 9:30 से। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम, जिन्हें आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर। तो जुड़े रहिएगा रेडियो आजाद हिंद के साथ। रात्रि के 10:01 हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल पुनः आपसे भेंट करेंगे हम कल के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।